हम आकाशवाणी उदयपुर रेडियो लेक सिटी से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 जून 2026। सवेरे के 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की पहली सभा की अब शुरुआत होती है।

0: हम रेडियो लेक सिटी से बोल रहे हैं। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। समाचारों के बाद जुड़ेंगे विविध भारती मुंबई केंद्र से। कार्यक्रमों की श्रृंखला में सबसे पहले सुनिए वंदनवार चिंतन, श्री रामचरित मानस गान 6:35 पर, संगीत सरिता 6:45 पर, भूले बिसरे गीत 7 बजे और 7:30 बजे, हमें राही प्यार के। सुनते हैं समाचार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कैनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय में रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।

0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग चार महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरु मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात को बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य दो पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने विपराज निगम और सूर्यांश शेडगे के अर्धशतकों की मदद से 265 रन बनाए। श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाए। सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए, जबकि भारत ए 9 रन ही बना सका। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती
2: वंदन वार।

आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, इंसान की सोच ही उसे बड़ा बनाती है। ये था आज का चिंतन। और आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

धाकड धाधा धाकड धाधा धाकड धा चरण धरण धरत पाग परत नहीं परण झांजर जनक झन न न न ताना न दिर दिर दीन ता तुम ता न न न छन न न

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। अब से कुछ ही पलों में यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 221। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला गजतत वाद्य। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक। सुनिए इस श्रृंखला का 5वां भाग। प्रस्तुति है चारुबाला खरे की। 7 सुनिए भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हमें राही प्यार के। 8:15 पर त्रिवेणी। आलेख और स्वर है ममता सिंह का। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 8:30 पर सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार गायक हेमंत कुमार पर। सुनिए इसका पुनः प्रसारण 9:30 पर। प्रस्तुति है रमेश गोखले की। सुबह 10 पिटारा में सुनिए सेहतनामा जीवन शैली और योग। योग शिक्षक शारदा अग्रवाल से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत। प्रस्तुति है जुबैर खान की। 11 सुनिए रंग तरंग कार्यक्रम। 12:05 से सजेगी यादों की महफिल। दोपहर 1 से गुनगुनाइए सुरीला सफर में। 2:30 पर सदा बहार नगमे। सुनिए सखी सहेली कार्यक्रम। 4 पिटारा में सेल्यूलॉइड के सितारे में सुनिए अभिनेत्री वहीदा रहमान से कमल शर्मा की बातचीत का 2 भाग। प्रस्तुति है कल्पना शेट्टी की। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने। पर सुनिए संध्या रंजन। 7 सुनिए जयमाला कार्यक्रम। 7:45 पर

इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए पॉप एक्सप्रेस, 8 बजे हवा महल में सुनिए झलकी जीभ की तपस्या, लेखन है डॉक्टर कुमारी का, निर्देशन है स्वतंत्र कुमार ओझा का। 8:15 पर सुनिए रात्रि चित्रलोक, 9 बजे सुनिए आपके लिए कार्यक्रम। रात 10 बजे छाया गीत कार्यक्रम पेश होगा, आलेख और स्वर है ममता सिंह का, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। 10:30 पर सुनिए ढलती जाए रात। 8:00 प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा।

श्री राम को अयोध्या लौटा लाने के अपने विनीत आग्रह को त्याग कर भरत ने निर्णय प्रभु पर छोड़ दिया। अग्रज के प्रति अपनी भक्ति तथा निष्ठा की दुहाई देते हुए उन्होंने कहा, गुरु और स्वामी का स्नेह पाकर मेरा क्षोभ मिट गया है, मन में अब कोई संदेह नहीं रहा। दया निधान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए आपके चित्त में किसी प्रकार का क्षोभ न हो। सेवक का हित इसी में है कि वो समस्त सुख और लोभ छोड़कर स्वामी की सेवा करे। हे नाथ, आपके लौटने में सबका स्वार्थ है, किंतु आपकी आज्ञा के पालन में ही सबका कल्याण है। भरत की विनय ये थी कि यदि स्वामी चाहें तो अकेले भरत वनवास करें, अथवा लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को अयोध्या लौटाकर भरत श्री राम की सेवा में वन गमन करें, अथवा श्री राम तथा सीता अयोध्या लौट जाएं और बाकी तीनों भाई वन को जाएं। इन सभी विकल्पों में भरत अपना ही स्वार्थ होना बताते हैं, क्योंकि उनके अनुसार न तो उन्हें नीति का ज्ञान है और न धर्म का। इसी समय सभा स्थल पर राजा जनक के दूत

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 221।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: गज तत्व वाद्य प्रस्तुत है गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की अगली कड़ी। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक।
1: वायलिन और सारंगी के बाद गज वाला वाद्य इसराज प्रचलित है। इसराज का यही राज है कि यह कब बना, कहां बना और किसने बनाया, यह कोई नहीं जानता। कुछ विद्वानों का मत है कि यह सारंगी और सितार का मिश्रण है। कुछ गुणियों का मानना है कि यह सारिंदा और सारंगी का मिश्रण है। कुछ संगीतज्ञ इसकी उत्पत्ति का आधार केवल सारंगी मानते हैं। जो संगीतज्ञ सारंगी से इसकी उत्पत्ति मानते हैं, उनका इस संबंध में कहना है कि मुगल काल में महिलाएं जब हरम में गायन किया करती थी, तब उन्हें सारंगी की संगति उपलब्ध नहीं हो पाती थी, क्योंकि सारंगी वादक अधिकतर पुरुष ही हुआ करते थे। महिलाएं सारंगी बजाने में असमर्थ हुआ करती थी, क्योंकि सारंगी यह वादन में कठिन ही नहीं बल्कि वह नाखूनों की सुंदरता को भी नष्ट करती थी। इसीलिए सारंगी के ऊपरी भाग को कुछ लंबा कर इसमें पर्दे लगाए गए। इसराज की उत्पत्ति के संबंध में एक मान्यता यह भी है कि सारंगी सामान्यतः कोठों पर बजाई जाती थी। रावण हत्था, सारिंदा तथा चिकारी आदि गजवाद्य लोक संगीत में प्रयुक्त किए जाते थे। इसलिए अपने लिए गज का एक नया सुविधाजनक वाद्य निर्माण करना था, जिसे उसने इसराज नामक वाद्य बनाकर किया। प्राचीन और मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में इसराज का उल्लेख नहीं मिलता है। 18वीं शताब्दी तक उर्दू एवं बांग्ला कृतियों में भी इस वाद्य का वर्णन उपलब्ध नहीं है। अतः यह स्पष्ट है कि यह एक आधुनिक वाद्य है। यह भी संभव है कि इस वाद्य की निर्मिति मयूर या ताउस वाद्य के आधार से की गई हो। तो आइए अब हम अलाउद्दीन खां का इसराज वादन सुनते हैं। राग है भैरव।

अब हम इसके आकार और प्रकार पर विचार करेंगे। इस वाद्य के तीन आकार प्रचलित हैं। इसमें कुंडी और दांड के दो मुख्य भाग होते हैं। इनका नाप अलग अलग होता है। कुंडी के ऊपर सारंगी के समान चमड़ा मर दिया जाता है। इसी चमड़े पर घुरज की स्थापना करते हैं। दांड में 16 से 19 तक पर्दे लगाए जाते हैं। इस राज में सामान्यतः मुख्य चार तार होते हैं। बाज के तार को मंद्र सप्तक के मध्यम स्वर में, इसके बाद के तार को मंद्र सप्तक के षड्ज स्वर में, तत्पश्चात अति मंद्र सप्तक के पंचम स्वर में और अंतिम तार को अति मंद्र सप्तक के षड्ज स्वर में मिलाया जाता है। इसमें तरप के तार भी लगाए जाते हैं, जिनकी संख्या 15 से 20 तक होती है। इन तरबों को राग के अनुसार अथवा अचल थाट में मिलाया जाता है। तरबों के लिए पीतल के स्थान पर फोलाद के तारों का प्रयोग किया जाता है। इस राग को बजाने का यह तरीका है कि इसको पालथी मारकर उसकी कुंडी को नीचे की ओर रखकर या फिर गोद में रखकर या घुटने पर टिकाकर वादन करते हैं। दाहिने हाथ में गज पकड़कर तारों पर गज संचालन किया जाता है। बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अनामिका अंगुलियों से स्वर निकाले जाते हैं। रविंद्र संगीत में इसका प्रयोग बहुत ही किया जाता है, इसलिए इस राग को बंगाल की सारंगी भी कहते हैं। कुछ कलाकार इस पर एकल वादन कार्यक्रम भी प्रस्तुत करते हैं। अब हम श्री आशीष बंदोपाध्याय का इस राग पर बजाया गया राग जौनपुरी सुनते हैं।

गजवाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की ये कड़ी अभी आपने सुनी। कलाकार थे डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति सहायक थे जयंत श्रीवास्तव और प्रस्तुतकर्ता चारुबाला खरे। संगीत सरिता के लिए इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी भोपाल की सौजन्य से। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: अब सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: भूले बिसरे गीत इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वीको बज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्मरिक

ये है मंगलवार की सुबह जो होने जा रही है और भी खास, क्योंकि होगा आपका मनपसंद कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर सुबह 8:30 बजे आपके मनपसंद चैनल रेडियो लेक सिटी आकाशवाणी उदयपुर पर। और इस बार ये है कम्युनिटी कनेक्ट ट्यूसडे। डे ब्रेकर में बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक पोषण दिवस पर और जानेंगे कि दुनिया भर में परिवारों तक पहुंचने वाली आर्थिक सहायता कैसे बदल रही है लाखों जिंदगियां। फिर अपने शहर की ताज़ा अपडेट्स होंगी, खेल प्रेमियों के लिए डबल धमाका होगा T20 अपडेट और फीफा वर्ल्ड कप अपडेट के साथ, और स्वयं सेवा की संस्कृति जैसे विषय पर एक बातचीत होगी। इसके बाद हम जानेंगे अवेयरनेस सेगमेंट और विकसित भारत और भारत के 12 वर्ष सरकार के 12 वर्ष के बारे में हम जानकारी देंगे आपको। और इसके अलावा मौसम और स्वास्थ्य हमारा अगला सेगमेंट होगा, जिसमें जानेंगे बढ़ते तापमान की वजह से मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। नमस्कार उदयपुर, कुछ देर बाद 8:30 बजे आकाशवाणी उदयपुर रेडियो लिंक सिटी पर सुनना ना भूलें।

0: जब से मिली तुसे अखियां जियारा डोले रे डोले ओ डोले ओ जब से मिली तुसे अखियां जियारा डोले रे डोले ओ डोले
1: ओ मीठे मीठे प्यार के ये हिचकुल दिया डोले रे डोले ओ डोले।

हेमंत कुमार और गीता दत्त की आवाज में सुन रहे थे अमानत फिल्म से ये गाना, शैलेंद्र के बोल, सलील चौधरी का संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सजा फिल्म से सुन रहे थे आप संध्या मुखर्जी और हेमंत कुमार की आवाज में ये गाना राजेंद्र कृष्ण के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: कुछ रेशमी ख्वाब कुछ मखमली अंदाज

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

हेमंत कुमार की आवाज में सुन रहे थे शिकस्त फिल्म से ये गाना, शैलेंद्र के बोल शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।

0: वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
2: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: आप भी गाइए ना, दिल की उमंगे हैं जवान, गाइए ना, क्या मुश्किल है, सरगम बताऊं। पामा पाधा पागा सपा, दिल की उमंगे हैं जवान, गाइए।
4: दिल की उमंगे हैं जवान,
3: बहुत अच्छा।

0: एक बार और।
1: दिल की उमंगे है जवान, रंग में डूबा है समा।

0: हेमंत कुमार और गीता दत्त की आवाजों में आप सुन रहे थे मुनीम जी फिल्म से ये गाना, साहिर लुधियानवी के बोल, संगीत सचिन देव बर्मन का।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना हिल स्टेशन फिल्म से। एसएच बिहारी के बोल, हेमंत कुमार का संगीत।

डिटेक्टिव फिल्म से आप सुन रहे थे गीता दत्त और हेमंत कुमार की आवाज में ये गाना, शैलेंद्र के बोल मुकुल रॉय का संगीत। इसी के साथ आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है। भूले बिसरे गीत इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: रजत पट से ये कार्यक्रम सुनिए हर मंगलवार की सुबह 11 बजे। इसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए कोई एक फिल्म, फिल्मों पर थोड़ी थोड़ी बातें और उन फिल्मों के जो हिट गाने हैं वो हम आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम रजत पट से में। तो जरूर सुनिए रजत पट से प्रोग्राम ओनली ऑन 101.9 FM रेडियो लेक सिटी आकाशवाणी उदयपुर पर मंगलवार सुबह 11 बजे।
3: आइए विविध भारती मुंबई से सुने हम हैं राही प्यार की।
4: नमस्कार, विविध भारती पर आप सुन रही हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार की।

झनक झनक पायल बाजे इस फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज में ये गाना, हसरत जयपुरी के बोल, वसंत देसाई का संगीत।

हाउस नंबर 44 फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, साहिर लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।

0: हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे सट्टा बाजार, इस फिल्म से ये गाना। गुलशन बावरा के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हमेरा ही प्यार के सुनिए इस कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।
3: बड़ी बहू,
4: ये तुम्हारे ना
3: इतनी भी क्या जल्दी थी।
4: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना,
5: और ये
6: मेरी गुड़िया के
7: नाम। दादी आपके नाम?
8: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट।

0: में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया, कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
1: शुभ शुभ बोलो।
2: क्या
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
5: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
6: बन गया बजट?
5: हाँ,
6: 5,000 बच गए।
7: तो नई साड़ी ले ले।
6: ना,
5: पिछले महीने तो ली थी।
6: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।

0: नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

ममता फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज में ये गाना मजरू सुल्तानपुरी के बोल रोशन का संगीत। अपनी खास अंदाज से गानों को सदाबहार बनाने वाली आवाज रही है हेमंत कुमार की।

0: एक झलक इस फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना आशा भोसले और हेमंत कुमार की आवाजों में, SH बिहारी के बोल, संगीत हेमंत कुमार का। आज हम याद कर रहे हैं हेमंत कुमार को, जानिए इनके बारे में कुछ किस्से कुछ बातें आज के फनकार कार्यक्रम में सुबह 9:30 पर, और इसका पुनः प्रसारण सुनिए आज रात 9:30 पर।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: इसी के साथ आज का हम हेरा ही प्यार की कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
2: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: हम रेडियो लेक सिटी से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में सुनिएगा समाचार प्रभात और 8:15 बजे मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से।
4: में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
5: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
4: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मान

0: किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस ने ले जा रहा टैंकर दिशा ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर दिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जलमार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय LNG टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन LNG है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम यास का प्रबंधक है। अमरीका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से ये हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक हाजों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की 0 सहिष्णुता नीति की।

0: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसियों की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
1: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
2: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
1: नो टेरर एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
0: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
3: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
0: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मुजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बम वर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति इस समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
4: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्ना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट UG पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक कट ऑफ

0: और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद फरहत। अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज। जनसत्ता की सुर्खी है, स्विट्जरलैंड में 19 को समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर, ट्रंप ने नाकेबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया, अमर उजाला के शब्द हैं, भारत के लिए बड़ी राहत, तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मानक पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ होने के पार होने की उम्मीद, देशबंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा, वाणिज्यिक उड़ानें शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान। मानसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज हुई। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, हर दिन सड़क हादसों में 500 जिंदगी खाक। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ और लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों द्वारा वाहन चलाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। लेटे लेटे मोबाइल चलाना, जवानी में दे रहा बुढ़ापे का दर्द। 18 से 45 आयु वर्ग के 5400 युवाओं पर किए गए सर्वेक्षण में हुआ खुलासा, टेकनेस सिंड्रोम से गर्दन दर्द, अकड़न, कंधों में तनाव, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं, हिंदुस्तान की खबर है।
0: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। स्लोवाकिया कन्फर्स इट्स हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू पार्टिसिपेट इन G7 समिट इन एवियन फ्रांस टुडे, to also hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada and UK and UAE President. Government hikes export duties on diesel and aviation turbine fuel. Export duty on petrol remains unchanged. Indian ship Disha, carrying 62,370 metric tons of LNG cargo, safely crosses Strait of Hormuz.

0: शब्दों की महक से सजता है हर पल का सफर, शब्दों की महक से सजता है हर पल का सफर। रेडियो की दुनिया में जुड़िए हमारे साथ हर पहर। मुस्कान जानकारी और मनोरंजन का खजाना है तैयार। आज आपके साथ है आरजे विद्या और मेरे साथ
1: ज्योति।
0: अपने दिन को बनाइए शानदार। वेलकम इन ट्यूसडे प्रोग्राम। नमस्कार उदयपुर लिसनर्स, हमारे कम्युनिटी कनेक्ट ट्यूसडे में डे ब्रेकर यानी दिन की शुरुआत में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस पर। उसके साथ ही हम देंगे जानकारी T20 विश्व कप अपडेट और फीफा वर्ल्ड कप अपडेट। सोशल पल्स में हम जिक्र करेंगे स्वयं सेवा की संस्कृति पर।
1: तो जानकारी, जागरूकता, खेल और समाज के बारे में आज हम बातें करेंगे। अवेयरनेस में हमारा आज का विषय रहेगा विकसित भारत और सरकार के 12 वर्षों के सफर के बारे में जानेंगे, वेल्थ हेल्थ के बारे में जानेंगे और वेदर के बारे में जानेंगे, और इसमें विषय रहेगा बढ़ते तापमान का मानव स्वास्थ्य पर असर।

कम्युनिटी कनेक्ट ट्यूसडे में आप सभी का मोस्ट वेलकम। जब कोई व्यक्ति रोजगार या काम के लिए अपने घर या देश से दूर जाकर कमाई करता है ज्योति, तो अपनी आय का कुछ हिस्सा अपने परिवार को भेजता है और उसे पारिवारिक पेंशन कहा जाता है। ये आर्थिक सहायता कई परिवारों के लिए जीवन यापन का आधार होती है। डे ब्रेकर्स में आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक पेंशन दिवस पर। यह दिवस उन लाखों प्रवासी श्रमिकों के

0: सम्मान में मनाया जाता है जो अपने परिवार की खातिर दूर रहकर भी अपने परिवार को आर्थिक योगदान देते हैं। यह धनराशि बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, आवास और छोटे व्यवसायों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: बिल्कुल, संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त ये एक वैश्विक दिवस है जो 200 मिलियन से अधिक प्रवासी श्रमिकों के योगदान को और उनके द्वारा अपने परिवारों को भेजे जाने वाले पैसों के महत्व को सम्मानित करता है। विद्या, और इस वर्ष की थीम है ग्रामीण लचीलापन, उद्यमिता और रोजगार। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जो आपने बताया कि ये परिवर्तनकारी प्रभाव को उजागर करना, विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ गरीबी कम करने और आजीविका को बेहतर बनाने में इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। आर्थिक सहारा मिलता है परिवार को, उसके अलावा ग्रामीण विकास भी होता है। एक बड़ा हिस्सा जो पैसे का ग्रामीण इलाकों में पहुंचता है वो स्थानीय स्तर पर उद्यमिता और रोजगार के अवसर पैदा करता है। और तीसरा इस बात का प्रभाव ये पड़ता है कि विकास लक्ष्य, ये प्रसन्न उन्मूलन और आर्थिक समानता जैसे संयुक्त राष्ट्र के कई जो मिशन हैं उन्हें प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सम्मानित करते हैं या फिर एक तरह से कह सकते हैं उन मेहनतकश लोगों का धन्यवाद करते हैं जो घर से दूर रहकर भी अपने परिवार की खुशियों से जुड़े रहते हैं। उनकी भेजी हुई राशि से न सिर्फ घर का बजट संभलता है बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य की उम्मीदें भी मजबूत होती हैं।

0: लिसनर्स, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर, और अब खेल जगत की ओर जुड़ते हैं। ज्योति, जानते हैं 15 जून को खेले गए मुकाबलों का पूरा हाल। दिन का जो मुकाबला स्पेन और कैप वर्डे के बीच खेला गया वो रोमांचक लेकिन गोल रहित रहा। दोनों टीमें पूरे समय संघर्ष करती रही लेकिन मैच 0-0 की बराबरी पर समाप्त हुआ। दूसरे मुकाबले में बेल्जियम और मिश्र आमने सामने थे। यह मैच 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ। मिश्र की ओर से इमाम अशूर ने गोल किया जबकि बेल्जियम को बराबरी का गोल मिश्र के डिफेंडर के आत्मघाती गोल की बदौलत मिला। इसके बाद सऊदी अरब और उरुग्वे के बीच भी कड़ा मुकाबला देखने को मिला। दोनों टीमों ने 1-1 गोल किया और मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ।
1: तो फीफा वर्ल्ड कप बड़ा खास है इस बार, है ना। जैसे कि हम सब जानते हैं विद्या, 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, 3 मेजबान हैं अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। गोलों की गूंज, रिकॉर्ड्स का रोमांच और दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों का जादू, सब कुछ देखने को मिलेगा। तो इसके लिए जैसे आपने अपडेट्स बताई, जर्मनी ने हरा दिया 7-1 से कुराकाओ को। जापान ने नीदरलैंड को ड्रॉ किया नीदरलैंड के साथ मैच में। स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से हराया। ये स्टेज जो अभी शुरुआती मुकाबले हो रहे हैं उन्हीं में कल मुकाबला हुआ मियामी की भीषण गर्मी में सऊदी अरब के खिलाफ उरुग्वे का, और दबदबा रहा उरुग्वे का, 1-1 से मैच वो भी ड्रॉ रहा। सबसे बड़ा उलट फिर तो वो हुआ विद्या, जो स्पेन को नवागंतुक कैप वर्डे ने हरा दी, मतलब एक ड्रॉ पर रोक दिया। एक बड़ी चेंजेस इस मैच में शुरुआत में हुई। ईरान और न्यूजीलैंड के बीच आज सुबह मुकाबला हुआ, उसमें ईरान इनमें ज़्यादा एक तरह से दमदार टीम के रूप में थी और न्यूजीलैंड 85वें स्थान पर है, तो उसके बावजूद ये मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। आज के अगर मैचों की बात करें तो आज भी कई सारे मैचेस होने हैं, इनमें इसके सारे मुकाबले जो होंगे उनमें देर रात तक और कल सुबह होने वाले मैच हैं। तो इन मैचेस में है ग्रुप आई में फ्रांस और सेनेगल के बीच न्यू जर्सी में मुकाबला होगा। ग्रुप आई में ही इराक और नॉर्वे के बीच मुकाबला होगा आज दिन भर के मुकाबलों में। और देर रात को होने वाले मैचेस हैं ग्रुप जे के अर्जेंटीना और अल्जीरिया के बीच है, और दूसरा मैच है ऑस्ट्रिया और जॉर्डन के बीच।
0: और अब जिक्र करें महिला T20 वर्ल्ड कप अपडेट्स की, तो सबसे चर्चित मुकाबले में भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 64 रनों से हराकर टूर्नामेंट में शानदार जीत दर्ज की। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 170 रन बनाए, जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। भारतीय टीम की ओर से स्मृति मंधाना ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 68 रन बनाए और टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। हालांकि 15 जून के मैचों में किसी भी बल्लेबाज ने शतक नहीं लगाया लेकिन स्मृति की अर्धशतकीय पारी दिन की सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी रही। गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा ने इतिहास रच दिया। और श्रोताओं, भारतीय महिला टीम के नाम रहा ये दिन जहां बल्लेबाजों ने दमदार प्रदर्शन किया और गेंदबाजों ने पाकिस्तान की टीम को पूरी तरह दबाव में ला दिया। महिला T20 विश्व कप का रोमांच लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले मुकाबलों में और भी कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी।
1: बिल्कुल विद्या, महिला क्रिकेट टीम की बहुत सारी सराहना बनती है, उनके लिए बहुत सारी हम शुभकामनाएं भी प्रेषित करते हैं। और बात करते हैं श्रीलंका ए के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज जो चल रही है, उसमें सोमवार को हुए मुकाबले में जो अच्छा सा मैच देखने को मिला, मैच टाई हुआ और उसके बाद सुपर ओवर का सहारा लिया गया जिसमें श्रीलंका ए ने बिना कोई विकेट गंवाए 16 रन बनाए, भारतीय टीम ने 10 रन बनाए और इस तरह ये मुकाबला भारतीय टीम ने गंवा दिया। अगला मैच 17 जून को अफगानिस्तान से है भारत का, तो उस मैच में भारत को जीतना होगा।

0: और बात करें ज्योति, कुछ खास खबरें हमारे उदयपुर में क्या कुछ खास रहा कल, बात करते हैं। शहर में सोमवार को तापमान में गिरावट आई, ठंडी हवाओं के चलते गर्मी का एहसास थोड़ा कम हुआ, लेकिन हाँ अभी ज्योति उमस जो है वो बरकरार है और सभी बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे हैं। उदयपुर में अगले 4-5 दिनों तक मौसम बिना किसी बड़े बदलाव के यथावत बना रहेगा। शहर में हल्के बादल छाए रहेंगे, लेकिन प्री मानसून के पूरी तरह दस्तक देने से पहले स्थानीय निवासियों को उमस वाली भारी गर्मी का सामना करना पड़ेगा।
1: तापमान में भी एक तरह से कह सकते हैं कि कोई भी राहत नहीं है फिलहाल। आगामी 4 दिनों तक लगभग मौसम ऐसा ही बना रहेगा। ऐसा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते कुछ स्थानों पर, जैसे प्रदेश में कई जगह पर आंधी तूफान और बारिश भी चल रहे हैं। मौसम से बचाव करिए अपना और स्वस्थ रहिए। चलिए अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं विद्या। तो ये है कि राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय में सत्र 2026-27 के लिए स्नातक प्रथम सेमेस्टर में श्रेणीवार रिक्त रही सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन सीटों पर ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख है 21 जून 2026। तो जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो ई मित्र या स्वयं की SSO ID से लॉगिन कर कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान के पोर्टल या ऐप पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अगली अपडेट है मॉनसून से जुड़ी हुई कि मॉनसून के दौरान बच्चों को दस्त रोग से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्टॉप डायरिया अभियान आज से शुरू हो रहा है। ये 31 जुलाई तक चलेगा और इसका उद्देश्य है 5 वर्ष तक के बच्चों में दस्त से होने वाली बीमारियों और मृत्यु दर को कम करना। इसके तहत कई सारे जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और लोगों को ORS कॉर्नर स्थापित किए जाए गए हैं, जहाँ पर लोगों को ये बताया जाएगा कि किस तरह से ये बनाया जाता है और इसका उपयोग किस तरह से किया जाता है और साथ साथ जिंक वितरण भी होगा।
0: बिल्कुल, और ज्योति हमारे श्रोताओं को ये भी बता दें कि आज उदयपुर में किन किन क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी। सिसारमा मेन रोड, नया खेड़ा बस स्टैंड, पुराना नाई बस स्टैंड, पीपलवास, छोटी उंदरी, बड़ी उंदरी और संबंधित क्षेत्र में सुबह 9 से शाम 4 बजे तक बिजली बंद रहेगी। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक जहाँ बिजली बंद रहेगी वो क्षेत्र हैं डाकन कोटड़ा, ढोल की पार्टी, 6 लाइन रोड के पास और संबंधित क्षेत्र। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक नाकोड़ा नगर, रघुकुल विहार, शिवधारा, जनकपुरी, मोती प्लाजा, होटल फिनिक्स, फन कंसल्टेंसी, ग्रीन पर्ल, नाकोड़ापुरम, सौभाग्य नगर, माउंट व्यू, सोफिट प्लानिंग, यहाँ भी बिजली बंद रहेगी। नवरत्न कॉम्प्लेक्स, ज्ञानगढ़, रिद्धि सिद्धि अपार्टमेंट, ओएसिस टॉवर, मंगलम रोज, देवरो की मगरी, तेलीवाड़ा, भुआणा, गौरी चौक, भैरूजी वाली गली, फ्रेंड्स अपार्टमेंट सर्विस सेंटर के पास, पद्मावती अपार्टमेंट, संस्कार 2, देवीनगर, श्रीनाथ हॉस्पिटल, एवरेस्ट, आशियाना, यहाँ पर भी सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक बिजली बंद रहेगी।
1: और शहर में हल्दीघाटी युद्ध की 450वीं वर्षगांठ के और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का दौर जारी है। सोमवार को गांधी ग्राउंड में 3 दिवसीय हल्दीघाटी युद्ध विजय चित्र प्रदर्शनी का आगाज हुआ, जिसमें मेवाड़ की बलिदानी परंपरा को दर्शाया गया है। आमजन को ये प्रदर्शनी जरूर देखनी चाहिए। साथ ही हल्दीघाटी विजय पर बनाई गई लघु फिल्म के पोस्टर का विमोचन भी कल किया गया। और आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती की पूर्व संध्या पर शाम 5:15 पर प्रताप गौरव केंद्र में 57 फीट ऊंची महाराणा प्रताप की जो बैठक प्रतिमा है उसका दुग्धाभिषेक किया जाएगा। और आयोजनों के तहत विभिन्न आयोजन शहर में और इसके आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों होंगे, तो इन आयोजनों के तहत वाहनों की पार्किंग को लेकर, यातायात को लेकर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। आप चलने से पहले इसके बारे में अपडेट्स लेकर चलें। और एक और प्रोग्राम होगा जगदीश चौक में, शौर्य दिवस के रूप में आज समारोह का आयोजन होगा। महाराणा प्रताप के विशाल चित्र की 486 दीयों से महा आरती की जाएगी और भारत माता का पूजन भी होगा। जगदीश मंदिर हजारों दीयों की रोशनी से जगमगाएगा। तो महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती के अवसर पर बुधवार सुबह 7 बजे फतेह मेमोरियल पर महाराणा प्रताप, महाराणा फतेह सिंह और महाराणा भोपाल सिंह जी की प्रतिमाओं का अभिषेक, आरती, पुष्प वर्षा की जाएगी और प्रसाद भोग लगाया जाएगा। नमन करते हैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को।

0: उदयपुर राइट्स, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर। ज्योति, जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करता है और बदले में किसी आर्थिक लाभ या सम्मान की इच्छा ना रखता हो तो उसे स्वयं सेवा कहा जाता है। और आज हम सोशल पल्स में बात करेंगे स्वयं सेवा की संस्कृति पर। आइए जाने क्या है स्वयं सेवा। सबसे पहले इसका बताएं अर्थ। बिना किसी व्यक्तिगत लाभ पुरस्कार की अपेक्षा के स्वेच्छा से समाज, समुदाय या जरूरतमंद लोगों की भलाई के लिए समय, श्रम, ज्ञान या संसाधनों का योगदान देवा स्वयं सेवा में ही आता है। यह सेवा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, आपदा राहत, रक्तदान, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान और सामाजिक जागरूकता या किसी भी तरीके से आप अपनी सेवा दे सकते हैं। हमारे भारत देश में समाज सेवा की परंपरा सदियों पुरानी है। हर जगह स्वयं सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा से रही है। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तब हम एक बेहतर समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं।
1: जी विद्या, नर सेवा नारायण सेवा की भावना हमें सिखाती है कि दूसरों की मदद करना सिर्फ काम नहीं होता, ये एक संस्कार है। अब दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है, डिजिटली हम एक दूसरे से जुड़े हैं पर सामाजिक रूप से दूरी बढ़ रही है, तो स्वयं सेवा की संस्कृति हमें एक दूसरे से जोड़ती है और बताती है कि समाज की मजबूती केवल सरकारों या संस्थाओं से नहीं होती बल्कि आम लोगों की भागीदारी से होती है। सोचिए, हर महीने कुछ घंटे समाज के लिए दे दें तो कितने बच्चों को शिक्षा मिल सकेगी, कितने सारे पौधे लगाए जा सकेंगे, कितने लोगों तक मदद पहुँच सकती है। और कुछ भी नहीं तो किसी बुजुर्ग के साथ कुछ समय बिताना, उनकी बातें सुनना कितनी बड़ी बदलाव ले आता है। ये निस्वार्थ भाव से जो हम काम करते हैं वो एक बड़े बदलाव की शुरुआत होती है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे मंदिरों में, गुरुद्वारों में सामुदायिक रसोई का चलन हमेशा से रहा है और महात्मा गांधी के सर्वोदय और आत्मनिर्भरता के विचारों ने आधुनिक भारत में स्वयं सेवा को नई दिशा भी दी है।
0: बिल्कुल, और ज्योति, इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि इससे न केवल समाज को फायदा होता है बल्कि स्वयं का व्यक्तित्व भी निखरता है। हमारे स्वयं के अंदर आत्मविश्वास, टीम भावना और सामाजिक जिम्मेदारी का विकास होता है। हम सभी संकल्प लें कि अपने समय का कुछ हिस्सा समाज सेवा के लिए अवश्य निकालें।

यह है कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर। कार्यक्रम रहेगा जारी, लेकिन इस समय सुबह के 9 बजने को हैं। अब सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से, बस कुछ ही देर में।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से नवाजा गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन करेंगे। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए और बच्चों में दस्त रोग से बचाव और उपचार के लिए प्रदेश भर में आज से स्टॉप डायरिया कैंपेन की शुरुआत। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से नवाजा

0: आजा गया है। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को यह विशिष्ट सम्मान प्रदान किया। श्री मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया के राष्ट्रपति, सरकार और वहां की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया है। इससे पहले दोनों देशों के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा, सहयोग, गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य नवाचार और विश्वास, जिम्मेदारी तथा मानवीय गरिमा पर आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर किए गए एमओयू से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्री के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने किया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये पहल लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में युवाओं की भागीदारी को नए सिरे से परिभाषित करती है और इससे युवाओं को शासन, नीतिगत विचार विमर्श और संसदीय कार्य प्रणाली की व्यावहारिक जानकारी मिलती है। मंत्रालय ने कहा है कि विकसित भारत युवा संसद एक ऐसा जन आंदोलन है जिसको लेकर भारत के युवाओं की ऊर्जा, विचारों और आकांक्षाओं की राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होती है। राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों में लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। इसी कड़ी में जयपुर में आयोजित शिविर में पट्टा, लीज, भवन निर्माण स्वीकृति और नामांतरण जैसे कार्यों को प्राथमिकता के साथ समाधान किया जा रहा है। जेडीसी सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि शिविर के पहले दिन 327 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया।
2: जो हमारे एप्लीकेशन पेंडिंग चल रही हैं, जो हमारे पास अपने CCC सर्विसेज के ऊपर ऑनलाइन हैं, उन लोगों को हम मैसेज भेज रहे हैं कि जिनकी एप्लीकेशन लास्ट स्टेज पे है उनको जैसे आज हमने बुला रखा है, और जिनमें अभी थोड़े से काम है उनको जब नेक्स्ट कैंप लगेगा उनका तो बुलाएंगे। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि लगभग जो हमारी 6000 से ज्यादा CCC पे पेंडेंसी चल रही थी वो सारी पेंडेंसी को हम इस कैंप में खत्म करेंगे। इसके साथ साथ जो नई एप्लीकेशन आएंगी उनको भी इस कैंप में टेकअप करके खत्म करेंगे।
0: प्रदेश के अन्य जिलों में भी इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। सवाईमाधोपुर की लाभार्थी सुनीता अग्रवाल ने आवासीय पट्टा मिलने पर खुशी जाहिर की है और सरकार का आभार व्यक्त किया है।
3: मैं सवाईमाधोपुर जिले की रहने वाली हूँ और हमने पट्टे के लिए 1.5-2 साल पहले आवेदन करा था, तो आज हमें प्राप्त हुआ, हमें बहुत खुशी हुई और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री साहब का दिल से आभार करना चाहूँगी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: प्रदेश में गिवअप अभियान के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना NFSA से 82 लाख पात्र लोगों ने स्वेच्छा से अपना नाम हटवाया है। वहीं 84 लाख से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को योजना से जोड़ा गया है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि नए जुड़े लाभार्थियों को अब मुफ्त राशन के अलावा निःशुल्क इलाज, गैस सिलेंडर सब्सिडी और 5 लाख रुपए की दुर्घटना सहायता का लाभ भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का गिवअप अभियान की देश भर में सराहना की जा रही है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तैयारियों की समीक्षा की है। कल नई दिल्ली में आयोजित बैठक में श्री मोहन ने सभी राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने परीक्षार्थियों की सुगम यात्रा के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं करने को कहा। इधर प्रदेश में परीक्षा के सफल आयोजन के लिए राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। 21 जून को होने वाली इस परीक्षा में राजस्थान के 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके लिए 27 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने CBI की उस अर्जी को मंजूरी दे दी है जिसमें नीट यूजी पेपर लीक मामले में 3 आरोपियों से जेल में पूछताछ करने की इजाजत मांगी गई थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में अब झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

0: महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कल पुलिस मुख्यालय में हुई अपराध समीक्षा बैठक में इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में श्री शर्मा ने कहा कि संगठित अपराध और धमकी देकर वसूली करने वाले गिरोहों पर लगाम कसी जाएगी। उन्होंने नए आपराधिक कानूनों का उपयोग करते हुए गैंगस्टरों द्वारा बनाई गई अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने और उनके बैंक खातों को सीज करने के भी निर्देश दिए। पुलिस महानिदेशक ने सभी पुलिस अधीक्षकों को नशा तस्करी रोकने के लिए एक विशेष कार्य योजना बनाने को कहा है। इसके अलावा साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश भर में आज से स्टॉप डायरिया कैंपेन की शुरुआत हो रही है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में डायरिया की रोकथाम, समय पर उपचार, स्वच्छता, पीने का साफ पानी और जन जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। अभियान की थीम स्वच्छ जल, समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार रखी गई है। इसके अनुसार सभी जिलों में गतिविधियां की जा रही हैं। हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता ने बताया कि जिले में स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर बच्चों को दस्तरोधी दवा देंगे।
1: 5 वर्ष तक के बच्चों में दस्त रोगों से होने वाली गंभीर समस्याओं को रोकने के लिए आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा स्वास्थ्य कर्मियों की टीमें घर घर संपर्क कर दस्त रोग की पहचान, बचाव और उपचार संबंधी जानकारी देंगे तथा ORS पैकेट और जिंक टैबलेटों का वितरण करेंगे। सभी चिकित्सा संस्थानों में ORS कॉर्नर स्थापित कर ORS तथा जिंक टैबलेट का वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही सही से हाथ धोने की विधि, स्वच्छ पेयजल उपयोग, भोजन को ढककर रखने तथा खुले में शौच से रोकने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा ताकि दस्त रोग से होने वाले गंभीर परिणामों से बचा जा सके। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
0: और अब मौसम। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। इससे लोगों को भीषण गर्मी और लू से राहत मिली है। ज्यादातर स्थानों पर दिन का पारा 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। वहीं रात के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान भी 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा 42.6 डिग्री सेल्सियस तापमान फलौदी में रहा। वहीं जैसलमेर में 41.3 और बाड़मेर में 40.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इस बीच कल कई स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियां हुई। श्रीगंगानगर, सीकर, कोटपुतली बहरोड और चूरू में तेज धूल भरी आंधी चलने से जनजीवन प्रभावित रहा। जयपुर और पिलानी तथा झुंझुनू सहित कई शहरों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश का ये दौर जारी रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से नवाजा गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन करेंगे। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। और बच्चों में दस्त रोग से बचाव और उपचार के लिए प्रदेश भर में आज से स्टॉप डायरिया कैंपेन की शुरुआत हो रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 101.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। सुबह के 9:10 हुए हैं। नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम में फिर से आप सभी का स्वागत।

0: लिसनर्स, हम भी आपके बिना अधूरे हैं और चल रहा है प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर। हमारा भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। पिछले 12 वर्षों में देश के विकास के कई महत्वपूर्ण पड़ाव पार किए हैं। श्रोताओं, आज हम अवेयरनेस में जिक्र करेंगे विकसित भारत और सरकार के 12 वर्ष पर। डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन सेवाओं और तकनीकी नवाचारों ने आज नागरिकों के जीवन को आसान बनाया है और आज हमारा भारत दुनिया के अग्रणी डिजिटल देशों में अपनी पहचान बना रहा है। अब तक के वर्षों में बुनियादी ढांचे के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।
1: बिल्कुल विद्या, और जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ ऊंची इमारतें या बड़ी अर्थव्यवस्था की बात नहीं है, बल्कि विकसित भारत का मतलब है एक ऐसा देश जहां हर नागरिक को अवसर मिलते हैं, आधुनिक सुविधाएं हैं, तकनीक का लाभ गांव तक पहुंचता है, बुनियादी सेवाएं सुलभ हैं, और साथ साथ सबसे जरूरी है हर व्यक्ति की भागीदारी, ये भी उतनी ही जरूरी है। जिम्मेदार नागरिक पर्यावरण की रक्षा करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देते हैं और साथ साथ समाज के लिए अपनी जिम्मेदारियों को भी समझते हैं। ये सब इसी विकसित भारत की यात्रा का हिस्सा है। सोचिए, आपके अनुसार विकसित भारत के निर्माण में एक नागरिक के रूप में आपका क्या योगदान हो सकता है? क्योंकि विकसित भारत एक लक्ष्य नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों का एक संकल्प है जो साझा है। हम सब मिलकर जब कदम बढ़ाएंगे तो देश के निर्माण में जुट सकते हैं और देश को विकसित बना सकते हैं पूरा।
0: कह रही है ज्योति, नए एक्सप्रेसवे, रेलवे परियोजनाएं, आधुनिक हवाई अड्डे और बेहतर सड़क नेटवर्क देश की प्रगति को गति दे रहे हैं। इसके साथ ही स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल भी किए गए हैं। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों ने युवाओं और उद्यमियों को नए अवसर प्रदान किए हैं। इससे रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिला है। विकसित भारत का सपना केवल सरकार के प्रयासों से पूरा नहीं होगा, इसमें देश के प्रत्येक नागरिकों की भागीदारी भी आवश्यक है। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, समाज के विकास में योगदान देते हैं, हम विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं।

0: लिसनर्स, गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए हमारा प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर। पारा चढ़ा है शहर का और जहन भी है बेहाल। पारा चढ़ा है शहर का और जहन भी है बेहाल। गर्मी के शोर में उलझे हैं सारे ख्याल। कुछ बूंदे बारिश की मिल जाए तो राहत मिले, ठहरे कुछ पल सुकून से और संभले दिल के हाल। लिसनर्स, वेदर एंड हेल्थ में हम बात करेंगे बढ़ते तापमान का मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। इस चिलचिलाती गर्मी में हर कोई मानसिक शांति चाहता है, कुछ पल सुकून के ठंडक के साथ। उफ, ये गर्मी ज्योति जिसने सभी को आजकल बेचैन किया हुआ है, हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है बढ़ता तापमान और उसका प्रभाव हमारे दिमाग पर। इस समय रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, हीट वेव और लू से सभी बेहाल है, जिसका सीधा असर हमारी हेल्थ पर हो रहा है। लंबे समय तक तेज धूप में रहने से हीट स्ट्रोक भी बढ़ रहा है और साथ ही अगर हम लापरवाही रखेंगे तो ये जानलेवा भी हो सकता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही मौसम बदलता है या तापमान बढ़ जाता है ना, तो हमारे शरीर का अंदरूनी सिस्टम भी हिल जाता है। ज़्यादा पसीना निकलने से विद्या नमक की कमी हो जाती है, तो चक्कर आना और थकान आने जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं। और गर्म हवाएं चलती है तो हमारे शरीर का जो नेचुरल कूलिंग सिस्टम है वो फेल हो जाता है। इससे तेज़ बुखार और सरदर्द सा महसूस होता है। फिर चिलचिलाती धूप है, अगर अल्ट्रावायलेट रेज़ की भी समस्या बढ़ जाती है, यानी कि हमारी स्किन को फ़र्क पड़ता है, टैनिंग की समस्या भी बढ़ जाती है। और एक और बात करें तो गर्म मौसम में खाना भी जल्दी से खराब हो जाता है, तो पेट दर्द या फूड पॉइजनिंग का खतरा भी होता है। तो तापमान के साथ साथ अगर पोल्यूशन है, मिट्टी अगर ज़्यादा आसपास है, तो अस्थमा के मरीजों की परेशानी बढ़ जाती है। ये सारी बातें ऐसी हैं जो ऐसा लगता है तापमान बढ़ता है तो हमें परेशान करती है, लेकिन इन्हें सुनकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका असरदार इलाज भी तो है।
0: बिल्कुल है, और तेज़ गर्मी ने जहां हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया है, जिससे तनाव, चिड़चिड़ापन और नींद की समस्या बढ़ती जा रही है, इन सब से बचने के लिए सबसे पहले अपने मन को एकदम शांत रखें। किसी भी बात पर अनावश्यक

0: बहस ना करें, शांत मन से अपने कार्य को करें। परेशानी हर किसी के जीवन में है। खुद की मानसिकता को सकारात्मक रख के सामने वाले की बात को समझे, फिर जवाब दे, ताकि आप भी सही रहें और सामने वाले को भी हम सही खुद को प्रेजेंट कर सकें।
1: बिल्कुल विद्या, छोटे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, गर्भवती महिलाओं हों, या फिर या पहले से जो कोई किसी बीमारी से जूझ रहे लोग होते हैं ना, तो वो इस
0: जी
1: मौसम में ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, तो वो अपने आप को सुरक्षित रखें। और जाहिर तौर पर जो उनसे ज़्यादा या बेहतर हैं, स्वस्थ हैं, उन लोगों को चाहिए कि उन लोगों का कुछ खास ख्याल रखें, ताकि उन्हें इस मौसम से परेशानी ना हो। आप जूस पी सकते हैं, अपने तरल पदार्थ अपने खाने पीने में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा दोपहर के समय ज़रूरी ना हो तो बाहर जाने से बचें। कहीं जा रहे हैं तो एक तो कॉटन क्लोथ्स प्रेफर करें इन दिनों में, दूसरा सर ढक करके चलना है, जो सामान्य सी चीज़ें हैं उनका तो ध्यान रखना ही है। पेड़ लगाना भी हमारी जिम्मेदारी है, उसकी देखभाल भी हमें करनी चाहिए, ताकि भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हमारा ये एक कदम साबित हो सके।
0: बिल्कुल, ज्योति घर के अंदर ठंडा वातावरण बनाए रखें, माहौल को खुशनुमा बनाएं। यदि आज हम जागरूक होंगे तो आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य दे सकेंगे। अपनी मनःस्थिति के साथ स्वयं को भी खुश रखें और अपने परिवार को भी। स्वस्थ जीवन शैली के साथ एक अच्छी दिनचर्या को अपने जीवन में उतारें, सुरक्षित रहें और पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान अवश्य दें।

0: से चलने का वक्त हो गया है, इच्छा तो नहीं है लेकिन जो घड़ी है वो इजाजत नहीं दे रही है। तो आज के नमस्कार उदयपुर से इजाजत लेते हैं। आज के इस प्रोग्राम में मैं थी आपकी दोस्त विद्या और मेरे साथ
1: ज्योति।
0: तो इस गाने के साथ ही दीजिए इजाजत,
1: नमस्कार, नमस्कार।

Lake City. Non-stop music, non-stop fun. It's coolest one.

मौसम में थोड़ी सी मस्ती, हवाओं में थोड़ी सी गुफ्तगू और आपके हमसफर के पास हमेशा की तरह एक बेहद खूबसूरत कहानी। तो अपनी चाय या कॉफ़ी का कप संभालिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों के लिए हम और आप एक अलग ही दुनिया की सैर पर निकलने वाले।

वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी की। एक युवक ने ज्ञानी सुकरात से सफलता का रहस्य पूछा। सुकरात ने धैर्यपूर्वक उसका प्रश्न सुना, उसे उत्तर के लिए अगली सुबह नदी के किनारे मिलने को कहा। अगली सुबह जैसे ही वो लोग चले नदी की ओर, नदी में उतरे, पानी उनके गले तक आ गया, पर युवक को आश्चर्य हुआ जब सुकरात ने उसे पानी में डुबो दिया। युवक पानी से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन सुकरात बलवान थे, उन्होंने उसे तब तक पानी में रोके रखा जब तक कि उसका रंग नहीं बदलने लगा। सुकरात ने युवक का सिर पानी से बाहर निकाला, युवक हाँफने लगा, उसने गहरी सांस ली। सुकरात ने पूछा, जब तुम्हारा सिर पानी में था तब तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या चाहिए था? युवक ने उत्तर दिया, हवा। सुकरात ने कहा, यही सफलता का रहस्य है। जब तुम सफलता को उतनी ही शिद्दत से चाहोगे जितनी शिद्दत से तुम्हें पानी में रहते हुए हवा चाहिए थी, तब तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा कोई रहस्य नहीं है। तो इस कहानी से सीख यही है कि प्रबल इच्छा शक्ति ही सभी उपलब्धियों का आधार है। जिस तरह एक छोटी सी आग अधिक गर्मी नहीं दे सकती, उसी तरह कमजोर इच्छा शक्ति भी कोई महान परिणाम नहीं दे सकती।

ये है आपका मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो लेक सिटी 101.9 एफएम बैंड पर. गुड मॉर्निंग लेक सिटी. उदयपुर हमारे शहर की सुबह का तो अपना ही जादू है. पत्ते सागर की ठंडी हवाएं, सूरज पोल पर जगती हुई गलियां, कहीं मंदिर की घंटी, हाथों में चाय का प्याला और सब मिलकर बनाते हैं हमारे हर दिन को बहुत खास. तो सोचिए ना, खुशी के ये पल हमारे कितने नज़दीक ही होते हैं. कहीं दूर, कहीं ज़्यादा दूर मंजिल ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती. हमारे आसपास भी बहुत सारी खुशियाँ मौजूद रहती हैं. किसी को धन्यवाद कहना, किसी को माफ़ करना, किसी का हाल पूछना और किसी के लिए कुछ पल निकालना, ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं. हमें बहुत बड़ा एक चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती हैं और हमारे जीने की एक बड़ी वजह बन जाती हैं. सच है.

और एक अच्छी सी खबर है मॉर्निंग अपडेट्स के साथ कि देश की प्रमुख ट्रैवल कंपनी की ओर से जारी मॉनसून सीजन में देश के 30 जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल हैं उस लिस्ट में उदयपुर को 11th पोजीशन मिली है। शहर की लोकप्रियता है, यहाँ की अरावली की वादियाँ, झीलें, ऐतिहासिक धरोहरें, शाही विरासत, सिटी पैलेस जहाँ मेवाड़ के इतिहास से जुड़ी दुर्लभ धरोहरें संरक्षित हैं। तो इस तरह की जो लिस्टिंग हो रही है राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे उदयपुर को पहचान मिल रही है, तो निस्संदेह छवि मजबूत ही हो रही है और पर्यटकों की संख्या में भी अगली बार और इजाफा होगा ना।

0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: रजत पट से ये कार्यक्रम सुनिए हर मंगलवार की सुबह 11 बजे। इसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए कोई एक फिल्म, फिल्मों पर थोड़ी थोड़ी बातें और उन फिल्मों के जो हिट गाने हैं वो हम आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम रजत पट से में। तो जरूर सुनिए रजत पट से प्रोग्राम ओनली ऑन 101.9 FM रेडियो लेक्सिटी आकाशवाणी उदयपुर पर मंगलवार सुबह 11 बजे।
3: Okay.

बेशक आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो लेक सिटी 101.9 एफएम बैंड पर। मंगलवार की सुबह है, रूटीन आवर्स हैं और हम अपने काम में लगे हुए हैं, पर चलते चलते कुछ और भी बातें जान लेने से नॉलेज अपडेट ही होती है ना, क्योंकि ये सारी अपडेट हमें कहाँ न कहाँ काम आती है ये आप सोचिए। क्योंकि यूपीएससी ने सोमवार रात सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। ये एग्ज़ाम हुआ था 24 मई को 1016 पदों के लिए और अब जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं उनका नंबर है 13,343 और ये योग्य घोषित अभ्यर्थी यूपीएससी पोर्टल पर शुल्क भुगतान सहायक विवरण अपडेट करेंगे, कैडर वरीयता भरेंगे और मेन एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, उसका फॉर्म सबमिट करेंगे। तो ऐसे ही अपडेट्स हमारे आसपास जो बिखरी रहती है, हम जब सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो ये हमारे लिए जीवन में कहीं ना कहीं कारगर ज़रूर साबित होती है। चलिए अगली बात भी जान लें कि जम्मू श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन सेवा शुरू होने के बाद अमरनाथ यात्रियों की संख्या को देखते हुए होटल और टूर ऑपरेटर्स ने वहां 50% तक छूट की घोषणा की है और ये छूट पूरी तीर्थयात्रा के दौरान लागू रहेगी। यात्रा समाप्त होगी ना, ये अगस्त में राखी के दिन तक यात्रा रहती है, इसकी शुरुआत होगी 3 जुलाई से सावन महीने के दौरान।

आज का डिजिटल दौर ऐप के माध्यम से और रेडियो सेट पर मोबाइल के माध्यम से सुनते हैं आप अपना मनपसंद चैनल रेडियो लेक सिटी। जब डिजिटल दौर की बात करते हैं तो आज जितने एडवांस हम हो रहे हैं तो उतने ही कई लोग शातिर भी हो रहे हैं, कई चालाक भी हो रहे हैं और कुछ लोगों की मासूमियत का फ़ायदा उठाते हुए साइबर फ्रॉड कर देते हैं। पर साइबर ठगी का शिकार लोग एक तो अपडेटेड होते रहें, लगातार जागरूक बनते रहें और विश्वसनीयता के आधार पर ही फ़ोन का या टेक्निक का उपयोग करें। बहरहाल साइबर ठगी का शिकार लोग अब साइबर अपराधों के मामले में फ्रीज हुए बैंक खातों में दबी हुई या फंसी हुई रकम पाने के लिए मनी रिस्टोरेशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपनी राशि वापस पाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। पहले इस प्रक्रिया में बहुत समय लगता था, धन की भी अतिरिक्त परेशानी होती थी और अब 50,000 रुपये तक की राशि बिना कोई आदेश के भी रिफंड की जा सकेगी। आवेदनकर्ताओं को पूरी प्रक्रिया के दौरान ईमेल और एसएमएस के जरिए अपडेट्स भेजे जाएंगे। सभी राज्यों की पुलिस संबंधित एजेंसियों के लिए एक समान मानक संचालन प्रक्रिया भी तैयार की गई है ताकि पारदर्शिता बनी रहे, एकरूपता बनी रहे और लोग ऐसी ठगी का शिकार होने से बचें।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: बोल बोल के थक गया,
2: क्या हुआ?
1: नया किडबैक चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
1: करेक्ट।
3: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
1: चले
2: ले आ गया नया किडबैक।
4: RBI कहता है
5: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
7: Oh, lovely. Well done.
6: Business loan approved.
7: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
4: RBI कहता है
8: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
9: पता है जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
10: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
9: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
11: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़।

0: जितनी, बहुत बड़ा नंबर है ना। पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
3: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
1: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का। आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो लीक सिटी। मंगलवार की सुबह 10 बजे हैं और वक्त हो चला है एक ऐसे सफर का जहां वक्त ठहर जाता है, यादें गुनगुनाने लगती हैं। एक ऐसी आवाज के बारे में हम जानेंगे कार्यक्रम के इस पहले हिस्से में, जिनके बारे में महान संगीतकार नौशाद साहब ने कहा था कि अगर भगवान गाते तो उनकी आवाज हेमंत कुमार जैसी होती।

16 जून भारतीय संगीत जगत की सबसे उल्लेखनीय हस्तियों में से एक हेमंत कुमार को याद करने का अवसर देती है। एक ऐसे दुर्लभ कलाकार जिन्होंने गायक और संगीतकार दोनों ही रूप में उत्कृष्टता प्राप्त की। बहुत कम संगीतकारों ने दो अलग अलग रचनात्मक क्षेत्रों में इतनी गहरी और अमिट छाप छोड़ी है।

16 जून 1920 को वाराणसी में जन्मे और कोलकाता की गलियों में पले बड़े हेमंदा बचपन में गायक नहीं बल्कि एक लेखक बनना चाहते थे। उन्होंने बाकायदा प्रतिष्ठित देश पत्रिका में अपनी कहानी भी छपवाई। पर कहते हैं ना, विधाता ने उनकी उंगलियों में कलम की ताकत तो दी पर उनके गले में साक्षात सरस्वती का वास कराया था। अपने दोस्त सुभाष मुखोपाध्याय के कहने पर उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के लिए पहला गाना रिकॉर्ड किया और फिर साहित्य के आंगन से निकलकर संगीत के समंदर में आ गए।

हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर की यादें। कार्यक्रम अमर कलाकार में आज हम याद कर रहे हैं हेमंत कुमार को। एक गायक के रूप में हेमंत कुमार की आवाज़ में जो असाधारण गर्मजोशी थी, गहराई थी, संयम था कि उनके गाने आज भी स्थायी क्लासिकल गाने बने हुए हैं, जो उनकी भावनात्मक ईमानदारी और उनके कलातीत अपील के लिए कहे जाते हैं, पहचाने जाते हैं।

सुरीला सफ़र आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर से। आज का ये प्रोग्राम हम डेडिकेट कर रहे हैं गायक संगीतकार हेमंत कुमार को। हेमंत कुमार सिर्फ एक बेहतरीन गायक ही नहीं थे, एक जीनियस संगीतकार भी थे। साल 1954 में एक फिल्म आई थी नागिन, इस फिल्म का संगीत दिया था हेमंत दा ने। इस फिल्म का गाना मन डोले तेरा तन डोले, इस गाने में बीन की धुन बड़ी पॉपुलर हुई थी। आप जानते हैं उस दौर में उन्होंने ऐसा जादू जगाया कि लोग सिनेमाघरों में स्क्रीन के सामने पैसे फेंकने लगते थे। दिलचस्प बात तो यह है कि वो धुन किसी असली बीन से नहीं बजाई गई थी, बल्कि क्लेवियोलिन नाम के विदेशी कीबोर्ड और हारमोनियम को मिलाकर बनाई गई थी। इस फिल्म के लिए, इस संगीत के लिए हेमंत दा को उनका पहला फिल्मफेयर अवार्ड मिला।

गुजरे दौर की मेलोडी और अमर कलाकार हेमंदा। हेमंदा के सफ़र की बात हो और देवानंद साहब, गुरुदत्त, इनका जिक्र ना आए, ये तो नाइंसाफ़ी होगी। देवानंद की चुलबुलाहट को हेमंदा की आवाज़ ने एक अलग ही गहराई दी। और वहीं जब गुरुदत्त साहब पर्दे पर गमगीन होते थे तो पीछे से हेमंदा की आवाज़ रूह को छू जाती थी। हेमंदा ने बंगाली संगीत, रविंद्र संगीत की मिठास को हिंदी सिनेमा के रग रग में दौड़ा दिया था।

हेमंता, उनका अपने समकालीनों के बीच जो रुतबा था उसे इस तरह से समझ सकते हैं कि लता मंगेशकर ने एक बार कहा था, हेमंता के संगीत को सुनकर ऐसा लगता है मानो कोई साधु मंदिर में भजन गा रहा हो। ये टिप्पणी उनके गायन की आध्यात्मिक पवित्रता को, सहज सुंदरता को, सादगी

है ना। हेमंत दा की सादगी का आलम ये था कि इतने बड़े स्टार होने के बावजूद बेहद साधारण से रहते थे। साधारण धोती कुर्ता पहनते थे, हर छोटे बड़े कलाकार को गले से लगाते थे।

हेमंत कुमार और किशोर दा का जुड़ाव उनकी विरासत में एक और आयाम जोड़ता है। भारतीय संगीत के इन दो दिग्गजों के बीच साझा किए गए आपसी सम्मान ने संगीत जगत को और समृद्ध ही किया। कुछ

26 सितंबर 1989 को संगीत का ये चमकीला सितारा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गया। हेमंत दा आज भले ही हमारे बीच मौजूद नहीं है, पर जब भी शाम ढलेगी, जब भी कोई तन्हाई में खिड़की के पास बैठकर चाय की चुस्की लगाएगा, हेमंत दा अपनी आवाज़ के ज़रिए उससे गुफ्तगू करते मिलेंगे। अमर कलाकार, इसमें आज हमने कोशिश की हेमंत कुमार के जीवन के कुछ पन्नों को पलटने की। उम्मीद है इन गानों ने आपके सुबह को एक सुकून और रूहानी सुबह बनाया होगा। अमर कलाकार कभी मरते नहीं, हमारे दिलों में धड़कते हैं। सुनते रहिए रेडियो लेक सिटी।

0: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
1: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: विषय स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
2: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन विमेन

0: ड्रिवन मूवमेंट है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आप सुन रहे हैं शहर का लोकप्रिय रेडियो चैनल रेडियो लेक सिटी 101.9 एफएम बैंड पर। और अब वक्त हो चला है हमारे मॉर्निंग शो के सबसे चुलबुले सेगमेंट का, जिसका नाम है रजत पट से। रजत पट यानी कि सिनेमा का वो पर्दा जो हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। और आज इस प्रोग्राम में हम जिस फिल्म की बातें करेंगे, जिसके गाने सुनेंगे, उन गानों ने हमारी लव स्टोरीज को परवान चढ़ाया। कौन सी फिल्म की बात कर रहे हैं, चलिए हिंट देते हैं। 1991 रिलीज ये फिल्म।

दिल की बातों में कोई मजाक नहीं होता, हर किसी से तो ये इत्तेफाक नहीं होता। यूं तो दिमाग सब कुछ समझता है, मगर इस नादान दिल का कोई इलाज नहीं होता। इस फिल्म में एक ऐसी कहानी थी जहां दिमाग ने हार मानी और दिल जीत गया। और इस फिल्म को देख देख कर 90s एरा में सबने प्यार के सही मायने सीखे। महेश भट्ट की सुपरहिट म्यूजिकल रोमांटिक कॉमेडी मूवी दिल है कि मानता नहीं।

आप सुन रहे हैं रजत पट से रेडियो लेक सिटी पर और बात हो रही है फिल्म दिल है के मानता नहीं की। क्या आपको पता है फिल्म के मुख्य कलाकार पूजा भट्ट और आमिर खान की जो केमिस्ट्री स्क्रीन पर बेमिसाल दिखती रही।

शूटिंग के दौरान दोनों के बीच उतनी ही नोक झोंक रहती थी। आमिर खान अपने परफेक्शनिस्ट अंदाज में रहते थे तो पूजा भट्ट अपनी ही मस्ती में। पर दोनों जब स्क्रीन पर साथ आए तो जो उन्होंने किरदार निभाए, रघु जेटली और पूजा धर्मचंद, जान फूंक दी किरदारों में।

इस फिल्म के संगीतकार थे नदीम श्रवण, गीतकार समीर। कहते हैं कि इस फिल्म के सारे गाने पहले गुलशन कुमार जी ने अपने किसी और एल्बम के लिए तैयार करवाए थे, पर जब महेश भट्ट ने ये गाने सुने तो उन्होंने कहा, गुलशन जी, ये गाने किसी एल्बम के लिए नहीं बल्कि मेरी फिल्म के लिए बने हैं। और वाकई फिल्म का हर एक गाना सुपरहिट रहा। कोई भी गाना आप सुन लीजिए। और इसी फिल्म ने पूजा भट्ट के करियर को सातवें आसमान तक पहुँचा दिया था।

सफ़र चाहे कितना भी खूबसूरत हो, कितना ही लंबा हो, पर कहीं ना कहीं तो आकर रुकना ही पड़ता है। तो हमारे इस रजत पटसे का सफ़र अब ख़त्म होने को है। फिर हम अब जाते जाते आपसे ज़रूर ये कहेंगे कि फ़िल्म ये दिल है कि मानता नहीं, एक ऐसा दौर है, एक ऐसा एहसास है जो हमें सिखाता है कि प्यार में थोड़ी दीवानगी ज़रूरी है, थोड़ी ज़िद बहुत ज़रूरी है। दुनिया की परवाह किए बिना जो दिलों को जोड़े वो जज्बात हैं। प्यार तो बस एक अनकही अनजानी सी बात है। कोशिश तो बहुत की इस ज़माने ने हमें रोकने की, पर क्या करें, दिल है कि मानता नहीं। आइए इसी फिल्म का ये हसीन सा गाना सुनिए। खूबसूरत एहसास के साथ आपसे विदा लेते हैं, चलते हैं, फिर मिलेंगे।

FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर से रेडियो लेक सिटी। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम रजत पटसी। सुबह के 11:30 हो चुके हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम घोखड़ा।

गोखड़ा कार्यक्रम होना वाला सगला ही श्रोतागणा ने संगीता बाईसारू राम राम खम्मा गणी। घनी ही गर्मी पड़ रही है न तावड़ा रही तो आप पूछो ही मत। अनी गर्मी में यदि आप निकलो तो बाढ़ने निकलो, घरों बाढ़ने निकलो या बाढ़ने तावड़ा में निकलो तो मुंडो ने माथू दूध ढाकर निकलने छावे है, ताकि गर्म अमान तो बचाव वे ही है, लारे लारे सन टैनिंग जो वे स्किन पे वहीं भी आपने बचाव वे जावे है। और लू तो पड़ रही है, गर्मी भी घनी पड़ रही है, बट काल जाने ठंडक पहुँचाता तका राजस्थानी लोक संगीत आप माने ला रहे होता रहो और हुआ आपने यो लोक संगीत रो पह

गर्मी में आपने कोशिश करनी है कि दोपहर में गर्म बाड़ने नहीं निकला, पर निकला और जरूरी वे जदीज निकला, बट अगर निकला तो पानी री एक बोतल आपने लारे जरूर ले निकलो है, और भूखा पेट तो बिल्कुल भी नहीं निकलो है, ताकि लू बचाव वे सके है और शरीर में पानी री कमी नहीं वे है। तो दो ही वातारो आपने ध्यान रखना है कि एक तो भूखा पेट नहीं निकलना है और एक पानी री बोतल लारे ले निकलती है, और लारे लारे हुनता रहना है प्यारा सा राजस्थानी मन भावन गीत।

0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: गोखला कार्यक्रम में आप सुन रहे हो राजस्थानी लोक संगीत। पानी और गर्मी री आप बात कर रहा हैं तो कम कम 3 लीटर पानी गर्मी में जरूर पीणो छावे है। अगर आप ये पानी नहीं पीवा तो शरीर में पानी की कमी वे जावे है और डिहाइड्रेशन री प्रॉब्लम वे है, तो या बहुत गंभीर समस्या वे सके हैं। तो पानी अगर कोरो पानी आपने नहीं पावे तो छाछ पी सको, नींबू पानी पी सको, केरी पुदीना रो पानी पी सको हो, लस्सी पी सको हो, कड़ी भी फॉर्म में पानी शरीर में जानो छावे है। तो पानी बहुत अच्छी चीज़ है, वैसे भी पीनी छावे है, लेकिन होता रो आप माने ला रे लोक संगीत और देता रो कालजा में ठंडक।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैक चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले ले आ गया नया किडबैक।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।

अभी बात कर रहे हैं गोखड़ा कार्यक्रम में और हुलता जा रहे हैं राजस्थानी लोक संगीत, तो हुना आगलो गीत और अंडिला रही पाछा मिलेंगा। मानो कार्यक्रम रो टाइम भी यू है, तो अभी आप ही चाला संगीता बाई सारू राम राम खमागणी सा।

101.9 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो लेक सिटी। अभी आपने सुना कार्यक्रम गोखड़ा। आइए अब सुनते हैं हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: गुड थाने फील।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। फ्रांस के एवियां शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
2: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता

0: प्रस्थान से पहले मुलाकात की, उन्हें शुभकामनाएं दी और इस कठिन परिस्थिति में उनके धैर्य और दृढ़ता की सराहना की। दूतावास ने विदेशों में भारतीय नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। नागालैंड में आज से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने नागरिकों से स्वगणना प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा है। स्वगणना की सुविधा 30 जून तक उपलब्ध रहेगी। घर घर जाकर जानकारी जुटाने का काम अगले महीने की पहली जुलाई से 30 जुलाई तक किया जाएगा। आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में मामूली तेजी देखी गई। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 76582 और निफ्टी 66 अंक बढ़कर 23920 पर था। भारत ने न्यूजीलैंड में महिला एफआईएच हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड में एफआईएच हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो लीक सिटी। आइए अब जुड़ते हैं हमारी विविध भारती की राष्ट्रीय सेवा से और सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

विजय और साथियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। डिस्को डांसर फिल्म का नाम था अनजान, ने से लिखा, बप्पी लहरी का संगीत था। और आज इस प्रोग्राम में यादों की महफिल में आपको सुनवा रहे हैं अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर फिल्माए गीत, उनकी फिल्मों से गीत। आज उनका जन्मदिन है और विविध भारती परिवार की ओर से अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: गुलामी फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, गुलजार ने इसे लिखा था। लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आपने सुना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज है।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

कुमार सानू और सुजाता गोस्वामी की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फूल और अंगार फिल्म का नाम था। रानी मलिक ने इसे लिखा और अनु मलिक का संगीत।

फिल्म गोलमाल 3 से ये गीत अभी आप सुन रहे थे सुदेश भोसले की आवाज में, कुमार ने इसे लिखा था और अमर मोहिते का संगीत था। आप सुन रहे हैं इस वक्त यादों की महफिल विविध भारती से।

बैनी दयाल, श्रेया घोषाल, एआर रहमान की आवाज़ों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे युवराज फिल्म से। माफ़ कीजिए, श्रेया घोषाल की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। गुलजार ने इसे लिखा था और एआर रहमान का संगीत था।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, प्यार झुकता नहीं फिल्म का नाम। एसएच बिहारी ने इसे लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।

फिल्म गुरु से ये गीत अभी आप सुन रहे थे ए आर रहमान और चिन्मयी की आवाज़ों में गुलजार ने इसे लिखा। ए आर रहमान का संगीत था। आज यादों की महफिल में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती अभिनीत फिल्मों से चुनिंदा गीत हमने आपको सुनवाए। इसके साथ ही ये प्रोग्राम संपन्न होता है।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। प्रोग्राम है सुरीला सफर। मैं हूं अनुराधा, आज आपके इस सफर में आपके संग। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी तरफ से एक इबारत या टेक्स्ट पोस्ट किया जाता है, जिसमें से आपको शब्द चुनने होते हैं और साथ ही साथ उन शब्दों से कौन से गीत आज इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं ये बताना है। तो ये तो आप बखूबी करते हैं और लंबी लिस्ट मुझ तक पहुंच चुकी है, बहुत सारे गीत आ चुके हैं कि कौन कौन से होंगे। और आपको बता दें कि एक गीत की फरमाइश, या यूं कहें कि एक गीत को पहचाना है आपने बहुत अच्छे तरीके से, और हो सकता है उसी गीत से हमारी आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत हो। देखते हैं आपकी ये लिस्ट और हमारी लिस्ट गीतों की कितनी मेल खाती है। साथ ही साथ उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, उनके लिए इबारत एक बार फिर से पढ़ देते हैं। तो इबारत कुछ इस प्रकार है, कभी कभी यूं ही जिंदगी में मोहब्बत किसी अजनबी हसीना से मिल जाती है और दिल वीरान राहों पर ख्वाबों की रानी बनकर खिल जाता है। तुम्हारी याद में लिखे खतों के पन्नों पर हजारों रंग के नज़ारे उधर आते हैं जब तुम्हारे दो नयन मुस्कुराते हैं। मेरा दिल का चैन भी लौट आता है, ये जुल्फे रेशमी जाने कैसी खुशबू बिखेर जाती है। तुमने दिल को ऐसे चुरा लिया है कि सांसें भी तुम्हारा नाम गुनगुनाती है। बिगड़ जाए जब कोई बात, तेरा हाथ मेरे हाथ में हो अगर, तो शाम क्या हर रात फिर से सवेरा बन जाए। कतरा कतरा कर चलो हम एक कहानी में ढल जाएं। तो इबारत एक बार फिर से आपके सामने पढ़ दी है, और चलिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ जिसका सबसे ज्यादा जिक्र मैसेजेस में आया है।

पर। सिनेमा बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

एक अजनबी हसीना से किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। अजनबी फिल्म का नाम था, आनंद बख्शी ने इसे लिखा था और आर डी बर्मन की तर्ज थी। आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं और ये एक ऐसा गाना है जो हर किसी ने लिखा, यानी कि बहुत पॉपुलर, इसीलिए शुरुआत इसी गाने के साथ की गई क्योंकि आपकी जो फरमाइश है सर आंखों पर, और बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेजेस। एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि हमारी जो इबारत है उससे भी काफ़ी मॉडिफिकेशन करके या उससे इंस्पायर होके बहुत सारे इबारत लिखी गई है, कविता लिखी गई है, कुछ पंक्तियाँ लिखी गई है जो कि बहुत अच्छी लग रही है। हमारे श्रोतागण एक दूसरे को नमस्कार करते हैं और साथ ही बोलते हैं कि सुरीला सफ़र कारवां के हम सफ़र साथियों को नमस्कार। बहुत अच्छा लगता है जब हम एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। साथ ही इन्होंने लिखा है कि प्रेम प्रसंगों की श्रृंखला के इबारतों में आज भी दिल के किसी कोने में छुपी शून्यता को प्रेम की मीठी एहसासों से पूर्ण करने की खूबसूरत कोशिश की गई है। सच है, उम्र की सीमा बंधन को दरकिनार कर दिल जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अनायास ही मोहब्बत की दस्तक दे जाता है। कितनी खूबसूरत बात कही है। हमारे एक और श्रोता है, वो लिख रहे हैं, मुस्कुरा उठे हैं और कह रहे हैं कि हम तो उम्र के उस पड़ाव में हैं जहां अजनबी हसीना तो क्या, अपनी हसीना भी भाव नहीं देती। अगर चाय मांगो तो जवाब नहीं मिलता, खुद से बना लो। ये प्यारी प्यारी मीठी मीठी नोक झोंक भी तो जिंदगी में रंग भरती है, ये भी अलग तरह का रंग है। बिल्कुल। साथ ही एक श्रोता लिखते हैं कि जो वीरान राहों को गुलजार बना देता है वो है मोहब्बत का रंग, और साधारण दिनों को खास बना देता है वो है मोहब्बत का रंग। जब प्रेम दिल में घर कर लेता है तो खतों के पन्नों पर शब्द नहीं भावनाएं उतरती है। यादों के रंग इतने गहरे होते हैं कि हर पन्ना एक नई तस्वीर बन जाता है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि एक प्रेमी जब प्रेमिका से मिलता है तो एक इत्तेफाक ही होता है, क्योंकि नजर में तो बहुत आते हैं, अब जो नजरों को भा जाए बस मोहब्बत वहीं पर कबूल कर ली जाती है। बहुत अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और मोहब्बत ना हो तो फिर जिंदगी के रंग फीके लगने लगते हैं।

हमारी एक श्रोता कहते हैं कि आप तो हमसे सवाल काफ़ी पूछती हैं, हालांकि हमने अभी सवाल पूछना शुरू नहीं किया आज के इस प्रोग्राम में, लेकिन वो कहते हैं कि वो हमसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आज की इबारत में सबसे अच्छा शब्द हमें क्या लगता है, तो वो भी हम आपको जल्द बताएंगे। फिलहाल ये गीत

फिल्म कन्यादान से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और नीरज ने इस गीत को लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। साथ ही ख़तों की बात हुई, पत्रों की बात हुई इस गीत में, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने पत्र लिखने की जो आदत है उसे रखी है या नहीं रखी है, क्योंकि आजकल जो डिजिटल हो गया है हर तरफ, तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी को यूज़ करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या वो पुराने ज़माने की खुशबू, वो ख़त लिखना, वो पत्र भेजना, क्या अब

अभी तक भी ऐसा होता है? तो चलिए आप मुझे बताइए कि पिछली बार आपने खत, पत्र या एक प्यारा सा जन्मदिन पर या किसी ऐसे मौके पर किसी को प्यारा से अपने हाथ से लिखा खत, कुछ पंक्तियाँ कब लिखी? मोबाइल पर नहीं, एसएमएस पर नहीं, व्हाट्सएप पर नहीं, लेकिन आपने एक डायरी पर किसी को लिखकर कब पत्र दिया और क्या लिखा? वो लिखना अपने आप के लिए भी हो सकता है। हमारे श्रोता कहते हैं कि प्रेम वो भावना है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्रकृति या ईश्वर के प्रति स्नेह, समर्पण, विश्वास, सम्मान और निस्वार्थ अपनापन होता है। प्रेम में स्वार्थ कम और दूसरे के सुख की चिंता अधिक होती है। जी हाँ, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे 12 गीतों की लिखी हुई इबारत में तीसरे नंबर का लिखा हुआ गीत अभी अभी हमने शामिल किया कन्यादान फिल्म से। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि देखते हैं कि कौन सी लिस्ट जो है हमारी पूरी होती है गीतों की। उन्होंने एक लिस्ट बना ली, तो वो तो ज़रूर देखते हैं कि मेल खाती है कि नहीं खाती, लेकिन साथ ही साथ आप मुझे बताइए कि आपने पिछली बार किसे प्यार भरी पाती लिखी है। साथ ही साथ ये जो अगला गीत अभी आप सुनेंगे, उस गीत को कौन से फिल्म से लिया गया है और उसमें कौन अभिनेता और अभिनेत्री है जिस पर ये गीत फिल्माया गया है, मुझे जल्दी से लिख भेजिए। मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपका मैसेजेस पर।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में गीत अभी आप सुन रहे थे, और बिल्कुल सही जवाब दिया बहुत सारे श्रोताओं ने कि स्वयंवर फिल्म से इस गीत को लिया गया है, और शशि कपूर मौसमी चैटर्जी पर फिल्माया ये गीत, बहुत ही खूबसूरत, और बहुत सारे सही जवाब मिले हमें इसके लिए। साथ ही साथ खतों की बात जहाँ चल रही है वहाँ पर भी बहुत सारे हमें मैसेजेस मिले हैं। पोस्टकार्ड अंतर्देशीय पर पत्र पर नहीं, लेकिन व्हाट्सएप पर अगर किसी से बात नहीं हो रही है तो खत के रूप में ही उसे लिख देती हूँ, वो भी पढ़कर समझकर वैसे ही लिख देते हैं, फुर्सत नहीं है बात करने की, तो मुझे यही अच्छा लगता है। हमारे दूसरे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत हमारी सगाई से पहले और सगाई के बाद के यादगार पलों पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि सगाई से पहले मेरी होने वाली धर्मपत्नी मेरे लिए अजनबी हसीना ही तो थी, जो वास्तव में मेरे दिल के वीरान राहों पर सपनों की रानी बनकर खिल जाती है। अरे वाह, आपने हमारी इबारत का इस्तेमाल करके कुछ शब्दों को चुनकर बहुत ही खूबसूरत मैसेज हम तक पहुंचाया है। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि डिजिटल दौर में जहां संदेश एक पल में पहुंच जाते हैं, वहां खत लिखने का सुख कहीं पीछे छूट गया है, लेकिन आज जब मैंने विविध भारती के फरमाइशी कार्यक्रम के लिए अपने हाथों से खत लिखा तो लगा जैसे समय कुछ देर के लिए ठहर गया हो। कागज़ पर उतरते शब्दों के साथ पुरानी यादें भी लौट आई, वो डाकिए का इंतज़ार, लिफाफे की खुशबू और अपनेपन से भरे अक्षर। क्या बात है, बिल्कुल सही। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि पारिवारिक जिम्मेदारी कुछ इस तरह रही कि कभी प्यार में खत लिखने और पैगाम भेजने का समय नहीं मिला, शादी हो गई, श्रीमती जी बन गई और अब उस मुकाम पर है उम्र के कि इसकी नौबत ही नहीं आ रही है। क्या जमाना था, खत के इंतजार में दिन गंवाते थे और आज कुछ सेकंड में खत मोबाइल पर आ जाता है। बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि आज की इबारत में सबसे खूबसूरत शब्द उन्हें खुशबू लगता है, ये पहले प्यार की खुशबू। जी हाँ, हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि हमारी वाली हसीना तो कहती है चाय बना रहे हो तो हमें भी पिला देना। क्या बात है, क्या बात है, ये प्यार मिठास नोकझोंक, यही तो जिंदगी का फलसफा है और यही जिंदगी में रंग भरता है। चलिए हमारे गीतों की लिस्ट पर पहुंचते हैं। जो अगला गीत अभी आपको सुनवाने जा रही हूं वो है कभी कभी फिल्म से। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, अब सवाल ये है कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर हैं, ये आप जानते हैं, लेकिन उन दोनों का प्रोफेशन क्या होता है, वो काम क्या करते हैं, ये आपको हमें बताना है। इस फिल्म में जो कैरेक्टर, जो किरदार वो निभा रहे हैं, वो काम क्या करते हैं, प्रोफेशन क्या है, वो हमें बताइए।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरीला सफर। और इस संदेश से पहले जो गीत अभी आपने सुना वो कभी कभी फिल्म से था, लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़ों में और साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा, खयाम का संगीत था। और इसके बारे में हमने एक सवाल आपसे पूछा था, सवाल याद है ना?

सवाल ये था कि अमिताभ बच्चन और शशि कपूर जो इस फिल्म में जिस किरदार में हैं उनका प्रोफेशन क्या है, वो काम क्या करते हैं। तो हम तक कुछ मैसेजेस पहुँचे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि कवि शायर का काम करते हैं, वो शायर हैं, लिखते हैं, लेखक हैं। और साथ ही एक और श्रोता ने हमारे लिखा है कि प्रोफेशन तो याद नहीं है लेकिन मेरा ऑल टाइम फेवरेट गीत है तो सुनने में ध्यान है। एक और श्रोता हमारे जवाब देते हैं इस सवाल का कि अमिताभ बच्चन कवि थे और शशि कपूर एक अमीर व्यापारी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म कभी कभी में अमिताभ बच्चन एक शायर होते हैं जो शायरी कविताएं लिखते हैं, बाद में वो दूसरे कार्य यानी कि कंस्ट्रक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं और ऋषि कपूर साहब बाद में उन्हीं के कंस्ट्रक्शन में कार्य करते हैं। क्या ये सही है? थोड़ा थोड़ा सही है लेकिन आधा कह सकते हैं कतरा कतरा सही है और कतरा कतरा पूरी तरह से सही नहीं है। तो इस बारे में और आपके संदेशों का इंतज़ार रहेगा कि दरअसल उन दोनों का प्रोफेशन इस फिल्म में क्या है, मुझे लिख भेजिए। साथ ही एक और श्रोता है जो हमें लिखते हैं कि ख़त लिखना जिसमें वो जज्बात, वो प्यार इजहार आजकल के फ़ोन या सामने कहे जाने से नहीं आते हैं, एक एक शब्द पढ़ने से जो सिहरन, जो रोमांच होता है वो कहीं भी नहीं मिलता। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि वैसे तो जिन गीतों को नहीं सोचा था वो अगर बजने लग जाएं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। बिल्कुल सही बात। तो आप मुझे लिख भेजिए कभी कभी में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के किरदारों का क्या प्रोफेशन है, क्या काम वो करते हैं उस फिल्म में। और साथ ही हम बढ़ते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये गीत यादों की बारात से अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने से लिखा था, आर डी बर्मन की तर्ज थी। तो व्यवसाय पर, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के व्यवसाय पर बहुत सारी बातें आई हैं यहाँ पर, बहुत सारे संदेश आए हैं कि उनका क्या प्रोफेशन था, वो क्या काम करते थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी मैं अमिताभ व्यवसायी हैं और शशि कपूर सिविल इंजीनियर। एक और श्रोता लिखते हैं कि अमिताभ बच्चन उसमें शायर और लेखक बने हैं और शशि कपूर आर्किटेक्ट बने हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि कभी कभी फिल्म में अमिताभ बच्चन एक कवि के रूप में होते हैं, बाद में वो अपने पिताजी का बिजनेस संभालते हैं, कोयले की खदान का काम संभालते हैं और वहीं शशि कपूर इंजीनियर या आर्किटेक्ट होते हैं। अभी भी पूरा जवाब नहीं मिल पाया है। मेरे ख्याल से और मैसेजेस आने देते हैं इस बारे में, क्योंकि ये बड़ा रोचक होता जा रहा है। जी हाँ, पहले वो शायर होते हैं लेकिन बाद में अपने पिताजी का बिजनेस संभालते हैं और सिविल इंजीनियर का काम करते हैं, और साथ ही साथ जो शशि कपूर होते हैं वो आर्किटेक्ट होते हैं, यानी कि वो नक्शे बनाते हैं मकानों के ताकि वो घर बन सके, और अमिताभ बच्चन सिविल इंजीनियर का काम करते हैं जहाँ पर वो कोशिश करते हैं कि उन नक्शों के अनुसार बिल्डिंग, घर, इस तरह के प्रोजेक्ट्स को पूरा कर पाएं। ऐसा ही कुछ। पत्रों की बात चली थी तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जब वे पाठशाला में पढ़ते थे तब खत लिखने का बड़ा शौक था, सभी रिश्तेदारों को खूबसूरत खत लिखा करते थे। बाद में उन्होंने एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए आए वो, और वहाँ उनकी एक टीचर से दोस्ती हो गई, और उसके बाद बहुत लंबा चौड़ा ये मैसेज है, वहाँ पर भी वो खूबसूरत खत लिखते थे। तो ये जो खत लिखने का सिलसिला है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्रेरणादायक बातें भी लिखते थे, तो ऐसा उनका खतों का सिलसिला चलता रहा। उनके खत आज भी इनके लिए यादगार विरासत की तरह है।

0: अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
3: आगे सैलरी? नहीं झुमके ना, पहले बचत,
4: पहले झुमके।
3: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
4: लेकिन झुमकों का क्या,
3: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
5: आरबीआई कहता है,
2: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: को सुनते हैं। जी हाँ, फिलहाल आते हमारे अगले सवाल पर। गीत तो मैं आपको जरूर सुनवाऊंगी, लेकिन अभी जो गीत आपने सुना बसेरा फिल्म से, जहां पर सवेरा हो बसेरा वहीं है। बसेरा मतलब घर, लेकिन इसका अगर दूसरा मतलब देखा जाए तो जहां आपको सुकून मिलता है, जहां आपका दिल आनंदित हो जाता है और मन बसता हो। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां आपका मन बसता है? ज़रूरी नहीं कि वो घर ही हो सकता है, कोई जगह, कोई ऐसी जगह जहां आप जाकर एकदम आनंदित हो जाते हों, या आपको वो सुकून मिलता हो, या कोई ऐसी जगह जहां आप घूम कर आए हों, या कोई पुरानी याद, जहां पर भी आपको लगता है कि वो आपका बसेरा है। मुझे लिख भेजिए, इंतज़ार रहेगा आपके संदेशों का। फिलहाल ये अगला गीत इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं।

मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे। इस गीत में दो रास्ते फिल्म का नाम था। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था और तर्ज थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। हमारे श्रोता लिखते हैं कि खत लिखने का वो जमाना बड़ा ही खूबसूरत था। किसी के खत का इंतजार ऐसा होता था जैसे कि किसान बेसब्री से बारिश का इंतजार करता हो। वो मनचाहा खत मिलने पर खुशी का ठिकाना नहीं रहता था, मानो हमने बहुत बड़ी फतेह हासिल कर ली हो। काश वो खत लिखने का जमाना दोबारा लौट आए। फिलहाल आप अपने लिए खत लिख सकते हैं, अपने जो करीबी हैं उनके लिए लिख सकते हैं, और विविध भारती तो है ही आपके खतों के इंतजार में। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने आखिरी खत कब लिखा ये याद नहीं, लेकिन बहुत सालों पहले पिताजी को खत लिखा था और अभी तक संभाल के रखा है, और पत्नी को लिखे सारे पत्र भी पिछले कई कई सालों से उन्होंने सुरक्षित रखे हुए हैं। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि जब भी वो कोरे कागज पर स्याही बिखेरती हैं तो उन्हें एक अजीब सा सुकून मिलता है, एक ठहराव महसूस होता है। खत लिखते समय भागती हुई दुनिया जैसे रुक जाती है। हर एक शब्द को चुनना और उसे कागज पर उतारना एक ध्यान की तरह महसूस होता है। अपनी उंगलियों से पेन को पकड़कर कागज पर दबाना अंदर के उमड़ते हुए जज्बात को एक आकार देता है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि 11-12 गीतों की लिखी हुई इबारत में से पांचवें नंबर पर ये जो गीत है रेशमी जुल्फें, ये शामिल हुआ है, इन्हें अच्छा लग रहा है। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि लाखों पुराने रखे हुए खतों की दराज जब भी खुलती है तो उनकी पीली पड़ चुकी रंगत और खुशबू पुराने दौर में ले जाती है। उन्हें दोबारा पढ़ना बीते वक्त के किसी अजीज शख्स को दोबारा से गले मिलने जैसा लगता है, किसी खास व्यक्ति के गले मिलने जैसा लगता है उन्हें। हाँ जी, बिल्कुल। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इंसान पशु पक्षी के रात्रि को आराम के रहने के स्थान को बसेरा कहते हैं, और एक श्रोता लिखते हैं कि भोपाल की झील के किनारे बसेरा है उनका, जहां उनकी सारी यादें ताज़ा होती है और उन्हें भोपाल सिटी से बहुत प्रेम है।

येसुदास को आप सुन रहे थे। इस गीत में छोटी सी बात फिल्म का नाम है और साथ ही दिया था आशा भोसले ने इस गीत में। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारा बसेरा बताया है कि जहाँ जहाँ उन्हें अच्छा लगता है। हमारे श्रोता कहते हैं कि जहाँ पूरे परिवार को एक साथ एक दिल से आत्मिक संतोष और शांति मिलती है वहीं पर बसेरा होता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि खत के नाम पर बहुत से वाक्य याद आ रहे हैं पर क्या लिखें और क्या ना लिखें। जी हाँ, फिलहाल इजाज़त चाहेंगे आपसे इस प्रोग्राम में मैं अनुराधा, जिसने आज इस सफ़र में आपका साथ दिया। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, आप बने रहें विविध भारती के संग।

आज त्रिवेणी की धाराएं मिल रही हैं जल और जल प्रदूषण पर। दोस्तों, विकास और तकनीक के इस युग में औद्योगिकीकरण बढ़ा है और शहरीकरण भी खूब हुआ है। वाहनों की तादाद खूब बढ़ी है जिससे जीवाश्म ईंधन का प्रयोग ज्यादा होने लगा है। जंगलों पेड़ों की कटाई चरम पर है। पेड़ों की कटाई के वक्त शायद हमारा ध्यान इस ओर नहीं जाता कि एक दिन काटे गए ये वृक्ष हमसे बदला लेंगे। इनकी कटाई से धरती माँ रुष्ट होंगी और अब धरती का कोप हम लगातार देख रहे हैं। चलिए इस बरस थोड़ी कोशिश करें इन बातों को नियमित रूप से अमल करने की।

2013 को अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष घोषित किया था, जिसके तहत सभी देशों को जल आपूर्ति हो सके इसका प्रयास किया गया। खेती में पानी की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। अब तो बहुत सारे देशों और प्रांतों में ये भी ध्यान रखा जाता है कि ऐसे बीजों का प्रयोग किया जाए जिससे कम जल में ज्यादा उत्पादन किया जा सके। इन सब बातों के मूल में है जल, यानी पानी कीमती है, ये घट रहा है, इसे बचाएं, पानी की हिफाजत करें।

दोस्तों, झीलों, नदियों और समुद्र के पानी लगातार प्रदूषित हो रहे हैं। जल प्रदूषण जल में रहने वाले जीवों, पादपों और संपूर्ण जैविक तंत्र के लिए विनाशकारी है। जल प्रदूषण के कारण क्या हैं, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। नदियों में जानवरों या इंसानों की मृत काया को यूं ही प्रवाहित कर देना, इसके अलावा औद्योगिक कचरा को नदियों, जलाशयों में फेंक देना, इससे बहुत बड़े स्तर पर जल प्रदूषण होता है। ये प्रदूषित जल हमारे घरों में रिसाइकल के बाद पीने के काम आता है। प्रदूषित जल पीना स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है, ये हम सब जानते हैं।

0: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। भारत ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखने पर सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। फ्रांस के एवियन शहर में संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। भारत ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखने पर सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: ऐसे देश है जो अपने वृद्ध होती आबादी और श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ साझेदारी उनके लिए काफी नेचुरल है और उनका बहुत सीधा फायदा उनको मिलता है। एक तो भारत के पास एक विशाल युवा और कुशल प्रतिभाओं का समूह है जो वैश्विक तकनीक और सेवा क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जागृति, यह साझेदारी केवल मानव पूंजी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हाल में अपनाए गए भारत फ्रांस नवाचार रोडमैप को आप देखें, उससे साफ रेखांकित होता है कि G7 देश अब भारत को केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि भारत एक अहम और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। जागृति
1: अंकित, आज के दौर में जैसे जैसे AI आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, भारत में मौजूदा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा समावेशी AI डेवलपमेंट के लिए किस तरह से सहायक हो सकता है?
0: बिल्कुल जागृति, देखिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी DPI और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का एक साथ आना वास्तव में समावेशी विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये देखने वाली बात है कि एकाधिकार वाले निजी प्लेटफॉर्म्स लाने के बजाय भारत ने आधार और UPI जैसी अपनी डिजिटल संरचना को पब्लिक गुड के लिए बनाया है। मतलब पहले दिन से ही व्यापक आबादी और सर्वसमावेशिता के उद्देश्य से ये मॉडल डिजाइन किए गए हैं। और अब जब आप इसमें AI को जोड़ देती हैं, तो भारत का DPI बहुत विविधतापूर्ण, उच्च गुणवत्ता वाला और सहमति आधारित डेटाबेस प्रदान करता है, जो AI मॉडल्स को जिम्मेदार और निष्पक्ष बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जी जागृति,
1: धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। इस प्रदर्शनी में स्लोवाकिया के कलाकारों की कृतियां भी शामिल थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ब्रातिस्लावा से बनारस का जुड़ाव बताते हुए स्लोवाकिया के कलाकारों द्वारा वाराणसी की रचनात्मक प्रस्तुति की सराहना की। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बुधवार शाम पेरिस पहुंचेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का सिलसिला दोपहर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां संबोधन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। यह आयोजन भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा कि यह प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं।
3: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का एक कार्यक्रम आयोजित

0: किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा संसद से जुड़े, अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे।
1: सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट से जुड़े हुए हैं।
0: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का एक कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा संसद से जुड़े, अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे।
1: सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियम

0: और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केन्द्र और सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि फॉर्म 6 के तहत मौजूदा सत्यापन तंत्र अपर्याप्त है और इसके तहत उचित सहायक दस्तावेज के बिना भी व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
1: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे हैं।
0: ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए देश की राजकोषीय नीति में बदलाव आ रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तात्कालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से हटकर दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता की ओर अग्रसर है। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार के अनुसार सेंसेक्स 475 अंक बढ़कर 76,740 पर और निफ्टी 115 अंक बढ़कर 23,970 पर पहुंच गया। महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित एफआईएच हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित एफआईएच हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आकाशवाणी चेन्नई आज अपनी स्थापना की 88वीं वर्षगांठ मना रहा है। एआईआर चेन्नई ने राज्यभर में लाखों लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर दिया बल। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा और भारत ने महिला एफआईएच नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: ये नज़र लौट कर फिर आएगी। आप सुन रहे थे आशा भोसले को इस गीत में, मेरे सनम फिल्म का नाम था। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, ओपी नैयर का संगीत।
1: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म थी जंगली, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा शंकर जयकिशन की तर्ज।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, संगम फिल्म से हसरत जयपुरी ने से लिखा और शंकर जयकिशन की तर्ज थी। और अब लीजिए सुनिए आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश, आपको सुनवा रहे हैं गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, आई मिलन की बेला फिल्म का नाम है, हसरत जयपुरी ने से लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज।

0: की सहेली।
1: कार्यक्रम सखी सहेली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ है
2: आरती श्रीवास्तव।
1: आप सभी को हमारा
2: नमस्कार।
1: नमस्कार, कैसी हो आरती?
2: बिल्कुल ठीक है। बस इस गर्मी में जितने ठीक हो सकते हैं उतने ठीक है।
1: बिल्कुल सही कहा, इस गर्मी में हम जितने अपने आप को अच्छा रख सकते हैं उतना हमें रख लेना चाहिए, वरना तो तबीयत खराब होती देर भी नहीं लगती।
2: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से, पसीने की वजह से ना बहुत परेशानियां हो रही हैं, तो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, अच्छा ध्यान रखिए।
1: हाँ बिल्कुल, ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, अपने पढ़ने का ध्यान रखना है, सोने का, कब सोते हो कब उठते हो,
2: और कोशिश करिए
1: सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। और ऐसे में कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा आप घर पर रहें। ठीक है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, वो तो है ही, इसके अलावा फालतू बाजार में जो घूमने की हमारी आदत होती है वो हमें थोड़ा बदलनी है।
2: बहुत जरूरी हो तो ही आप घर से बाहर निकलिए और पूरे चीजों के साथ निकलिए, यानी कि अपने अच्छे से अपना सिर ढक के निकलिए, एक गीला कोई कपड़ा है उसको अपने सर पे रखिए, या इस तरीके की चीजें आप करके, और पानी की बॉटल जरूर लेके जाए, इस तरीके का आप लेके चलिए, तो जिससे कि आपको गर्मी से बहुत ज्यादा परेशानी ना हो, तबीयत ना खराब हो।
1: और घर पर बैठकर पढ़िए ना, सबसे अच्छी बात है कि दिन हो या रात हो या शाम हो, अगर हमने पढ़ने की आदत डाल ली है ना आरती, तो पढ़ना जो है वो एक बेहद शानदार आदत है। और ये जो किताबें हैं वो हमारा ज्ञान तो खैर बढ़ाती ही है, इसके अलावा हमें नई दुनिया में ले जाती है और हमारा तनाव कम कर देती है और हमारे मन को सुकून देती है।
2: बिल्कुल, और हमारा शब्द भंडार भी बढ़ा देती है। और जितना हम किताबों से जान सकते हैं ना, उतना मोबाइल में देख के, या फिर बाहर इतना ज्यादा इतनी गर्मी है, इतनी परेशानी है, तो वहाँ बाहर जाके अपनी तबीयत खराब करने से बेहतर है हम घर में रह के थोड़ा अच्छा साहित्य पढ़ें, या जो भी हमारा इंटरेस्ट है हम उसको पढ़ें, जिससे कि हमें अच्छा लगेगा।
1: खासतौर से गर्मी को कोसने से अच्छा है कि हम पढ़े, कहानी पढ़ सकते हैं, उपन्यास पढ़ सकते हैं, आत्मकथाएं पढ़े, जीवनी पढ़े,
2: पढ़ के थोड़ा बहुत उसको लिखने की कोशिश करें कि आपने क्या सीखा, या क्या आपको उसमें अच्छा लगा, उस चीज को आप थोड़ा सा नोट्स बनाना शुरू करें, देखिए आपकी खुद की एक किताब तैयार हो जाएगी।
1: बिल्कुल सही कहा, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तो हमें कितने मिल गए हैं आजकल, बस उसका उपयोग करना हमें आना चाहिए और हमें सीखना भी चाहिए। तो चलिए बताइए आज क्या क्या कार्यक्रम आप लेकर आई हैं।
2: आज हम लेके आए हैं मानसिक मजबूती आपको किस तरीके से अजय बना देती है। अजय मतलब ये, आप अगर देखिए मन के जीते जीत होती है, अगर आपको आपका मन आपका मजबूत है ना, आप उससे नहीं डिग्र सकते अगर, तो फिर आपको कोई भी हरा नहीं सकता।
1: सबसे बड़ी बात है हमारा मन कितना सशक्त है, अगर मन के हारे हारे, अगर मन हार गया तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, तो हम इसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे, आप भी बताइए किस तरीके से आप अपने
1: मन को सशक्त बनाते हैं, हमारे श्रोता बता सकते हैं हमारी
2: किस तरह से, अगर कोई आपको कहीं पे ना कहने का मौका आता है तो आप उसको पूरी अपने शक्ति से ना कह पाते हैं या फिर हिचकिचा जाते हैं।
1: और कई बार क्या होता है कि घर परिवार में भी जो है बहुत सारी बातें होती है पति पत्नी के बीच में, ऐसे में कई बार स्त्रियां जो है मन कच्चा कर लेती हैं कि अरे भाई आज तो पतिदेव ने ऐसे डांट दिया, आज तो सास ने ऐसे

0: कह दिया, ससुर ने ऐसे कह दिया, तो आप अपने मन को कितना मजबूत बनाती हैं और डटकर इन चीजों का, इन समस्याओं का मुकाबला कैसे करती हैं, बताइए अपने जीवन से जुड़े कुछ पहलू।
1: का मजबूत है ना, आप उससे नहीं डिग्र सकते अगर, तो फिर आपको कोई भी हरा नहीं सकता।
0: सबसे बड़ी बात है हमारा मन कितना सशक्त है। अगर मन के हारे हारे, अगर मन हार गया तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो हम इसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। आप भी बताइए किस तरीके से आप अपने
0: मन को सशक्त बनाते हैं, हमारे श्रोता बता सकते हैं हमारी
1: किस तरह से। अगर कोई आपको कहीं पे ना कहने का मौका आता है तो आप उसको पूरी अपने शक्ति से ना कह पाते हैं या फिर हिचकिचा जाते हैं।
0: और कई बार क्या होता है आपके घर परिवार में भी जो है बहुत सारी बातें होती है पति पत्नी के बीच में, ऐसे में कई बार स्त्रियां जो है मन कच्चा कर लेती हैं कि अरे भाई आज तो पतिदेव ने ऐसे डांट दिया, आज तो सास ने ऐसे कह दिया, ससुर ने ऐसे कह दिया। तो आप अपने मन को कितना मजबूत बनाती हैं और डटकर इन चीजों का, इन समस्याओं का मुकाबला कैसे करती हैं, बताइए अपने जीवन से जुड़े कुछ पहलू।
1: बिल्कुल, और आज हम मुहावरों के दिन में बात करेंगे, दूर के ढोल सुहावने।
0: ये तो होता है,
1: अक्सर होता है ना हम लोगों की, दूसरे को सामने देख के हम कहते हैं कि अरे ये कितना अच्छा, ये तो कितनी अच्छी जॉब कर रहा है या कितना अच्छा काम कर रहा है।
0: हाँ,
1: लेकिन हम उसके पीछे का संघर्ष नहीं जान पाते कि किस तरह से वो वहां तक पहुंचा।
0: बिल्कुल, उसकी जिंदगी में क्या क्या घटा, कैसे घटा, उसने कैसे उसका मुकाबला किया, इन सब बातों को नहीं जानते हम। केवल जो सामने हमें दिख रहा है वही हमें सच्चा लगता है।
1: जी, तो बिल्कुल उसके बारे में बात करेंगे।
0: ये भी बताएं कि इनकी जिंदगी में दूर के ढोल
1: किस तरीके से चीज को समझते हैं, अपना नजरिया बताएं। और साथ ही हम बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत, आज हम मेघा मलिक जी के बारे में बात करेंगे।
0: वाह क्या बात है,
1: जो है डिजाइनर पीपल की संस्थापक, और हल्की फुल्की बातें भी कुछ करेंगे ना।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, हल्की फुल्की बातें तो जिंदगी में बहुत जरूरी है,
1: जबकि विषय जो है ना वो हल्की फुल्का नहीं है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस विषय है।
0: आपने कंट्रास्ट कर दिया है, बातें हल्की फुल्की
1: विषय अक्सर
0: रखा है
1: जाती है,
0: घरेलू बजट बापरे
1: जिसपे अक्सर तकरार हो जाती है पूरे घर में, मतलब एक राय कोई नहीं हो पाता इस विषय।
0: बिल्कुल सही कहा, इसके लिए जो पता है जो गृहिणियां है ना वो सबसे ज्यादा परेशान हो जाती हैं।
1: बिल्कुल, और आज एक महत्वपूर्ण दिवस भी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस, तो उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे।
0: ठीक है, तो हमारे श्रोता भी लिखे, और अभी हम सुन लेते हैं गीत।
1: गीत जी।

0: हाँ, तो आरती बहुत ही सुंदर कव्वाली अभी हमने हमारी सखियों को सुनाई है। उम्मीद करते हैं इस दोपहरी में उन्हें अच्छा भी लगा होगा।
1: बिल्कुल, थोड़ा सा एक ताजगी आ गई होगी।
0: थोड़ा सा एक्टिव हो गई होंगी ये सुनकर, है ना।
1: बिल्कुल
0: तो आज हम बहुत सारे दिवस भी मना रहे हैं, जिसमें एक है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस।
1: जी। तो इस अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस को हम क्यों जब मनाते हैं इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं इसका अर्थ क्या होता है।
0: हाँ हाँ
1: तो
0: बिल्कुल।
1: जब कोई व्यक्ति अपने घर परिवार से दूर रहकर काम करता है और अपनी कमाई का एक हिस्सा परिवार को बाहर से भेजता है, तो उसे प्रेक्षण या रेमिटेंस कहा जाता है।
0: हाँ बिल्कुल। ये परिवार को भेजा गया धन केवल आर्थिक सहायता नहीं होता आरती, बल्कि उसमें प्रेम, जिम्मेदारी और परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी शामिल होती है। और हर वर्ष आज ही के दिन मनाए जाने वाले इस दिवस की शुरुआत इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट यानी एफएडी ने IFAD ने की थी।
1: जी, और इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई। इसका उद्देश्य दुनिया भर में काम करने वाले जो प्रवासी श्रमिक हैं वो अपने परिवार को उनके द्वारा भेजे जाने वाले धन के महत्व को पहचान देना और उनके योगदान को सम्मानित करना था।
0: हाँ, बाद में यूनाइटेड नेशंस ने भी इस पहल को समर्थन

0: समर्थन दिया और जिससे इसे वैश्विक स्तर पर व्यापक पहचान मिली। ये दिन उन करोड़ों लोगों को सम्मान देने के लिए चुना गया है जो घर से दूर रहकर अपने परिवारों की आर्थिक सुरक्षा और बेहतर भविष्य के लिए मेहनत करते हैं।
1: बिल्कुल, और जैसा कि हम जानते ही हैं कि हर दिवस किसी न किसी बड़े उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही मनाया जाता है, और इस दिवस का उद्देश्य है प्रवासी श्रमिकों के योगदान को सम्मान देना, परिवारों और समुदायों के विकास में रेमिटेंस की भूमिका को उजागर करना,
0: हाँ, और सुरक्षित धन प्रेषण सेवाओं को बढ़ावा देना, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास लक्ष्यों में रेमिटेंस के योगदान को रेखांकित करना भी इसका खास उद्देश्य है। और आज दुनिया भर में करोड़ों प्रवासी श्रमिक नियमित रूप से अपने परिवारों को धन भेजते हैं।
1: जी, और ये धन केवल परिवारों की दैनिक जरूरतों को ही पूरा नहीं करता बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और छोटे व्यवसायों में निवेश का भी आधार बनता है। इसीलिए इस प्रेषण को या रेमिटेंस को कई देशों की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण स्तंभ भी माना जाता है।
0: बिल्कुल, और अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस हमें ये भी याद दिलाता है आरती कि भेजी गई हर राशि के साथ जुड़ी होती है उम्मीदें, है ना, रिश्ते और बेहतर भविष्य की कामनाएं। देखो, जब हमें कोई धन भेजता है, पैसा भेजता है हमारे जीविकोपार्जन के लिए, हमारी जरूरतों के लिए, तो सोचिए हमारी फीलिंग्स कैसी होती हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमारे परिवार में भी जब हम स्टूडेंट लाइफ में बाहर पढ़ने गए और हमारे माता पिता ने हमारे लिए पैसे भेजे तो कितनी खुशी
1: होती है कि ना कि अब चलो ये जरूरतें हमारी जो चीज़ें हैं ये
0: पूरी कर लेंगे, है ना।
1: बिल्कुल,
0: तो कितने उन लोगों को उसकी उम्मीदें जुड़ी होती हैं, और अपने घर परिवार से दूर रहकर अपनों के सपनों को पूरा करने वाले हर प्रवासी श्रमिक को इतनी मेहनत करके अपने परिवार का जो पोषण कर रहा है उसके प्रति भी हमें सैल्यूट करना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं ऐसे लोगों को।
0: बिल्कुल,
1: तो चलते चल के एक सुनते हैं गीत ना।

0: तो आरती महीना तो जून का है
1: जी हाँ, पसीना भी बहुत आ रहा है
0: बिल्कुल सही कहा, और इसी जून के महीने में हमें ध्यान रखना है कि हमें किस तरह से अपने आप को बचाए रखना है,
1: इस पसीने से भी बचा के रखना है अपने को।
0: तो हमारे श्रोता लिखते हैं, कुछ लोगों ने लिखा भी है, बताओ क्या क्या लिखा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बताइए।
0: ये लिखते हैं कि ये दिन उन मजदूरों के लिए है जो अपने परिवार से दूर रहकर कमाई के लिए बाहर जाते हैं। ये दिन उनके त्याग के प्रति सोचने पर हमें मजबूर करता है कि किस तरह से अपने परिवार से दूर रहकर दुखी हैं, लेकिन फिर भी कमाने के लिए उन्हें अपने परिवार से दूर जाना पड़ रहा है। और ये दिन उनका सम्मान देने, उनके त्याग के बारे में थोड़ा सा सोचने पर ध्यान देने के लिए मनाया जाता है।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतिवर्ष ये दिन इस दिन मनाया जाता है 16 जून को, और ये दिन विदेशों में काम कर रहे प्रवासियों द्वारा अपने मूल देश में रहने वाले परिवारों को भेजे आने वाली धनराशि यानी कि रेमिटेंस और उनके वित्तीय योगदान को सम्मानिता देने और सम्मानित करने को लेकर समर्पित है। और ये दिन 20 करोड़ से अधिक प्रवासी कामगारों के त्याग और प्रयास को सराहता है जो दूर रहकर भी अपने लगभग 80 करोड़ परिवार के सदस्यों की आजीविका और भविष्य का निर्माण करते हैं। और इसका उद्देश्य जो है वो भेजने की जो रेमिटेंस भेजने की लागत को कम करना और प्रवासियों को बैंकिंग तथा सुरक्षित औपचारिक माध्यमों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना है।
0: बिल्कुल। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि प्रवासियों द्वारा अपने परिवार और मूल देशों के सतत विकास में किए गए महत्वपूर्ण वित्तीय योगदान को मान्यता देना आज के दिन का उद्देश्य है। और प्रवासियों द्वारा भेजा गया धन लाखों परिवारों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास और आजीविका का एक मुख्य आधार है। और ये दिवस पहली बार 2015 में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष द्वारा घोषित किया गया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत अच्छे विचार हमारे श्रोताओं ने साझा किए हैं हमारे साथ। और आरती, और देखा आपने कि जब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है अपने परिवारों के लिए मेहनत करते हैं, है ना, मशक्कत करते हैं और उनके लिए धन जुटाते हैं, दूर रहकर भी अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, सोचिए कितना मानसिक रूप से मजबूत हो जाते होंगे वो लोग, और कितना शारीरिक रूप से अपने आप को मजबूत बना के रखते होंगे, है ना।
1: और बहुत जरूरी भी है, अगर हम दिमाग से अपने दिमाग का संतुलन बना के चलेंगे और छोटी छोटी जो परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं उनसे घबराने की बजाय उनका सामना करेंगे तो बिल्कुल भी, क्योंकि ना बहुत सी चीजें होती हैं जो हमारे सामने आती हैं, क्योंकि भाई जीवन है, उसमें कठिनाइयां तो आपके सामने आएंगी। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हमें अलग चलना है या हमारा जीवन बिल्कुल सुखी सुखी क्यों नहीं है, है ना, या उसकी तरह क्यों नहीं, जो सामने वाला जिसको देख के आप कह रहे हैं ना, उसके जीवन में भी कठिनाइयां होंगी, आपको जरूरी नहीं है आपको पता हो उस चीज के बारे में,
0: आपने उसकी डार्क साइड देखी नहीं ना, आपने खाली उसका सामने जो जिस तरह से हंसना बोलना और हमें लगता है कितना सुखी जीवन है, कितना मस्त बंदा है ये, लेकिन उसके पीछे का जो संघर्ष है, पीछे के जो दुख है, पीछे की जो कहानियां है, वो हम नहीं जान पाते हैं।
1: बिल्कुल। इसी को लेकर छोटी सी कहानी आपको बताऊंगी कि देखिए चील जो होती है ना, कितना बड़ा पक्षी होता है ना, और उस तक पहुंचने की कोई सोचता भी नहीं कोई पक्षी, क्योंकि सब डरते हैं उससे, लेकिन एक पक्षी है जो उसको परेशान करता है, वो है कौवा। वो जर उसको चोच मार कर परेशान करने की कोशिशें करता रहता है, लेकिन वो क्या करता है पता है, वो उस ध्यान नहीं देता उसकी तरफ, क्योंकि वो अपनी एनर्जी है जो है ना वो उस तक उस पर वेस्ट नहीं, उस पर बिल्कुल भी जाया नहीं करता, वो अपनी उड़ान को ऊपर ऊंचा कर देता है, वो इतना ऊंचा उठ जाता है
0: कि
1: वो कौवा वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। तो वो मतलब उससे जूझा नहीं, उससे उसने कोई बात नहीं करी, उसके ऊपर अपनी
0: वो डिस्टर्ब नहीं हुआ, अपना संतुलन नहीं बिगाड़ा,
1: नहीं आता वो किसी को देख के, बस उसने अपनी उड़ान को इतना ऊंचा कर लिया कि वो उस तक पहुंच ही नहीं पाया।
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि आपको जो है अगर आप

0: बच्चा काम कर रहे हैं, जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, तो तंग करने वाले, परेशान करने वाले है ना, बहुत लोग मिलेंगे। लेकिन आपको अपना लक्ष्य बनाए रखना चाहिए कि नहीं, आपकी उड़ान चील जैसी होनी चाहिए, कि आपको इतना ऊंचा उड़ना है कि कौवा खुद ब खुद अपनी उड़ान हटा ले, है ना।
1: बिल्कुल, वो हार मान के अपने आप ही हट जाए।
0: हाँ, ये होना चाहिए और होता भी है। कुछ लोग जो महान बने हैं उन्होंने ऐसे ही तो महानता अर्जित नहीं की ना आरती। तो जीवन में हर नई चुनौतियों को, हर नए संघर्ष को और हर नई परिस्थितियों को जो है वो हमें वो हमारा इंतजार कर रही होती हैं। और कुछ लोग छोटी सी कठिनाई से, छोटी सी बातों से, छोटे से दुख से टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग बड़ी से बड़ी समस्या का सामना भी मुस्कुराकर कर लेते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है केवल परिस्थितियों का नहीं है बल्कि मानसिक मजबूती का होता है।
1: बिल्कुल, और मानसिक मजबूती व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलित रहने, सही निर्णय लेने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये किसी जादू की, ये मतलब किसी जादू की तरह नहीं आती कि एकदम से किसी ने आपको मंत्र पढ़ दिया और आपने एकदम
0: से आपके पास जादू की छड़ी आई, आपने गोल गोल घुमाया, खुल जा सिम और ताला खुल गया।
1: बिल्कुल, ये ऐसा कुछ नहीं होता ऐसा, बल्कि अनुभवों, धैर्य और सकारात्मक सोच से विकसित होती है। प्रतिस्पर्धा, तनाव, अपेक्षाएं और तेज रफ्तार जीवन कई बार मन को विचलित कर सकते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, और मानसिक मजबूती का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति कभी दुखी ना हो या उसकी आंखों में आंसू नहीं आते। इसका जो मतलब है वो ये, दुख, निराशा और कठिनाइयों के बीच भी हम खुद को संभाल कर आगे बढ़ते रहें। गिरना जो है जीवन का हिस्सा है आरती, लेकिन हर बार उठकर खड़ा होना मानसिक शक्ति की पहचान होती है।
1: बिल्कुल, और अगर हम धैर्य, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को अपना साथी बना लें तो कोई भी कठिनाई हमें लंबे समय तक रोक नहीं सकती। क्योंकि अजय वो नहीं होता जो कभी हारता नहीं, बल्कि वो होता है जो हर हार के बाद फिर से खड़ा हो जाता है। जी, और एक बात का ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए कि जिस भी चीज से हमें सबसे ज्यादा डर लगता है वो ही हमारे ऊपर हावी होकर हमें अंदर से कमजोर बनाती है। क्योंकि वो हमारी कमजोरी का हमारा वीक पॉइंट बन जाती है ना, कि और वो अगर किसी को पता भी चल जाए ना
0: तो उसका फायदा उठाया जाता है। उसका फायदा उठाया जाता है, इसलिए जो कहते हैं ना कि अपनी कमजोरी मत बताइए किसी को, इसीलिए कहते हैं।
1: तो इतने कमजोर बनिए ही मत, किसी भी कमजोरी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए।
0: बिल्कुल,
1: उसका सामना करिए डट के, तो वो कमजोरी आपकी कमजोरी रहेगी ही नहीं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए आरती, कि कोई कितना भी उकसाए, कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, हमें शांत रहना चाहिए। उकसाने वाला हमारी बुरी प्रतिक्रिया चाहता है और हमें वो बिल्कुल नहीं देनी है, शांत रहना है। और अगर किसी को किसी भी बात के बारे में बताना है तो उसे बहुत विस्तार मत दीजिए, बल्कि जो सच है उतना बताइए। क्योंकि ज्यादा बोलना भी जो है फिर उसमें झूठ मिलाना पड़ता है, झूठ की मिलावट सी लगती है। तो आप दो टुक बात करें, जो सच है वो कह दें, फैक्ट्स जो है, और नहीं तो चुप रहें।
1: बिल्कुल, बहुत ज्यादा आप विस्तार से उसे बताने की कोशिश
0: अपनी सफाई देना,
1: उसको वही सफाई अपनी। और साथ ही अगर हम किसी बात से सहमत नहीं है तो सीधे ना कहना जरूरी है। उसके लिए बहुत ज्यादा तर्क देने की भी जरूरत नहीं है कि इसलिए उसलिए, है ना। तो सिर्फ ना कहना काफी है, ये हमारे अंदर की मजबूती को दिखाता है। अगर कभी कोई बहस हो जाए या किसी बड़ी बात पर प्रतिक्रिया देनी है तो आपको तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए।
0: होता क्या है, हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं, वहीं पर हम गलत हो जाते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि तुरंत प्रतिक्रिया हमारे गुस्से की वजह से आ सकती है, या हमारे अंदर जो इमोशंस हो रहे हैं, जो भावनाएं आ रही है ना, उसकी वजह से हो सकती है। हम जब ठंडे दिमाग से प्रतिक्रिया देते हैं तो वो बिल्कुल अलग होती है,
0: शांत हो जाते हैं। कई बार तो प्रतिक्रिया देने का मन भी नहीं करता। जब आप शांत रहते हैं, अपने आप को थोड़ा टाइम देते हैं ना आरती, तो लगता है अरे जाने दो ना, क्या पढ़ा इन बातों में। और आपने तुरंत प्रतिक्रिया दी नहीं तो चार बातें गलत आपके मुंह से निकली नहीं, क्योंकि उस वक्त आपके भीतर बहुत सारी भावनाएं जो है घूम रही होती हैं और आपको समझ नहीं आता कि आप क्या कहने जा रहे हैं। तो थोड़ा रुक कर सहित होकर बोलना जो है वो आपकी आंतरिक मजबूती को दिखाता है। और सबसे बड़ी बात है कि कभी कोई मुश्किल परिस्थिति में हो, अपने को बचाव की स्थिति में लाकर घबराने की बजाय हमें चाहिए कि हम बिना घबराए सामने वाले से प्रश्न करें और खुद को मजबूती के साथ प्रस्तुत भी करें।
1: बिल्कुल, क्योंकि जहां हम थोड़ा सा भी पीछे हटने लगते हैं ना, वो एक हिसाब होता है ना कि आप आक्रमण की मुद्रा में रहे हैं, ना कि डिफेंस में। जहां हम डिफेंस में अपने को बचाव की स्थिति में ले आते हैं ना, वहीं हम पे लोग हावी होने लगते हैं। तो आप ऐसा स्थिति अपने आपको कभी अपने लिए मत लेकर आइए। तो आप प्रश्न पूछिए, अगर आप हम पे ऐसा कुछ कह रहे हैं, हमारे लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं, ये क्यों, कैसे, ये जरूर आप पूछिए।
0: बिल्कुल, सवाल पूछने, प्रश्न खड़े करने बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: और उसके बगैर अगर आपने अपने आप को अपना कदम पीछे खींच लिया तो लोग आपको कमजोर समझकर बस वहीं पर आप पर वार भी कर देते हैं।
1: बिल्कुल, फिर हम अगर सही भी होंगे ना तो भी कोई नहीं,
0: गलत माने जाते हैं। इसलिए किसी की बात पर आंख बंद करके एक तो विश्वास नहीं कीजिए, और अपनी बात को मतलब ये सोचिए कि मैं क्या कह रहा हूँ और सामने वाला क्या सुन रहा है। हमें धोखेबाजी

0: से भी बचाना है और कभी भी अपनी भावनाएं हर किसी के साथ साझा नहीं करनी, क्योंकि हर बार हर कोई हमारी भावनाओं को आदर से नहीं देखता। होता क्या, हम इमोशनल होते हैं और हर एक को अपनी बात कह देते हैं।
1: बिल्कुल, और मतलब किसी के ऊपर भी विश्वास मत करिए कि हाँ हमने ये कह दिया कि नहीं नहीं हम आपकी बात को नहीं करेंगे। अगर उसने कभी भी किसी इमोशन में आके कह दिया तो फिर आपकी परेशानी आपके लिए खड़ी,
0: वो सारी परेशानी खड़ी हो जाती है, फिर आप अपनी सफाई देने लगते हैं। लेकिन इस वक्त हमें सफाई ये देनी है आरती,
1: अंतराल का समय हो गया है,
0: एक छोटा सा अंतराल लेते हैं। जी।

0: तो अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बात क्या चल रही थी?
1: बात हम मानसिक मजबूती की कर रहे हैं, तो और उसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो इस हर किसी के सामने अपनी भावनाओं की मुट्ठी को मत खोलिए। और हाँ, जब कोई बहुत तेज आवाज में और गुस्से से बात कर रहा हो तो खुद को शांत और संयत स्वर से बात करने पर वो धीरे धीरे हमारी आवाज के स्तर पर आने लगेगा। अपनी किसी भी सही बात के लिए 10 लोगों की हामी का इंतजार मत करिए।
0: बिल्कुल सही कहा,
1: क्योंकि ना देखिए, जब हम बहुत तेज आवाज में कोई हमसे बात कर रहा हो ना, तो जब हम अपने बिल्कुल संयत स्वर से धीरे और जैसे हम बोलते हैं उस हिसाब से बात कर रहे होते हैं ना, तो उसको भी लगता है ना कि अरे सब मुझे क्यों देख रहे होंगे कि मैं ही इतनी तेज आवाज में चिल्ला के बात कर रहा हूँ और सामने वाला तो बिल्कुल आवाज में धीरे धीरे से बात कर रहा है। तो धीरे धीरे उसको भी एहसास होगा, वो आपके लेवल पे आना शुरू होगा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सामने वाले को अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है कि वो बिना बात के चीख रहा है या चिल्ला रहा है ना
1: जी।
0: तो और एक बात और है आरती, जब हम सॉरी कहते हैं कई बार देर से आए, तो उसकी जगह हम बहुत कुछ कह सकते हैं, यानी सकारात्मक रूप से हम उसे धन्यवाद भी दे सकते हैं,
1: आपने इंतजार किया,
0: आपने हमारा इंतजार किया,
1: है ना। थोड़ा सा ये हो जाएगा ना, एक सकारात्मक पहलू आ जाएगा इस चीज का सामने,
0: है ना।
1: और जैसे कि हमने कहा कि हामी मत भरिए, मतलब अगर आप सही हैं किसी चीज को लेके, आप सही हैं तो आप उसको अप्रूव कराने के लिए
0: 10 लोगों के पास मत जाइए,
1: है ना, कि देखो देखो ये चीज सही है ना, देखो देखो ये चीज सही है ना। कहते ना कि चार लोग क्या कहेंगे, तो आप उन चारों को भूल जाइए।
0: और ऐसा होता है, लोग जो है 10 लोगों के पास जाकर पूछते हैं, है ना,
1: हम सही हैं, हम सही हैं। अगर आप सही हैं तो आप
0: सही हैं,
1: बिल्कुल अपने दिमाग से, अपने अपने आपसे निर्णय लीजिए।
0: आपका अपना निर्णय कोई भी हो सकता है, उसमें आपको डरना किस बात का। अगर आपका निर्णय किसी का नुकसान नहीं कर रहा है तो आपको डर नहीं होना चाहिए, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है आरती, हम लोग भावुक लोग जो होते हैं ना, मैं भी वैसी ही हूँ कि मैं लोगों के साथ भावनाओं में बहती हूँ। मतलब किसी ने प्यार से बोला तो उसके साथ अरे कितनी अच्छी है ना,
1: जी,
0: कितना अच्छा है। और लोगों को पढ़ना सीखना चाहिए, जो कि हम नहीं सीख पाते हैं, या भावुकता, जैसा मैंने कहा हम भावुकता में बह जाते हैं। तो लोगों को पढ़ना सीखें, उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है जब हम उन्हें ना बोलते हैं।
1: बारीकी से ध्यान दीजिए, जब आप उनको ना बोलते हैं
0: तब कैसे होते हैं,
1: तब उनके चेहरे पे कैसे भाव आते हैं,
0: ये आपको, हाँ ये आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने जब तक हाँ भरी तब तक आप बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे ही आपकी किसी भी बात पर ना हो गई आप बुरे हो जाते हैं, है ना, आपके बारे में 10 सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। तो ये जानना आपको बहुत जरूरी है। तो अपने व्यक्तित्व को अजय बनाइए, अपने व्यक्तित्व को अंदर से मजबूत बनाइए।
1: और इसके जरूरी हम दूसरों को बहुत अच्छी तरीके से सुने, उनको ऑब्जर्व करना सीखे, उनको ध्यान से उनको देखें कि वो कैसे प्रतिक्रिया देते हैं या हमारी किस बात पे कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखें। और जब भी हमें क्रोध आए या गुस्सा आए तो हमें अपने ऊपर थोड़ा नियंत्रण करना चाहिए।
0: हाँ।
1: क्योंकि क्रोध हो या गुस्से में हम बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए।
0: बिल्कुल सही।
1: और बात में हमें उसका पछतावा भी होता है।
0: हाँ।
1: लेकिन शब्द ऐसे हैं ना, जब निकल जाते

0: हैं तो वापस नहीं आ सकते।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो इस बात का हमें ध्यान रखे बोलना
1: समझ
0: चाहिए।
1: के बोले, तोल मोल के बोले। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि हर बार हम गणित नहीं संबंधों में लगा पाते और अपना समझ कर कई बार हम बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन ऐसा फिर भी न कहें जो बाद में आपको पछतावा दे।
0: बिल्कुल।
1: और हम सब की आदत होती है कि अगर कोई हमारी तारीफ कर दे, जैसा कि तुम मेरी अक्सर तारीफ करती हो, आज नहीं की है तुमने तो मैं तुमसे नाराज हो गई हूँ। ऐसे लोग हमसे नाराज हो जाते हैं जब हम उनकी तारीफ नहीं करते हैं, या कर देते हैं तो हमारी उसमें पसंद वाली लिस्ट में शामिल हो जाते हैं, तो इससे हमारी कमजोरी जो है लोगों के हाथों में आ जाती है।
0: क्योंकि लगता है ना उनको कि जैसे कि मैं अभी आपकी तारीफ करूं और उस किसी ऐसी बात की तारीफ करूं जो आप नहीं करती हैं, तो आपको अंदर से तो लगेगा कि हाँ ये तो मैं करती नहीं हूँ फिर भी मेरी तारीफ हो रही है, तो लेकिन आपको लगेगा अच्छा लगेगा, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए।
1: क्योंकि
0: ये चाटुकारिता में आता है,
1: ये चाटुकारिता में आता है। और फिर पता है क्या होता है, हम हर दिन उस तारीफ की उम्मीद करने लगते हैं सामने वाले से, और जिस दिन उसने नहीं की वो इंसान हमारे लिए बुरा हो जाता है। इसलिए चाटुकारिता की श्रेणी में आपको नहीं आना चाहिए।
0: और अपनी खूबी अपनी खामी हर इंसान को पता होती है।
1: बिल्कुल होती है। और मजबूत मन ही वो जादू है जहाँ व्यक्ति हर परिस्थिति में चमकने की क्षमता बनाता है, अपने आप को चमका लेता है कि किस तरह से अपने आप को मजबूत बनाना है। इसलिए अपनी खूबियां और अपनी खामियां खुद टटोलनी होगी।
0: बिल्कुल। और इसके लिए आप दूसरों पर निर्भर ना रहें कि वो आपकी तारीफ करेंगे।
1: जैसा मैंने आज उम्मीद की थी कि आरती आते ही मेरी तारीफ करने वाली है, पर
0: मैं तारीफ करती हूँ लेकिन ये चीज उसमें नहीं करती हूँ कि भाई कि आपको चाटुकारिता लगी इस चीज को। मैं एकदम सही तरीके से आपकी जिस चीज की भी तारीफ करती हूँ वो करती हूँ।
1: तो मैं आगे उम्मीद रखती हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद रखिए अच्छे से तारीफ करें।
1: तो चलिए, आप श्रोता उम्मीद कर रहे हैं कि हम एक गीत सुनवा दें।
0: जी,
2: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं देवदर्शन धूप और अगरबत्ती।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देवदर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन और हवन सामग्री।

0: हाँ
1: तो अब हम बात करते हैं सखी विशेष के अंतर्गत मेघा मलिक की।
0: अरे वाह, बिल्कुल
1: जी। तो रंगों की दुनिया में सपनों को आकार देने वाली एक सृजनशील व्यक्तित्व का नाम है मेघा मलिक। उन्होंने केवल डिजाइन ही नहीं बनाए बल्कि अपने विचारों को पहचान भी दी, उत्पादों को एक व्यक्तित्व दिया और जो व्यवसाय दिखा रहे थे उनको यादगार ब्रांड्स में बदलने का जादुई काम उन्होंने किया। तो मेघा मलिक भारतीय ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डिजाइन उद्योग के एक प्रतिष्ठित उद्यमी हैं।
0: हाँ बिल्कुल, और उन्होंने 2003 में डिजाइनर पीपल की स्थापना की। विदेशों में अपनी पहचान बना लेने के बाद भारत में डिजाइनर पीपल ने 2012 में अपना आधार स्थापित किया, जो आज भारत की प्रमुख ब्रांडिंग, पैकेजिंग, डिजाइन और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियों में भी गिनी जाती है। और उनकी शिक्षा की बात करें आरती, तो उन्होंने कला और व्यवसाय दोनों क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त की है
1: जी। और उनके पास मार्केटिंग स्ट्रेटजी में MBA और फाइन आर्ट्स की डिग्री है। कला के प्रति उनकी गहरी रुचि और रचनात्मक सोच ने उन्हें डिजाइन एवं ब्रांडिंग की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मेघा की कंपनी की बात करें तो ये एक पेशेवर क्रिएटिव एजेंसी है जो ब्रांडिंग, पैकेजिंग और प्रिंट और डिजिटल मार्केटिंग के लिए विजुअल कम्युनिकेशन में विशेषज्ञता रखती है।
0: बिल्कुल, और पैकेज डिजाइनिंग, वेब डिजाइन और विकास, ब्रांड विकास जिसमें शामिल है लोगो डिजाइन, स्टेशनरी डिजाइन, कॉरपोरेट डिजाइन और इसके साथ कैटलॉग, बिजनेस कार्ड डिजाइन, साइनेज और वे फाइंडिंग डिजाइन, कस्टम प्रिंटिंग, अन्य सेवाओं में जैसे वाहन रैप डिजाइन, प्रदर्शनी स्टॉल डिजाइन, सोशल मीडिया पेज डिजाइन, कितनी सारी चीजें शामिल है
1: जी। और डिजिटल मार्केटिंग जिसमें शामिल है सामाजिक माध्यम बाजारीकरण, सर्च इंजन अनुकूलन, PPC सेवाएं, इसके अलावा ब्रांड परामर्श, पैकेजिंग परामर्श, उत्पाद डिजाइन परामर्श। मेघा मानती है ब्रांडिंग और मार्केटिंग एक ऐसी सेवा है जो किसी भी व्यवसाय के लिए अधिकतम ग्राहक लाती है। किसी भी उत्पाद को खरीदने के 70% से अधिक निर्णय स्टोर में ही 5-7 सेकंड के भीतर ले लिए जाते हैं कि कितना सुंदर दिख रहा है, वो बस इसी बेस पे उसे ले लिया जाता है।
0: क्या बात है।
1: और इस प्रकार उत्पाद की दिखावट खरीद निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये बात अच्छी तरह समझते हुए कि किसी भी ब्रांड को प्रतिस्पर्धा के बीच अलग पहचान दिलाने के लिए सही ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग बेहद जरूरी है। ये वो चीजें हैं जो उत्पाद को ग्राहकों का ध्यान और विश्वास आकर्षित करने में मदद करती हैं।
0: और इसीलिए चाहे छोटा व्यवसाय हो या बड़ा, अपने उत्पादों और सेवाओं की उपयुक्त ब्रांडिंग और मार्केटिंग की आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं कर सकता। भारत में अगर ब्रांडिंग और पैकेजिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मेघा मलिक ने जो है डिजाइनर पीपल की शुरुआत की, और उनका मानना है कि किसी भी उत्पाद की सफलता केवल उसकी गुणवत्ता पर नहीं बल्कि उसकी पहचान, प्रस्तुति और उपभोक्ताओं से जुड़ाव पर भी निर्भर करती है।
1: बिल्कुल, और उनकी इसी सोच ने उन्हें एक ऐसी संस्था बनाने के लिए प्रेरित किया जो छोटे और मध्यम उद्योगों को मजबूत ब्रांड पहचान दिला सके। क्रिएटिव डायरेक्टर और ब्रांड कंसल्टेंट के रूप में मेघा मलिक ने हजारों व्यवसायों को नई पहचान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी एजेंसी ने खाद्य पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधन, उपभोक्ता उत्पादों और अन्य कई क्षेत्रों के ब्रांडों के लिए पैकेजिंग, लोगो, विज्ञापन और डिजिटल रणनीति विकसित की है।
0: हाँ बिल्कुल, और मेघा मलिक का जो नेतृत्व है नवाचार, शोध और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है। वो मानती हैं कि प्रभावी ब्रांडिंग केवल आकर्षक डिजाइन नहीं बल्कि उपभोक्ताओं की भावनाओं और आवश्यकताओं को समझने की कला है, और उनकी कार्यशैली में रचनात्मकता और व्यावसायिक रणनीति का संतुलित समन्वय भी हमें दिखाई देता है।
1: बिल्कुल, उनकी संस्था ने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बहुत सारे ब्रांड्स के साथ में काम किया है, और मेघा मलिक को भारत की सफल महिला उद्यमियों में भी स्थान मिला है। उन्होंने ब्रांडिंग और पैकेजिंग के क्षेत्र में नए मानक साबित करते हुए अनेक व्यवसायों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में योगदान दिया है।
0: और उनकी सफलता इस बात का प्रमाण है आरती, कि जब कला और प्रबंधन को खूबसूरती से मिलाया जाता है ना, तब वो रचनात्मकता व्यापार की नई ऊंचाइयों को हासिल करती है। तो मेघा मलिक आज उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो अपने जुनून को उद्यमिता में बदलकर समाज और उद्योग जगत में एक नई पहचान बनाना चाहती हैं।
1: बिल्कुल,
0: है ना,
1: और बहुत ही अच्छी बात है ये। और आज महिलाएं जो कितनी तेजी से अपना नया पहचान, अपनी पहचान बना रही हैं, अपने आप को स्थापित कर रही हैं।
0: बिल्कुल, तभी कहा जाता है देखिए कि दूर के ढोल सुहावने, मतलब अभी जो हम बैठे बैठे यहाँ से कह सकते हैं कि

0: कितने मजे हैं ना मेघा मलिक के,
1: बिल्कुल
0: लेकिन उस शानदार जीवन के लिए कितना संघर्ष किया है इस बात को अभी अभी आपने जाना। तो जो अगला विषय हमारा रहेगा वो यही रहेगा कि मुहावरों की जो दुनिया है, दूर के ढोल सुहावने, उस पर हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं आरती, उस पर
1: बहुत
0: बात करें हम।
1: बिल्कुल बिल्कुल बहुत कुछ बात कर रहे हैं लिख रहे हैं, लेकिन थोड़े से एक छोटा सा गीत क्यों ना सुने।
0: अच्छा, आपको गीत की तलब हो ही गई है
1: बिल्कुल
0: चाय की तरह।
1: जी,
2: जरा नजरों से कहे।

0: तो दूर के ढोल सुहावने. कई बार ऐसा होता है ना कि वो कोई चीज हम खरीदते हैं ना, वो ऐसी देख के देखने में तो इतनी सुंदर लग रही होती है उसमें, जब हम शॉपिंग ऐप पे जाते हैं और जब वो आती है पास, तो एकदम से लगता है कि ये क्या चीज हमारे पास आ गई.
1: हाँ बिल्कुल सही कहा. कई बार हम महिलाएं खासतौर से जो ड्रेस के प्रति बड़ी सावचेत रहती है ना, ऑनलाइन शॉपिंग करते समय बहुत सुंदर ड्रेस लगती है, लेकिन जैसे ही वो घर पे आती है ना आरती, यकीनन बहुत बार लगता है कि ये क्या ले लिया हमने.
0: बिल्कुल. और फिर वापस करो, ये करो, गुस्सा
1: सारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है.
0: इतना समय आके तो वो आती है ड्रेस.
1: इसलिए दूर के ढोल सुहावने लगना जो है, वो हमारे श्रोता लिखते हैं कि जो वस्तु व्यक्ति या परिस्थिति दूर से अच्छी और आकर्षक दिखाई देती है, वो पास जाकर उतनी अच्छी होती नहीं है. उदाहरण जैसे गाँव के लोग शहर की चमक दमक देखकर आकर्षित होते हैं, पर शहर की भागदौड़ और महंगाई देखकर पता चलता है, फिर कहते हैं कि दूर के तो ढोली सुहावने.
0: बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने एकदम सही तरीके से इस चीज को बताया. और एक और मेरे श्रोता है जो कहते हैं कि यदि आप पहाड़ों को दूर से देखते हैं तो बड़े सुंदर दिखाई देंगे, जितना करीब जाओगे उतना ही उबड़ खाबड़ दिखाई देंगे. जैसे चांद को रात में देखते हुए बड़ा ही सुंदर दिखता है, लेकिन साल जब मतलब उस पर जब यान भेजा गया तो उस पर देखा कि उसमें कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, कितने कैसा अजीब सा है वो जगह. तो वही है ना कि दूर के ढोल सुहावने, यहाँ से देखने में कितना सुंदर
1: चमकता है, सुंदर लगता है. हम उसकी तुलना करते हैं चेहरे से, चांद की तरह सुंदर चेहरा है ना, चांद जैसा हमारा टुकड़ा.
0: जी जी जी. लेकिन जब से वहां पे पहुंचे तब से थोड़ा
1: पता चलता है कि भाई जो है दूर से जो दिखता है वो पास आके पता चलता है कि सच्चाई क्या है. एक श्रोता लिखते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं और नजदीक बजे तो डब डब. एक बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है जिसका आम आदमी में भी बहुत प्रयोग होता है. इसका अर्थ है कि जो चीजें या परिस्थितियां हमसे दूर होती हैं वे हमें बहुत आकर्षक और अच्छी लगती हैं, लेकिन पास आने पर उनकी असलियत समझ में आती है. कहने का मतलब है कि रिश्ता कैसा भी हो, दोस्ती परिवार, एक दूरी मेंटेन करनी ही चाहिए, तब वो सुंदर लगता है या संभालना अच्छा लगता है. नजदीक जाने पर सुंदरता तो दिखती नहीं, उसकी कुरूपता भी दिखाई देने लग जाती है.
0: तो हमारे एक श्रोता, इन्होंने एक गुजराती मुहावरा भी इसको लेके लिखा है कि दूर थी डूंगरा रलियामणा. जी, यहाँ डूंगरा मतलब पहाड़ या पर्वत और रलियामणा मतलब सुहाना, यानी मतलब दूर से सुनाई दे रही आवाज या दृश्य सुहाने लगते हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और ही होती है.

0: तो वही अभी हमने जो
1: कहा कि पहाड़ों को दूर से जब हम देखते हैं, वही एक श्रोता भी लिखते हैं कि कई बार क्या है तो दूर से मधुर आवाज लगती है हमें, पास आने पर वही आवाज कानफोड़ू लगने लगती है, अनजानी चीजें हमेशा अधिक आकर्षित लगती हैं, वास्तविकता हमेशा बाहरी रूप से अलग होती है।
0: बिल्कुल।
1: और वही एक श्रोता कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने ही होते हैं, हमारी आदत होती है कि दूसरों को देखकर हम आह भरते हैं कि काश हमारी जिंदगी भी दूसरों की तरह आरामदायक होती, पर जब करीब जाकर उनकी असलियत पता चलती है तो लगता है कि भाई हम जैसे हैं
0: वैसे ही सही है। जी, तो बहुत सी चीजें जो हमें दूर से तो वो लगती है, जैसे हमारी श्रोताएं जो लिखती हैं कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं और नजदीक बजे तो जैसे आपने बताया भी इनके बारे में, तो इन्होंने बताया कि किस तरह से कठिनाई और कमियां हमारे सामने आती हैं उस चीज के लिए। लेकिन तो बहुत से जो श्रोता है हमारे इसी चीज को लिख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है।
1: बिल्कुल, लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी आरती की, दूर से आरती और मंदाकिनी जैसी सखियां भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यकीनन पास आने पर भी वो अच्छी लगेगी।
0: ऐसा नहीं है कि आपको निराशा हाथ लगी है, आप बिल्कुल हमसे मिलिए तो हम आपको और बहुत अच्छी तरह से आपसे बात करेंगे,
1: जैसे हम अभी आपको लग रहे हैं।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।

0: हाँ तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से बजट पे तकरार होती है। तो इस पर हमारे श्रोता ने लिखा है, एक श्रोता में लिखते हैं कि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि घर के सभी सदस्यों में खास करके पति पत्नी में इस बात पर तकरार होती ही है, परंतु स्वयं मैंने धर्म पत्नी और बच्चों को शुरू में ही बैठा कर समझा दिया था कि बेटियाँ और बेटे सभी टॉप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे जिनके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए कोई भी अननेसेसरी खर्चे हम में से कोई नहीं करेगा ताकि घर का बजट ना बिगड़े। और माता रानी की कृपा रही कि सभी ने माना और आज तक इस बात पर सभी कायम है, तकरार होने की नौबत ही नहीं आई।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप समझदारी से चले, आपके बच्चे भी समझदार निकले कि इस बात पर तकरार नहीं होती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आम मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है घरेलू बजट पर तकरार होना। जब घर चलाने वाले अतिरिक्त पैसे की मांग करें तो कमाने वाले के मुंह से निकलता है, अरे अभी तो इतना पैसा हो जाता था, पर अब क्या कारण है, मतलब इतने पैसे देता था उसमें तो काम निकल आता था। और भी पता चलता है कि विवाद सामने आ गया। विवाद का मुख्य कारण लगातार बढ़ती महंगाई, रसोई के सामान, दूध गैस के बढ़ते जो दाम है, घर की भौतिक वस्तुएं, फ्लैट, बच्चों की शिक्षा, ईएमआई, ये सभी जो है मध्यम वर्गीय परिवारों के मासिक खर्चों में जो है भारी वृद्धि हुई है। सभी बातों से सीमित आय और बढ़ते खर्चों के बीच तालमेल न बैठने से घर में तनाव और बहस की स्थिति पैदा हो जाती है।
0: जी, और एक श्रोता जो लिखते हैं कि घरेलू बजट किसी भी परिवार की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ होता है। परिवार की आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बजट बनाना बहुत आवश्यक है, लेकिन कई बार यही बजट परिवार के सदस्यों के बीच तकरार का कारण बन जाता है। सीमित आय और बढ़ती महंगाई के कारण जब सभी इच्छाओं को पूरा करना संभव नहीं होता तब मतभेद पैदा होने लगते हैं। यदि परिवार के सदस्य मिल बैठकर आय, खर्च और बजट की योजनाएं बनाएं तथा एक दूसरे की जरूरतों को समझें तो अधिकांश समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकता है।
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि घरेलू बजट किसी भी परिवार की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ होता है। परिवार की आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बजट बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार यही बजट परिवार के सदस्यों के बीच तकरार का कारण बन जाता है। सीमित आय और बढ़ती महंगाई के कारण जब सभी इच्छाएं पूरी करना संभव नहीं होता तो मतभेद पैदा होते हैं और परिवार के सदस्यों के बीच में क्या होता है, आपस में तनाव।
0: देखिए, आपका एक आप श्रोता का हम लोगों ने दो दो बार उसको उनको पढ़ लिया।
1: हाँ।
0: उनको इतना ज्यादा उनका बढ़िया, उन्होंने इस चीज को लिखा तरीके समझा के, क्योंकि बजट की जो चीजें होती है ना,
1: बिल्कुल
0: वो यही चीजें होती है, हर घर की समस्या ही यही है। जो कि मतलब जब भी बजट बनाने बैठते हैं ना तो सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती है,
1: बिल्कुल
0: है ना, और सबको लगता है हमारी बात पूरी की जाए, हमारी बात पूरी की, और इसी बात पे मतभेद पैदा होने शुरू हो जाते हैं परिवार में।
1: बिल्कुल सही कहा, मतभेद नहीं होने चाहिए, है ना।
0: जी बिल्कुल।

0: तो आरती, अब हम अपने श्रोताओं से ये इल्तिजा करते हैं कि उनकी नजरें इनायत बनी रहे,
1: बिल्कुल, हमसे बिल्कुल, हम पे अपनी कृपा बनाए रखिए।
0: तो भाई, अब जो है सखी सहेली कार्यक्रम का वक्त खत्म हो चला है और इस कार्यक्रम से अब मंदाकिनी जोशी
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: चौदहवीं का चांद यानी अभिनेत्री वहीदा रहमान ने विविध भारती के स्टूडियोज को और सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम को जगमग रोशन कर दिया था। बातों का सिलसिला कुछ इस तरह चला कि हमें प्रोग्राम के वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा, इसलिए इस हफ्ते भी वहीदा जी विविध भारती के इस कार्यक्रम को रोशन कर रही हैं और बातें वहीं से शुरू कर रही हैं जहां पिछले सप्ताह छूट गई थीं। वहीदा जी से बातें कर रहे हैं कमल शर्मा।
1: वहीदा जी, गोल्डी साहब का भी जिक्र आया था, फिर वो अधूरा रह गया। गोल्डी साहब का शुमार बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर्स में से होता है और उन्होंने बड़ी कामयाब फिल्में बनाई और आपने भी उनके साथ में काम किया। एक निर्देशक के रूप में, डायरेक्टर के रूप में आपने उनमें क्या खूबियां पाए?
2: वो भी काफी इंटेलिजेंट डायरेक्टर थे।
1: कैसा था उनका काम करने का स्टाइल जो था?
2: वेरी इजी टू वर्क विद। गाइड में पहले पहले शुरू शुरू में क्या होता था, अगर डायरेक्टर को कोई सजेशन दे, मेरा एक्सपीरियंस है दूसरे आर्टिस्टों का, आई डोंट नो, तो उतना वो लाइक नहीं करते थे। खासकर वो दिमाग में उस वक्त तो ज़्यादा ही था, अभी भी है थोड़ा बहुत, कि लगता लड़की का क्या सजेशन लेना चाहिए, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो गोल्डी में ये बात नहीं थी। तो कभी कभी मैं कहती ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये मुझे नहीं ठीक लग रहा है, तो वो हाँ या ना नहीं कहते थे मगर उस चीज़ को ले लेते थे। फिर चुपके से उसको करा के मैं कह रही मैंने जो कहा वही किया ना आपने, तो कहते हाँ तो सही सजेशन था, इसके लिए मैंने किया, यू नो। सो वो बात बड़ी अच्छी थी और गाइड का ट्रीटमेंट उनका बहुत ही बढ़िया और अच्छा था। खासकर गाइड का एक सीन था जहाँ मैं मुझसे छल किए जाए परफॉर्म करने से पहले बैक स्टेज पता चलता है कि राजू इज बीन अरेस्टेड फॉर फोर्जरी, और उसके या उससे पहले मार्को आते हैं, अपनी किताब प्रिंट हो चुकी है, तो वो राजू को कहते मुझे अंदर जाना है, मिलना है, जाने नहीं देते, तो वो मना करते हैं। अगर मैंने सोचा अगर आज कल आज की फिल्म होती तो ज़रूर एक वहाँ फाइट होनी थी बिटवीन राजू एंड मार्को, जो उसको इतना डिसेंटली और इतना डिग्निफाइड मैनर में उसको ट्रीट किया। वो खाली सिर्फ टाई थोड़ा टाइट करते हैं मार्को की और ठीक करके कोट कहते नहीं आप नहीं मिल सकते, मैं किताब दे दूंगा आप जाइए। वो मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा, छोटा सा सीन था मगर बहुत अच्छा लगा, और उसमें दोनों का यू नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स बहुत ही खूबसूरत, ही वाज अ वेरी गुड डायरेक्टर।
1: लेकिन वो जो गाना है मुझसे छल किए जाए, ये तो जरूर हम सुनाना चाहेंगे,
2: जरूर।

0: वेदा जी, लिविंग लेजेंड में शुमार होता है दिलीप कुमार साहब का, और उनके साथ में भी आपने बहुत काम किया, बहुत एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। खास उससे मुझे यहाँ दिल दिया दर्द दिया याद आ रही है फिल्म, वोदरिंग हाइट्स से मेरे खास से इंस्पायर्ड थी वो फिल्म। दिलीप साहब के बारे में कुछ बताइए।
1: दिलीप साहब के साथ पहली फिल्म थी मेरी दिल दिया दर्द लिया, और फिर उन्होंने मुझे ये किताब दी थी वुदरिंग हाइट्स के, इसको पढ़िए, इससे हमने इंस्पायर करके बना रहे। और मुझसे एक गलती हो गई, जब किताब पढ़ चुकी मैं एक बार सेट पे गई तो दिलीप साहब ने, कोई और असिस्टेंट ने पूछा, कैसी लगी आपको ये किताब, वही है तो हम बना रहे हैं। तो मैंने गलती से कह दिया, जी साहब किताब से और फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं है। बोले क्या बात कर रही हैं आप, उसी से तो हम आइडिया लेके बना रहे हैं, मतलब इंस्पिरेशन के साथ। मैंने कहा वुदरिंग हाइट्स में कहानी का जोर शो होता है जब कैथरीन मर जाती हैं, उसके प्यार में जो इनका बुरा हाल होता है। यहाँ तो ये रूपा जी जो हैं अंत तक चली हैं और मिल भी जाती हैं, इनमें तो कहाँ से। तो बोले नहीं नहीं भैया जी, आप बहुत मीम मेक निकालती हैं, अब नहीं उसी से लेते हैं। तो अब पता नहीं दिलीप साहब को सही लगा कि नहीं लगा, आई डोंट नो, बट ही वॉज वेरी नाइस एंड कोऑपरेटिव। और दिलीप साहब की एक बड़ी अच्छी बात थी, अपना शॉट होने के बाद अगर उस वो शॉट में खुद हैं या ना, तो वो दूसरे आर्टिस्ट का देखते रहते थे कि सही हो रहा है कि नहीं। अगर उनको लगता था कि नहीं सही हो, तो चुपके से आके कह देते, भाई इसको आप ऐसे ऐसे करें तो नहीं अच्छा होगा, इसको इस तरह करते हैं।
0: आपको कहा?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सबको कहते थे।
0: किस
1: दिल दिया, उसके बाद कौन सी थी, आदमी, राम और श्याम, इसमें
0: कोई खास सीन याद आता है जिसमें उन्होंने कहा कि?
1: राम और श्याम में एक लाइट सीन था, तो मैं अपने फादर को जाके कह रही हूँ कि एक आदमी मिला और ऐसे हुआ वैसे हुआ, उस गाड़ी जूम करके जाती, वो होता है यूँ होता है, बोले बोले बोले जा रही हूँ। तो मैंने, हम कोडेकनाल में थे होटल में, मैंने कहा साहब डायलॉग दे दीजिए, सीन दे दीजिए, याद करना है, नहीं तो आउटडोर में टाइम वेस्ट होगा। और मुझे बहुत ये लगता था कि यू नो प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो कहने लगे नहीं आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा क्यों, आपने कहा इतना लंबा सीन है। तो मेरी आदत थी यू नो, मेरी हाथ बहुत चला के बात करती हूँ और साउंड्स निकालती हूँ, जैसे उन्होंने जो जो आप बोलती हैं उसको मैंने नोट किया है, आपको वही करना है, मगर जिस वक्त मैं क्या बोलती मुझे क्या पता। तो बोले एक रफली देख लीजिए, मैं कल दे दूंगा या नहीं तो आज रात को दूंगा मैं सीन। तो फिर भी मैं बड़ी काफ़ी नर्वस थी कि भाई दे दीजिए याद करने डालो। तो मैं कहूँ पढ़ती रही, तो मैंने कहा कि ये क्या है भाई, जूम करके गाड़ी चली गई। तो बोले मैंने आपसे सुना है वो लफ्ज़। मैंने कहा कब, तो आपको याद नहीं होगा, हम नोट करते रहते हैं आर्टिस्ट कब क्या से बिहेव करता है, तो इसमें आपको ज़्यादा तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने खुल के, जैसे आप भूल जाइए कि आप ये कैरेक्टर हैं, थोड़ी देर के लिए आप सोच लीजिए मैं वहीदा ही हूँ, हम कैमरा ऑन कर देंगे, सिर्फ थोड़े जो कनेक्टेड जॉइंट के डायलॉग्स हैं वो याद रखे, बाकी आप ना कीजिए। मैंने कहा अच्छी बात है।
0: आदमी भी एक थोड़ी सी अलग तरह की फिल्म थी, टफ सा करेक्टर था, इसमें भी बड़ा चैलेंजिंग रोल था क्योंकि ट्रायंगल था, लव ट्रायंगल था आदमी का। इसका कोई गाना सुनवा दिया जाए
1: आदमी का? हाँ, वो जो उनके एक्सीडेंट के बाद एक गाना होता है,
0: आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज ना दे,
1: वो समथिंग। हाँ,

0: अपने समकालीन जो आर्टिस्ट रही आपकी, जो समकालीन अभिनेत्रियां रही, उनमें आपको कौन बहुत पसंद थी?
1: मेरे से पहले जो थे, मतलब मेरे से सीनियर, उसमें मुझे गीता बाली जी बहुत अच्छे लगते थे, फिर नरगिस जी, और मीना जी का क्या था, उनके एक जैसे रोल होने लगे थे, एक टाइप की पर्सनालिटी हो गई थी, हालांकि उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस जो थी वो बहुत ही बढ़िया थी, इट वॉज वेरी कैरिस्मेटिक। उनको देखो तो दिल करता था, कई नज़र इधर उधर नहीं जाते थे, उन्हीं को देखते रहिए, बड़ी ग्रेट फिल्म आई मीन पर्सनैलिटी थी उनकी। उसके बाद हमारे मेरे साथ के वक्त मैं कहूँ साधना बहुत अच्छी थी, और माला सिन्हा, नंदा, ये नहीं कि नंदा मेरी फ्रेंड है, मगर उनकी अपनी एक पर्सनालिटी थी, बड़ा स्वीट सा चेहरा था।
0: अच्छा, एक क्रिटिक के रूप में कभी अपनी फिल्मों को देखा आपने कि भाई ये सीन ऐसे हो जाना चाहिए था कभी?
1: हाँ, वो तो इसीलिए मैं अपनी फिल्में देखती नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं देखती हूँ कि ओहो इसको, इस सीन को और बेटर, गाइड में खुद मैं इतने नुक्स निकालती हूँ कि ओहो हो ये क्या किया मैंने, इससे तो ऐसे करना चाहिए था, बेहतर होता था सीन। सो फिर मजा ही नहीं आता।

0: वैरायटी आ गई है और बोल्ड सब्जेक्ट्स, और आजकल के जो आर्टिस्ट हैं मेल या फीमेल वो हर किस्म का रोल करने के लिए तैयार हो गए हैं जो हमारे जमाने में नहीं होते थे।
1: आपका एक बेटा है एक बेटी है, क्या नाम है उनके?
0: वो सब बड़े शर्माते हैं, क्यों कहते हैं आप क्यों हमारा वो करते हैं, एक लड़का एक लड़की हो बस।
1: वो फिल्में देखते हैं आपकी?
0: मेरी फिल्में इतनी नहीं देखते हैं, कभी देखी नहीं उन्होंने। मेरी लड़की और लड़के ने कनाडा में ग्रेजुएशन किया टोरंटो में, तो वहाँ मेरी लड़की ने फिल्म स्टडीज की, तो फिर एक बार वापस जो हिंदुस्तान आई तो कहने लगी जो प्यासा में ऐसी है प्यासा में। मैंने कहा बेटा आपने प्यासा कब देखी, आपको तो अच्छी नहीं लगती थी हमारी मेरी फिल्में देखना। तो बोले टोरंटो में देखी। ओ मैंने कहा अच्छा थिएटर में लगी थी प्यासा? तो बोले नहीं कॉलेज में देखी। मैंने कहा कॉलेज में प्यासा कैसे दिखाई गई? तो कहने लगे वहाँ के आर्काइव में प्यासा रखी हुई है। मेरे ख्याल से गुरुदत्त जी की एक दो फिल्में हैं। तो आई फेल्ट वेरी प्राउड कि वाह क्या बात है। तो उसने कहा मैंने प्यासा देखी है। अब वो ख्वाहिश जाहिर कर रही हैं और दोनों बच्चे मेरे कि हम अब आपके साहब बीबी और गुलाम देखना चाहते हैं।
1: तो यहाँ प्यासा का भी जिक्र आया और साहब बीबी गुलाम का भी आया है। साहब बीबी गुलाम का तो इन दोनों में से कोई किसी एक फिल्म का ही गाना और हो जाए उसमें।
0: प्यासा का वो है ये दुनिया में हाँ नहीं जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला।
1: हेमंत कुमार साहब की
0: हाँ हेमंत कुमार साहब की आवाज़ वो बहुत अच्छा था।

0: वैसे जी, दिल दिया दर्द लिया में प्राण साहब का भी एक बहुत ही अलग तरह का रोल था और विलन थे उसमें, और सिनेमा के बहुत ही नामी कलाकार तो हैं ही, उनसे भी जुड़ा कोई संस्मरण हम जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि उनके साथ में भी आपकी कई फिल्में आई, राम और श्याम में भी वो खलनायक थे।
1: बहुत फिल्मों में थे, पत्थर के सनम, राम और श्याम, दिल दिया दर्द लिया, आदमी, तो बहुत इतने बुरे, मतलब यू नो टू हेट हिम ऑन द स्क्रीन, मगर उतने जेंटलमैन थे लाइफ में, बहुत ही शरीफ। और उनकी एक अजीब बात थी, उन्होंने मुझे कहा, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ सुन के, कि उन्होंने जिंदगी में कभी कोई फल नहीं खाया, वो फल खा नहीं सकते क्योंकि फल की खुशबू से तक उनको मतली आती थी। मैंने कहा अच्छा, ये पहली बार सुना मैंने, वैसे इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, और जोक्स बहुत क्रैक किया करते थे, इट वॉज अच्छा लगता था।
0: लेकिन उन्होंने कामयाबी का फल अच्छा,
1: बिल्कुल, यार।

0: खूब चखा
1: वो
0: उन्होंने।
1: चखा।
0: आपकी फिल्मों की अगर हम बात करें तो मुझे दो तीन फिल्में और बहुत याद आती हैं, रुला भी देती हैं। उसमें एक मास्टरपीस है आपकी, एक और फिल्म तीसरी कसम, शैलेंद्र साहब उससे जुड़े हुए
1: अच्छा,
0: थे,
1: हाँ जी।
0: जिनकी बड़ी दर्दनाक, फिर उसके साथ में जो घटना ट्रेजेडी हुई उनके साथ में, वो भी राज कपूर साहब आपके उसमें नायक थे, और मेरे ख्याल से बासु भट्टाचार्य साहब ने
1: भट्टाचार्य।
0: उसको डायरेक्ट किया था। उसके बारे में जरूर बताइए, उस फिल्म के बारे में। एक तो उसमें वो पूरी कमाल की है वो फिल्म, आज भी उसको जितनी बार देखा जाए ऐसे मन ही नहीं भरता उस फिल्म को।
1: उसकी बड़ी सिंपल कहानी थी, बड़ी सिंपल स्वीट पिक्चर थी, मगर उसकी फिलॉसफी बहुत डीप थी। उनके गानों में भी सिंपल वर्ड्स थे, मगर उसकी मीनिंग, उसकी फिलॉसफी में बहुत डेप्थ थी। और आप मानोगे नहीं, आधी से ज़्यादा फिल्म बनी थी बिना, मतलब एक सीन में मैं और राजी हैं, तो मैं नहीं हूँ या नहीं तो राजी नहीं है। तो डायरेक्टर ने बड़ी मुश्किल से, ये नहीं क्योंकि वो बहुत देर से आते थे
0: अच्छा,
1: सेट्स पे, और वो बहुत मसरूफ़ थे। अपने संगम बन रही थी उसके बाद, हाँ संगम बन रही थी उस वक्त, वो इतने ज़्यादा उसमें जुड़े
0: मसरूफ
1: हुए थे, मसरूफ़ थे, तो इसको उन्होंने इतनी तवज्जो नहीं दी। उन्होंने इसलिए की क्योंकि शैलेंद्र उनके दोस्त थे और वो उसके प्रोड्यूसर थे। बड़ी मुश्किल होती थी, मगर देख के फिल्म मुझे खुद ताज्जुब होता था, ये कैसी बनी फिल्म, क्योंकि कई दफ़ा सीन्स में एक बैक शॉट ले लिया कंबाइंड, उसके बाद मेरे क्लोजअप हो रहे हैं, और मेरे से बैक शॉट ले लिया तो उसके बाद राज साहब के क्लोजअप हो रहे हैं, मगर सीन टोटली ऑन द स्क्रीन एक सीन होता था। तो बड़ी वैसे हालात में फिल्म बनी, और फिर वो मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में ऑफिशियल एंट्री थी, उसके लिए हम साथ गए थे, मैं और राजी। और वाकई में मैंने देखा, राजी यूज्ड टू गेट मॉब्ड इन मॉस्को, लिटरली राजू राजू राजू, यू नो, बहुत। और जो जो रशियन था, वो उनके पूरे गाने, एक क्या 420 और फिल्मों के गाने, आवारा के सब गाया थे, गाते थे।
0: वेदा जी, इस फिल्म में नौटंकी वाली का एक किरदार किया था, और म्यूजिक भी उसमें काफी कुछ उसी तरह का था, शंकर
1: हाँ
0: जयकिशन साहब का संगीत
1: हाँ
0: था। इस फिल्म में क्या आपको संतुष्टि मिली भूमिका निभा करके, तीसरी कसम की अगर मैं बात करूं?
1: हाँ मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि
0: जी
1: वो भी एक डिफरेंट कैरेक्टर
0: जी
1: था, यू नो, और सिंपल एंड वेरी स्वीट। उससे वो फिल्म कभी भी देखो बोर नहीं लगती है, यू नो, अच्छी लगती है, दिल को छूती है।
0: कुछ चीज़ों ऐसी कि जैसे सेल्यूलॉइड पर पोएट्री किसी ने लिख दी हो, कुछ
1: बिल्कुल
0: उसी तरह की वो
1: सही
0: फिल्म है।
1: सही।
0: उसमें भी गाने बहुत अच्छे थे। एक गाना उस फिल्म का हम जरूर सुनवाएं।
1: सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, हमें तो पैदल ही जाना है।

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन। वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव, जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: क्या करें, तो ऑन द होल जब फाइनली फिल्म बनी तो बहुत अच्छी बनी थी, तो हमने कहा वेल ठीक हो गई, यू नो।
3: वेदा जी, आपने सत्यजीत रे साहब की भी किस फिल्म में काम किया, कौन सी फिल्म थी वो?
2: अभिजान।
3: अभिजान बंगला आपको
2: नहीं, उसमें इतनी ज्यादा शुद्ध बंगाली बोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कहा ये बिहारी लड़की है, टूटी फूटी बंगाली और भोजपुरी जबान बोलती है, तो उसमें कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। तो मगर जब उसका ऑफर आया, मुझे बहुत बेहद खुशी हुई और ताज्जुब भी हुआ।
3: उसके पहले आपने उनकी कोई फिल्म देखी थी सत्यजीत रे साहब?
2: हाँ, पाथर पंचली देखी थी। अच्छा। उसके बाद भी और दो तीन फिल्में देखी थी मैंने, तो आई वॉज रियली वेरी थ्रिल्ड और बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। और
3: उन्होंने क्या कहा के बारे में? उनको कैसा लगा आपका काम?
2: हाँ, उन्होंने कहा जब हम डिस्कस कर रहे थे सौमित्री चटर्जी और हम, उनके वो फेवरेट एक्टर थे, तो कि इस कैरेक्टर को किसको लिया जाए, क्योंकि कोई प्योर बंगाली की जरूरत नहीं है जो जबान जो बोलती है उसके लिए। तो सब ने कोरस में कहा है वही रहमान, तो मैंने कहा सच? तो बोले आई वॉज रियली थ्रिल्ड। और उनका समझाना और शॉट लेना इतना प्रिसाइस होता था, ना वक्त ज़ाया होता था ना नेगेटिव ज़ाया। वो तो कहते थे भाई मेरा नेगेटिव इतना निकलता है, इससे कोई चूड़ियाँ प्लास्टिक की चूड़ियाँ भी नहीं बन सकती हैं, क्योंकि आई कांट अफोर्ड, क्योंकि इतने छोटे बजट पे फिल्म बनती है। हम नहीं कह रीटेक्स इतने सारे 20-25 रीटेक हो रहे हैं, या इतने ज़्यादा शॉट्स ले लिए उसके बाद निकाल के फेंक दिया। मैं दिमाग में पेपर पे लिख लेता हूँ कि इसकी टाइमिंग इतनी इतना ही होगा शॉट, उससे शायद 3-4 फुट ज्यादा एक्स्ट्रा मिलेगा आपको शुरू के लिए या एंड के लिए, वरना नहीं।
4: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान, इनसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा। सुनिए आगे की बातचीत।
3: दूसरे डायरेक्टर्स आए तो फिर भी कहीं ना कहीं मोल भाव तो हो ही जाता है पैसे को लेकर के, जब उनका ऑफर आया पैसे की क्या बात हुई? पैसे आपने
2: सवाल ही नहीं पैदा हुआ था, वो ऑलरेडी वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट 10 डायरेक्टर्स में थे। तो पैसा देखिए, हम पैसे के लिए जरूर करते हैं, ये आफ्टर ऑल इज अ प्रोफेशन, कोई चैरिटी तो नहीं कर रहे, मगर कई दफ़ा जैसे रेशमा शेरा मैंने की, सुनील जी ने कहा था ये 25-30 में बनेगी और आप कहिए, क्योंकि उस वक्त सुखदेव डायरेक्टर थे, सुखदेव या खुद सुनील या मैं, कोई आर्टिस्ट पैसे नहीं लेगा, जब पिक्चर ख़त्म हो जाएगी तो हम पैसे लेंगे और बिक जाएगी। तो वो उसके इतने मुश्किलात से गुजर रहे थे वो, तो उस फिल्म में मैंने नहीं पैसे लिए रेशमा शेरा में। और जब सत्यजीत ने कहा, मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं आपसे पैसे की बात करूं। कई दफ़ा आर्टिस्ट अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए या बहुत बढ़िया डायरेक्टर के लिए काम करते हैं बिना पैसे के या बहुत कम पैसे, जो डायरेक्टर के मन में आए तो दे दे, तो दे दे, नहीं तो नहीं।
3: आपकी एक फिल्म और है बांग्ला, जीवन जेरोकम।
2: हाँ, वो नहीं ठीक बनी, मैंने हालांकि देखी भी नहीं, क्योंकि उसमें बनती रही रुकती रही, उसमें कोई एक्सीडेंट आग हो गया था, तो उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर कुछ अरेस्ट भी हो गए थे, कॉम्प्लिकेशंस थे, तो वो ठीक से मुझे मज़ा नहीं आया।

0: फिल्म में काम करके।
1: मनोज कुमार साहब का नाम आया था, मनोज जी का नाम लिया जाता है बड़े ही सफल बड़े टैलेंटेड डायरेक्टर्स में से, जैसे गोल्डी साहब को लोग याद करते हैं तो कहते हैं कि मनोज साहब, ये छोटा मुंह बड़ी बात होगी, कहते हैं कि वो एक्टर से बेहतर डायरेक्टर है। आप क्या कहेंगे उनके बारे में, कैसे उनके साथ में काम?
0: नहीं, आई एग्री विथ हिम, वो आई एग्री विथ हिम, इज अ बेटर डायरेक्टर देन एन एक्टर।
1: कोई यादगार घटना है उनके साथ?
0: उनके साथ एक फिल्म बनी थी पत्थर के सनम।
1: जी जी।
0: तो वो बैठ के, उस वक्त क्या होता था कि मोबाइल फोन्स नहीं थे और एसी मेकअप रूम नहीं होते थे, ना वैन्स होते थे, तो हम ज़्यादातर एक बार सेट पे गए तो सेट पे ही बैठे रहते थे जब तक लंच ब्रेक ना हो या पैकअप ना हो, तो आपस में बैठ के बातें करते थे जब लाइटिंग हो रही हो, तो सब एक्टर्स हम साथ में पिछली शूटिंग कौन सी थी, क्या सीन था, वो डायरेक्टर कैसे हैं, ये बातें करते थे। तो मनोज हमेशा अपनी कहानियाँ अपने सीन सुनाया करते थे, तो उससे मुझे लगा कि यार लिखते बहुत अच्छा है। तो पत्थर के सनम के डायरेक्टर को मैंने कहा इन चंद सीन आप इनसे लिखवाया कीजिए, लिखवाइए, क्योंकि बहुत अच्छा लिखते हैं। तो बोले अच्छा क्यों? मैंने कहा ये सीन्स अपने फिल्मों के सुना रहे हैं तो उससे लगता है कि बात है इस आदमी में। तो काफ़ी सारे पत्थर के सनम के सीन्स उन्होंने फिर मनोज से लिखवाए, यू नो, तो लाइट सीन्स वगैरह बहुत अच्छे थे।
1: अच्छा वही जी, फिल्मों में तो गाने पिक्चराइज किए जाते हैं, आपके ऊपर बहुत सारे गाने हैं और वो फिल्में जब उतर भी जाएं सिनेमा हॉल से, लेकिन गाने तो गूंजते रहते हैं, रेडियो से हम आज तक सुना रहे हैं लोगों को,

0: लता जी ने आपके लिए बहुत सारे गाने गाए हैं. लता जी से कोई इंटरेस्टिंग मुलाकात याद है आपको? उन्होंने उनको वो गाना आप पे जब जो पिक्चराइज हुआ उसको देख करके उनको मजा आया हो और आपको मजा आया होगा वो गाना जो उन्होंने आपके लिए गाया हो.
1: लता जी ने कहा, मुझे बाद में कई डायरेक्टरों ने भी कहा, वो हमेशा पूछा करती थी कौन सा आर्टिस्ट

0: परफॉर्म करने वाला है, तो वो बताते थे कि नूतन या मीना कुमारी हु वह। तो एक बार एक म्यूजिक डायरेक्टर ने पूछा, ये क्या फ़र्क पड़ता है आपको, को गाने से मतलब है, आर्टिस्ट क्यों पूछते हैं? तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं जब उनकी फिल्में देखती हूँ या पर्सनली मिलती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ कि वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बोलते हैं, कि ये मैं उसमें अल्लाप लूँ या इस ढंग से गाऊँ, तो क्या वो करेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा कि नहीं? तो वो भी बहुत इंटेलिजेंट आर्टिस्ट हैं, तो वो हमेशा पूछती हैं। तो एक वक्त क्या हुआ, उनको चॉकलेट्स का बहुत शौक़ है। तो बांग्लादेश की वॉर जब हुई तो मैं प्रोग्राम कमेटी में थी, तो मेरा जिम्मा था कि फंड कलेक्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो मैंने इंडस्ट्री को जमा करके बहुत बड़ा शो किया था, और लता जी मान नहीं रही थी, कल्याण जी आनंद जी भाई जाके बहुत कहा, फिर सुनील नरगिस ने कहा कि लता जी आ जाइए इस शो में, बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़ा शो होने वाला है। तो पता नहीं क्यों उन्होंने कहा, नहीं, बहुत बरसों से मैंने हिंदुस्तान में शो करना छोड़ दिया। तो फिर कल्याण जी भाई से मैंने कहा, चलो एक बार आखिरी बार कोशिश करते हैं। कहीं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उनकी गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो हम पहुंच गए बिना अपॉइंटमेंट के। वो देख के फिर चौंक गए कि ये फिर आ गए। तो बस ब्रेक हुआ तो मैंने कहा, लता जी आपके बगैर शो पूरा नहीं होगा, और किशोर दा भी मान गए हैं, तो वो कहते कि लता के बगैर मुझे नहीं मज़ा आएगा, ये क्या बात है? ये नहीं, क्योंकि तुम क्यों नहीं मानती, मुझे सुनील ने भी कहा, नरगिस जी ने भी कहा, मैं नहीं करती। पता नहीं क्यों अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई जो जबान से निकल गई, जो बहुत उसका फ़ायदा हुआ। मैंने कहा, लता जी क्या है, हिंदुस्तान में सिर्फ दो हीरोइंस हैं। तो वो देखने लगे, बोले दो कौन? मैंने कहा, एक इंदिरा गांधी जी हैं, फिर एक आप हैं। तो वो इतनी ऐसे मुंह खुला देखने लगे, और फिर कल्याण जी भाई आनंद जी भाई मुझे देखने लगे, ये क्या बोल रहे हैं? वो बोल के एक सेकंड के लिए सन्नाटा हुआ। मैंने सोचा गलत कहा है कि सही कहा, मेरी समझ में नहीं आया। तो फिर वो मुस्कुराने लगे, तो बोले, अच्छा भाई तुम तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती हो, अच्छा आ जाऊंगी।
1: कहीं कहीं लड़ियाना पड़ता है, मान मनावर सब चलता है। तो फिर वो आई। तो यहाँ लता जी का कौन सा गाना आप सुनवाना चाहेंगे जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है?
0: का हम दोनों का गाना, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम। मैं जब भी सुनती हूँ चुपचाप खामोशी से, तो मेरा दिल भर आता है, तो मुझे वो बहुत ही अच्छा लगता है गाना। उनके तो खैर वो इतने हैं, मुश्किल है ढूंढना या चुनना।

0: खामोशी जो है अंदर की जो पीड़ा है वो जिस तरह से वो अंदर ही अंदर बर्दाश्त कर रही चीजों को वो रुला देती है वो। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही कठिन रोल है जिसमें आपके पास में संवादों से ज्यादा आपको अपने चेहरे से अपनी आंखों से बात करनी है। कोई यादगार घटना इस फिल्म से जुड़ी हुई?
1: तो वो सीन डिफिकल्ट था, हालांकि उसमें डायलॉग्स नहीं थे। जब राजेश खन्ना के साथ, राजेश खन्ना को इससे ज्यादा लगाव हो जाता है, पहले केस में इसको धर्मेंद्र के साथ लगाव होता है, तो वो चले जाते हैं शादी करके जब ठीक हो जाते हैं, तो फिर जब दोबारा ये रिपीटेशन होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि हमारे प्रोफेशन में आपको ऐसा लगाव होना नहीं चाहिए, यू नो ये मुश्किल बात है। तब इसको महसूस होता है कि अब ये कैरेक्टर को इससे लगाव हो गया है, अब कैसे बचे। तो वो उसको बड़ा समझाने की कोशिश करती, होता नहीं है, तो वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। वो बड़ा कठिन सीन था क्योंकि वो दरवाज़ा ठोक रहा है, पीट रहा है, आवाज़ें दे रहा है राधा राधा राधा, और वो कमरे से निकलती नहीं है। कैसे वो अपने आप को कंट्रोल करती है, और उसका स्ट्रेन उस पर इतना पड़ता है कि वो देन शी गोज मैड। तो वो बड़ा डिफिकल्ट सीन था। और एक डिफ़िकल्टी हो रही थी क्योंकि जैसे मैं राजेश को बोट राइड पर ले जाती हूँ, वो गाना गा रहे हैं और मैं उसके साथ हूँ एज ए नर्स, और वो इसको सोच रहा है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मुझे भी, मैं प्यार कर रहा हूँ तो ये भी शायद मुझे प्यार कर रही है। उसमें उस वक्त प्रॉब्लम क्या हुई थी, इट वॉज़ वेरी कॉमिकल, इट वॉज मेरे जो एक्सप्रेशन थे सीरियस थे, क्योंकि वो महसूस कर रही है ओह ये तो फिर से गड़बड़ हो रही है, अब इसको मेरे से लगाव होने लगा है। वो गाना गा रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि अब कैसे इसको मैं दूर करूँ और कैसे समझाऊँ। तो उस वक्त राजेश खन्ना नए नए थे तो वो लिप मूवमेंट नहीं कैच कर पाते थे, और जब ऐसे हम एम्ब्रेस कर रहे हैं तो कैमरा पीछे जाता था, तो मैं राजेश कहते थे वहीदा जी प्लीज़ हेल्प मी, तो मेरा स्टार्टिंग दे दीजिए। अब उनके गाना उनका है तो मैं कहती थी ये शाम कुछ अजीब है, फिर वो कैमरा आ जाता था तो मैं फिर चुप उदास चेहरा लेके, बड़ी मुश्किल हुई, बड़ी मुश्किल हुई, और हंसते थे। मैंने कहा राजेश थोड़ा कॉन्सेंट तो कीजिए, तो बोले क्या करूँ भूल जाता हूँ, तो आप मुझे थोड़ा क्यू दे दिया करें। वो कैमरा पीछे राजेश के फेस पे जाता था, क्यों मैं देती थी, गाना उनका था, तो बड़ी प्रॉब्लम।

0: वहीदा जी, असिस्टेंट साहब का जिक्र आया, फिर हेमंदा की वो फिल्म थी, हेमंदा ने गाया भी, संगीत भी दिया और फिल्में भी प्रोड्यूस की, कोहरा और 20 साल बाद, ये दो फिल्में भी उन्हीं की थी। हेमंत साहब की फिल्मों की खासियत ये रही कि संगीत जो है उनका बहुत बढ़िया रहा। उनसे कोई पर्सनल आपकी मुलाकात, कोई ऐसी यादगार मुलाकात हुई?
1: पर्सनल एक बड़ा अजीब सा इंसिडेंट हुआ कि हेमंदा को गुरुदत्त जी की वजह से वो गाने वगैरह गाते थे,

0: मेंटली नहीं थी, वो पिक्चर के बारे में सोच रही थी कि पता नहीं का, तो बड़ी नाइस ऑफ फिल्म के वो मिसअंडरस्टैंड नहीं किया उन्होंने।
1: वेदा जी, उनकी फिल्म 20 साल बाद की अगर हम बात करें, या कोहरा, संगीत दोनों का बहुत बढ़िया रहा, किस फिल्म का गाना सुनवाएंगे आप?
0: कोहरा का

0: मेंटली नहीं थी, वो पिक्चर के बारे में सोच रही थी कि पता नहीं का, तो बड़ी नाइस ऑफ फिल्म के वो मिसअंडरस्टैंड नहीं किया उन्होंने।
1: वेदा जी, उनकी फिल्म 20 साल बाद की अगर हम बात करें, या कोहरा, संगीत दोनों का बहुत बढ़िया रहा, किस फिल्म का गाना सुनवाएंगे आप?
0: कोहरा का गाना, झूम झूम ढलती रात।

0: वैसे जी फिल्मों की खूब बातें हो गई, लेकिन फिल्मों से हट करके भी आप काम कर रही हैं, और खासतौर से हमें पता चला कि बेसहारा बेघर जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी आप अपनी सर्विसेज दे रही हैं। उस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, क्या है ये काम?
1: ये एनजीओ है जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए शुरू हुआ 10 साल पहले, और 10 साल से चल रहा है और काफ़ी कामयाब हुआ है। और ये जो स्लम्स के बच्चे होते हैं वो स्कूल जाते हैं, म्यूनिसिपल स्कूल्स फर्स्ट स्टैंडर्ड से, मगर उनका फाउंडेशन नहीं बनता प्राइमरी एजुकेशन के लिए, और वो बेचारे माँ बाप दोनों काम करते हैं तो वो उनकी ज़िंदगी फाउंडेशन नहीं, क्योंकि चूँकि ठीक होता है तो वो भटक जाते हैं, सड़कों में घूमते रहते कुछ नहीं। तो ये एक फाउंडर हैं निर्मला निकेतन की, शुरू किया। तो अभी धीरे धीरे सारे हिंदुस्तान में इसका शुरू हुआ, इसका नाम है प्रथम। प्रथम मतलब फर्स्ट स्टेप, सो इट इज़ वेरी नेसेसरी आई फील। तालीम की, एजुकेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है हमारे मुल्क में, उससे कई बातें सॉल्व हो सकती हैं। तो कई माँ बाप को पहले जाके समझाना पड़ता है, वो सोचते हैं हाँ म्यूनसिपल स्कूल, पहले तो वो डर जाते हैं कि हम पे नहीं कर सकते, म्यूनसिपल स्कूल तो फ्री है, अब आप लोग आगे पढ़ाने के लिए हम नहीं पे कर सकते। हम कहते हैं नहीं, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मोहल्लों में हम लड़कियों को पिकअप करते हैं टीचर्स, उनको कहानियों से गानों से उनका दिलचस्पी पैदा करते हैं। मेन मकसद तो बच्चों को पढ़ाना, फिर वो स्कूल जाते हैं। तो ये लड़कियों की ज़िंदगी बड़ी इम्प्रूव हुई है, मगर आगे का जेनरेशन जो पढ़ा लिखा होगा वो अपने बच्चे या अपने छोटे भाई बहनों को अनपढ़ नहीं रखेंगे, वो भी चाहेंगे

0: कि वो भी जरूर पढ़ें कि
1: जी
0: इसका फायदा क्या है।
1: तो वेदा जी, जैसी आपको तृप्ति संतुष्टि मिली अपनी भूमिकाओं को करते हुए फिल्मों में, वैसी संतुष्टि इसमें मिली आपको?
0: हाँ जी
1: वेदा जी, दिल तो नहीं करता कि आपको छोड़ें, आपसे बात करने का और भी मन करता है। और हम अपनी ओर से, विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की ओर से और विविध भारती की ओर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान ने अपने जीवन, अपने करियर, अपने साथियों और न जाने किन किन विषयों पर बातें की। इनसे कमल शर्मा ने बातचीत की। चलते चलते आपको ये बता दें, इस कार्यक्रम को तैयार करने में हमारे तकनीकी सहयोगी थे दिलीप कुलकर्णी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने।

एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी उदयपुर का विविध भारती केंद्र है। एफएम रेडियो लेक सिटी शाम के 5 बजने को हैं और समय हो चला है युवा साथियों के दैनिक कार्यक्रम युववाणी का। आप सुनेंगे ये कार्यक्रम हमारे दोनों चैनल यानी कि मीडियम वेव और एफएम पर भी।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित।
1: और मैं हूं वंदना। स्वागत कर रहे हैं आप सभी का इस खूबसूरत सी शाम में अपने मनपसंद कार्यक्रम युववाणी के साथ। तारीख है 16 जून और वक्त हो चला है एक शानदार सफर की शुरुआत करने का। तो चलिए मिलकर करते हैं आज की इस हसीन शाम का आगाज।
0: बिल्कुल वंदना, और आज का हमारा बुलेटिन बेहद खास है। उभरता भारत में हम बात करेंगे देश के बदलते सेक्स रेशियो की, तो वहीं ट्रैवल डायरीज में आपको ले चलेंगे सीधे हेमीज नेशनल पार्क की हसीन वादियों में।
1: सिर्फ इतना ही नहीं हर्षित, आज मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में सुलझाएंगे अमेलिया ईयरहार्ट का रहस्य। साथ ही सेलिब्रेट करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस और वर्ल्ड सी टर्टल डे को।
0: और हमारी स्पेशल ट्रिब्यूट और बर्थडे सेगमेंट्स में आज बात होगी आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, चित्रंजन दास, बॉलीवुड के डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती, डायरेक्टर इम्तियाज अली और स्पोर्ट्स लेजेंड्स गियोकोमी अगोस्टिनी और जान जेलेज़नी की।
1: और हाँ, हमेशा की तरह टुडेज हिस्ट्री, साथ ही स्पोर्ट्स अपडेट होगा और शेयर मार्केट की जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। तो बस बने रहिए हमारे साथ,
0: क्योंकि शाम अभी शुरू हुई है। लेट्स गेट इट स्टार्टेड।

0: सम्मान जो है अवसर सब समान मिले, इसी विषय पर आज हम बात करेंगे उभरता भारत और लिंगानुपात पर।
1: बिल्कुल हर्षित, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हम केवल बड़ी बड़ी इमारतों और आधुनिक सुविधाओं की नहीं बल्कि एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहाँ बेटा और बेटी दोनों को बराबरी का दर्जा मिले।
0: अब लिंगानुपात है क्या? सबसे पहले समझते हैं कि आसान शब्दों में कहें तो हर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है।
1: ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है बल्कि समाज की सोच और महिलाओं की स्थिति को दर्शाने वाला महत्वपूर्ण संकेतक है। अगर किसी समाज में महिलाओं की संख्या लगातार कम हो रही है तो यह चिंता का विषय माना जाता है।
0: दोस्तों, हमारे समाज में लंबे समय तक ऐसी सोच रही कि बेटा परिवार का सहारा होता है जबकि बेटी को पराया धन माना जाता था। इसी सोच के कारण कई बार बेटियों को वह अवसर नहीं मिल पाते जो उनके लिए वो हकदार होती हैं।
1: सही कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसे क्षेत्रों में भी बेटियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इसका असर लिंगानुपात पर भी दिखाई देता है।
0: लेकिन समय के साथ लोगों की सोच में बदलाव आया है। अब लोग समझने लगे हैं कि बेटियां भी परिवार और समाज की उतनी ही महत्वपूर्ण सदस्य है जितने की बेटे।
1: आज का भारत बदल रहा है। आज बेटियां केवल घर तक सीमित नहीं हैं बल्कि हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है।
0: चाहे खेल का मैदान हो, अंतरिक्ष की दुनिया हो, सेना हो या प्रशासनिक सेवाएं, भारतीय महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी क्षमता को साबित किया है।
1: आज गांवों से लेकर शहरों तक लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर रही है, अपने सपनों को पूरा कर रही है और देश की प्रगति में योगदान दे रही है।
0: वंदना, इस बदलाव में सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
1: बिल्कुल सही कहा, वर्ष 2015 में शुरू किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान देश भर में एक जन आंदोलन की तरह सामने आया। इसका उद्देश्य था बेटियों को बचाना, पढ़ाना और समाज में उनके प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना।
0: इस अभियान ने लोगों को यह संदेश दिया कि बेटियां बोझ नहीं बल्कि देश की शक्ति हैं। स्कूलों में लड़कियों को शिक्षा को बढ़ावा दिया गया और जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए।
1: इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना ने भी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस योजना के तहत माता पिता अपनी बेटी के नाम पर बचत कर सकते हैं जिससे उसकी शिक्षा और भविष्य की जरूरतें पूरी की जा सके।
0: वंदना, कई राज्यों ने भी अपनी अपनी योजनाएं शुरू की हैं जिनका उद्देश्य बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को मजबूत बनाना है।
1: और इन योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। पहले की तुलना में अब अधिक परिवार बेटियों की पढ़ाई और भविष्य पर ध्यान दे रहे हैं।
0: लेकिन दोस्तों, केवल योजनाएं और कानून बना देने से बदलाव नहीं आता है। असली बदलाव तब आता है जब समाज अपनी सोच बदलता है।
1: बिल्कुल सही, अगर घर में बेटा और बेटी दोनों को समान प्यार, समान शिक्षा और समान अवसर मिले तो समाज अपने आप बदलने लगता है।
0: दोस्तों, बात करते हैं कि कुल जनसंख्या लिंग अनुपात क्या है। NFSH 5th के द्वारा 2019 और 21 के रिकॉर्ड्स देखें तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संरक्षण में भी प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाओं का रिपोर्ट आई है। ग्रामीण बनाम शहरी की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में यह अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं आई गई है।
1: इसी के साथ भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लिंग अनुपात में भारी भिन्नता पाई जाती है। केरल लगातार 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं के लिंग अनुपात के साथ अग्रणी स्थान पर है और उसके बाद पुडुचेरी का स्थान आता है। दमन और दीव 618 और दादरा और नागर हवेली 774 के साथ लिंग अनुपात पे हैं।
0: युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होते हैं, इसलिए समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की जिम्मेदारी भी युवाओं पर है।
1: अगर आज का युवा यह तय कर ले कि वह बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं करेगा तो आने वाले वर्षों में

जिस घर में बेटी मुस्कुराती है वहाँ खुशियाँ खिल जाती है, जिस समाज में नारी का सम्मान हो वहाँ तरक्की खुद ब खुद चली आती है। दोस्तों, भारत आज दुनिया के सबसे तेज़ी से आगे बढ़ते देशों में से एक है। विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, खेल और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हमारा देश लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। लेकिन किसी भी देश का विकास तभी पूर्ण माना जाता है जब वहाँ महिलाओं को और पुरुषों को

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव, जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: समुद्र की गहराइयों में न जाने कितने राज छिपे हैं, आसमान की ऊंचाइयों में न जाने कितनी कहानियां खो गई है।

0: कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें समय भी नहीं सुलझा पाता। कल्पना कीजिए चारों ओर अथाह प्रशांत महासागर, आसमान में उड़ता एक विमान, रेडियो पर आती एक कमज़ोर सी आवाज़, और फिर अचानक सन्नाटा।
1: एक ऐसा सन्नाटा जो आज लगभग 90 वर्षों के बाद भी टूटा नहीं है। एक ऐसा रहस्य जिसने वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और खोजकर्ताओं को दशकों तक उलझाए रखा।
0: आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े रहस्यमय मामलों में से एक, अमेलिया ईयरहार्ट की आखिरी उड़ान की।
1: 24 जुलाई सन 1897, अमेरिका में जन्मी एक लड़की जिसने रोमांच को पसंद किया। उस दौर में जब महिलाओं के लिए विमान उड़ाना लगभग असंभव माना जाता था, तब अमेलिया ईयरहार्ट ने आसमान को अपना साथी बना लिया।
0: उन्होंने विमान उड़ाना सीखा, रिकॉर्ड बनाए और फिर 1932 में अकेले अटलांटिक महासागर पार करके इतिहास रच दिया।
1: दुनिया का चक्कर लगाने का उनका सपना था, और इसी के साथ सन 1937 में अमेलिया ने घोषणा की कि वे विमान से पूरी तरह दुनिया का चक्कर लगाएंगी। उसी के साथ एक अनुभवी नेविगेटर भी साथ में थे, फ्रेड नूनन।
0: सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि एक ऐसा रहस्य उनका इंतज़ार कर रहा है जो आने वाले दशकों तक दुनिया को परेशान करेगा। 2 जुलाई 1937, वह दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। अमेलिया और फ्रेड न्यूनन न्यू जिनी से उड़ान भर चुके थे। उनका अगला लक्ष्य था हाउलैंड आइलैंड, जो प्रशांत महासागर के बीच स्थित एक छोटा सा द्वीप था।
1: उड़ान के दौरान रेडियो पर अमेलिया की आवाज़ आई, ईंधन कम होता जा रहा है, द्वीप दिखाई नहीं दे रहा, और फिर रेडियो हमेशा के लिए शांत हो गया। क्या विमान समुद्र में गिर गया? क्या वे रास्ता भटक गई? क्या वे किसी अचानक या अनजान द्वीप पर उतर गई?
0: अमेरिका ने उस समय का सबसे बड़ा खोज अभियान चलाया, लेकिन न विमान मिला, न अमेलिया और न ही फ्रेड न्यूनन।
1: पहला सिद्धांत समुद्र में ईंधन खत्म होने के कारण गिर जाना। दूसरा सिद्धांत ये था कि किसी निर्जन द्वीप जैसे नुकुरो मोरो पर उतरना। तीसरा, किसी विदेशी क्षेत्र में पकड़े जाना। ये कुछ प्रमुख सिद्धांत थे जो दर्शाते हैं कि शायद अमेलिया कहीं खो गई।
0: आज लगभग 9 दशक बीत चुके हैं। अमेलिया ईयरहार्ट की कहानी सिर्फ एक विमान के गायब होने की कहानी नहीं है, बल्कि यह साहस और रहस्य की एक अमर गाथा है।
1: शायद भविष्य में कोई नई खोज इस रहस्य का जवाब दे दे, लेकिन अमेलिया का नाम हमेशा दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में याद रखा जाएगा।

0: बर्फ से ढके पहाड़, शांत वादियाँ और प्रकृति की अनमोल छटा, जहाँ हर दृश्य एक तस्वीर जैसा लगे, वहीं बसता है प्रकृति का सच्चा जादू। दोस्तों, भारत अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे कई राष्ट्रीय उद्यान हैं और जो वन्य जीवों और प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक खास राष्ट्रीय उद्यान हेमीज नेशनल पार्क की।
1: बिल्कुल हर्षित, हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित हेमीज नेशनल पार्क अपनी प्राकृतिक सुंदरता और दुर्लभ वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। यह पार्क प्रकृति और वन्य जीवन का एक अनमोल खजाना माना जाता है।
0: हेमीज नेशनल पार्क भारत के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी।
1: यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और ठंडा रेगिस्तानी वातावरण इसे अन्य राष्ट्रीय उद्यानों से अलग बनाता है।
0: दोस्तों, हेमीज नेशनल पार्क की सबसे खास बात इसकी प्राकृतिक सुंदरता है। यहां दूर दूर तक फैले बर्फीले पहाड़ और शांत वातावरण मन को सुकून देते हैं।
1: यहां की ऊंचाई लगभग 3000 मीटर से लेकर 6000 मीटर से भी अधिक है। इतनी ऊंचाई पर मौजूद यह क्षेत्र प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है।
0: गर्मियों के मौसम में यहाँ की घाटियाँ रंग बिरंगे फूलों से सज जाती है, जबकि सर्दियों में पूरा इलाका बर्फ की सफ़ेद चादर से ढक जाता है।
1: हेमीज नेशनल पार्क को सबसे अधिक पहचान दिलाने वाला जीव है स्नो लेपर्ड, जिसे हिंदी में हम हीम तेंदुआ कहते हैं।
0: स्नो लेपर्ड दुनिया के सबसे दुर्लभ और रहस्यमयी वन्य जीवों में से एक माना जाता है। इसे देख पाना आसान नहीं होता, क्योंकि यह बर्फीले पहाड़ों में छिपकर रहना पसंद करता है,
1: और इसी वजह से हेमीज नेशनल पार्क को कई लोग स्नो लेपर्ड की राजधानी भी कहते हैं।
0: नेशनल पार्क विजिट करने का सही समय अब आपको बताते हैं। मई से सितंबर अगर आपको सामान्य पर्यटन, ट्रैकिंग और प्राकृतिक सौंदर्य देखने के लिए जाना चाहते हैं, तो यदि आपको मुख्य उद्देश्य है कि स्नो लेपर्ड ही देखना है, तो नवंबर से मार्च, विशेषकर जनवरी मार्च, इस समय लेपर्ड निचली घाटियों में आता है।
1: और आइए बताते हैं कि यहाँ पहुँचा कैसे जा सकता है। तो सबसे आसान तरीका है थ्रू फ्लाइट। नियरेस्ट एयरपोर्ट्स में कुशोक बकुला है, रिम्पोचे एयरपोर्ट है, दिल्ली, जम्मू और श्रीनगर के साथ श्रीनगर भी नियरेस्ट एयरपोर्ट्स में आते हैं। साथ ही जो सबसे करीबी रेलवे स्टेशन है वो है जम्मू तवी रेलवे स्टेशन।
0: बाय रोड भी आप जा सकते हैं। जम्मू से लेह तक सड़क मार्ग से लगभग 700 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है, और मनाली टू लेह हाईवे तो है ही, जो कि जून से सितंबर तक खुला रहता है। श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर से लेह हाईवे जो है मई से नवंबर में खुला रहता है। दोस्तों, आज के समय में वन्य जीव

0: रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं बल्कि एक दूसरे को सहारा बनने से और मजबूत होने से है। जब परिवार का कोई सदस्य दूर रहकर अपने घर की खुशियों के लिए मेहनत करता है तो उसका योगदान अनमोल बन जाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस की।
1: हर साल 16 जून यानी आज के दिन ये दिवस मनाया जाता है।
0: इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2015 में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD द्वारा की गई थी। बाद में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे मान्यता दी। इसका उद्देश्य उन करोड़ों प्रवासी कामगारों के योगदान को सम्मान देना है जो अपने परिवारों से दूर रहकर काम करते हैं।

0: और अपनी कमाई का एक हिस्सा घर भेजते हैं।
1: दुनिया भर में लाखों परिवार ऐसे हैं जिनका जीवन इन पैसों की मदद से चलता है। यह दिवस परिवार के प्रति समर्पण और जिम्मेदारी का प्रतीक है।
0: परिवार प्रेषण का अर्थ है वह धनराशि जो कोई व्यक्ति को दूसरे शहर या देश में काम करते हुए अपने परिवार को भेजता है।
1: यह धन केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि परिवार के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी का प्रतीक है।
0: लाखों लोग घर से दूर रहकर काम करते हैं। इन पैसों से शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरतें पूरी होती हैं।
1: भारत दुनिया में सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाले देशों में शामिल है, जिससे परिवारों के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है।
0: इसके पीछे एक बड़ा त्याग है, अपने से दूर रहकर मेहनत करना।
1: डिजिटल तकनीक ने आज धन भेजना बहुत आसान कर दिया है और सुरक्षित भी, जिससे परिवारों तक सहायता तुरंत पहुंचती है।
0: यह दिवस हमें याद दिलाता है कि परिवार का अर्थ सहयोग, जिम्मेदारी और प्रेम है।
1: जो लोग परिवार की खुशी के लिए दूर मेहनत करते हैं उनका योगदान अमूल्य है।
0: दूरी चाहे कितनी भी हो जाए अपनों के साथ बना रहता है। मेहनत से कमाया हर एक रुपया परिवार के सपनों में नया रास्ता देता है। विशाल समुद्र की गहराई की बात करते हैं दोस्तों, तो आज है वर्ल्ड सी टर्टल डे, समुद्री कछुआ। दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे।
1: बिल्कुल हर्षित, हर साल 16 जून को यह दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य इन प्राचीन जीवों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है।
0: समुद्री कछुए पृथ्वी के सबसे बड़े या सबसे प्राचीन जीवों में से हैं, जो लगभग 10 करोड़ वर्षों से मौजूद है। ये समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेषकर समुद्री घास और प्रवाल भित्तियों को यानी कोरल रीफ्स के संरक्षण में।
1: आज समुद्री कछुए कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिनमें प्लास्टिक प्रदूषण सबसे खतरनाक है। कछुए प्लास्टिक को भोजन समझकर खा लेते हैं, जिससे उनकी जान को खतरा होता है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन और तटीय विकास भी इनके अस्तित्व के लिए खतरा है।
0: दोस्तों अब ये बता दें कि हम क्या कर सकते हैं। हम प्लास्टिक का कम उपयोग करके समुद्र तटों को स्वच्छ रखकर और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहकर इनका जीवन सुरक्षित बना सकते हैं। छोटे छोटे प्रयास मिलकर ही तो बड़ा बदलाव लाते हैं।
1: समुद्र की शान बचाएं, समुद्र कछुओं को सुरक्षित बनाएं, स्वच्छ पर्यावरण का संदेश फैलाएं, प्रकृति का संतुलन मिलकर बचाएं।

0: हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे लोग उसे याद रखें। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ की जिन्होंने अपने टैलेंट, हार्डवर्क और डेडिकेशन के दम पर दुनिया में एक अलग पहचान बनाई। साइंस से लेकर सिनेमा, फ्रीडम स्ट्रगल से लेकर स्पोर्ट्स तक, इन लोगों की अचीवमेंट्स वाकई इंस्पायरिंग है।
1: तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे साइंटिस्ट से जिन्होंने इंडियन साइंस को एक नई डायरेक्शन दी।
0: आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय को फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री कहा जाता है, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक वैज्ञानिक की नहीं थी बल्कि वे एक शिक्षक, उद्योगपति, लेखक और समाज सुधारक भी थे।
1: आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय का जन्म 2 अगस्त 1861 को वर्तमान बांग्लादेश के खुलना जिले में हुआ था। बचपन से ही उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और आगे चलकर उच्च शिक्षा के लिए स्कॉटलैंड की एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी पहुंचे।
0: वहां उन्होंने केमिस्ट्री में उच्च शिक्षा प्राप्त की और अपने शोध कार्यों से वैज्ञानिक जगत का ध्यान आकर्षित किया। भारत लौटने के बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में अध्यापन शुरू किया और कई प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को तैयार किया।
1: उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी मर्क्यूरस नाइट्राइट नामक केमिकल कंपाउंड की खोज। इस खोज ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय में पहचान दिलाई, लेकिन उनका सपना सिर्फ शोध तक नहीं था दोस्तों, उनका था सपना भारत के वैज्ञानिक को और भारत के वैज्ञानिक रूपों को आत्मनिर्भर बनाना।
0: इसी सोच के साथ उन्होंने बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना की, जिसे भारत की पहली स्वदेशी फार्मास्यूटिकल कंपनी माना जाता है। उस समय विदेशी कंपनियों का दबदबा था, लेकिन उन्होंने भारतीय उद्योग को बढ़ावा देने का साहसिक कदम उठाया।
1: आचार्य रॉय का मानना था कि विज्ञान सिर्फ प्रयोगशाला तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। यही कारण था कि उन्होंने शिक्षा और उद्योग के साथ दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश करी।
0: उनके योगदान को देखते हुए उन्हें कई सम्मान मिले। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर CIE और बाद में नाइटहुड से सम्मानित किया, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान अपने छात्रों और देश की प्रगति थी।
1: आज जब हम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो याद रखना चाहिए कि आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने यह सोच एक सदी पहले ही अपनाई थी। उन्होंने दिखाया कि विज्ञान, शिक्षा और उद्योग मिलकर किसी भी देश का भविष्य बदल सकते हैं। साइंस के बाद बात करेंगे अब एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने अपनी काबिलियत और करियर को देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया।
0: चितरंजन दास। दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई

0: चितरंजन दास सिर्फ एक सफल वकील बनकर नहीं रहना चाहते थे। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब उन्होंने अपनी आरामदायक जीवन और बड़ी आय को पीछे छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह खुद को समर्पित किया।
1: उन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का खुलकर समर्थन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी किया और स्वदेशी को बढ़ावा दिया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने कई कीमती कपड़े और वस्तुओं तक त्याग दी थी।
0: 1923 में उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी का उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के भीतर रहकर उसकी नीतियों का विरोध करना और भारतीयों की आवाज़ को मजबूती से उठाना।
1: उनकी नेतृत्व क्षमता और राष्ट्रभक्ति के कारण लोग उन्हें देशबंधु कहने लगे। यह उपाधि उन्हें किसी सरकार ने नहीं बल्कि जनता ने अपने प्यार और सम्मान से दी थी।
0: चितरंजन दास महिलाओं की शिक्षा, सामाजिक सुधार और गरीबों के उत्थान के भी समर्थक थे। वे मानते थे कि आज़ाद भारत तभी मजबूत बनेगा जब समाज का हर वर्ग आगे बढ़ेगा। दुर्भाग्य से 1925 में मात्र 55 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, लेकिन इतने कम समय में भी उन्होंने भारतीय राजनीति और स्वतंत्रता आंदोलन पर अमिट छाप छोड़ दी।
1: आज भी इतिहास उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद करता है जिसने अपने ज्ञान, नेतृत्व और त्याग से देश की आज़ादी की लड़ाई को नई दिशा दी।
0: उनकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए किए गए योगदान में होती है।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आजादी के संघर्ष से अब चलते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ, जहां एक

0: आई डिस्को डांसर, जो गाना है आई एम अ डिस्को डांसर, वो दुनिया भर में मशहूर हुआ।
1: अगर उनके पुरस्कारों की बात करें तो मिथुन दा को 3 नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिल चुके हैं, जो कि पहला मृग्या के लिए, दूसरा ताहेदार कथा के लिए और तीसरा जो है स्वामी विवेकानंद फिल्म के लिए। उनके अभिनय के लिए मिला है इस स्वामी विवेकानंद के लिए। इसके अलावा उन्हें कई फिल्म फेयर अवार्ड्स, लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड और भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए अनेक सम्मान भी प्राप्त हुए।
0: हाल ही में भारत सरकार ने उन्हें देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी नवाजा है। यह सम्मान उन्हें दशकों लंबे योगदान और भारतीय सिनेमा पर उनके प्रभाव को दर्शाता है। साथ ही 2022 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला था फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा।
1: आप यकीन नहीं करेंगे, 350 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं मिथुन दा। उनकी सफलता का राज सिर्फ उनका अभिनय नहीं बल्कि उनकी मेहनत, अनुशासन और कभी हार न मानने वाला रवैया है।
0: उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि प्रतिभा के साथ अगर लगातार मेहनत और आत्मविश्वास जुड़ जाए तो सफलता जरूर मिलती है।
1: अब मिलते हैं एक ऐसे फिल्म मेकर से जिनकी फिल्म सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है।
0: इम्तियाज़ अली, ये बॉलीवुड के सबसे क्रिएटिव डायरेक्टर्स और राइटर्स में से एक माने जाते हैं। उनकी फिल्म्स की कहानियाँ आम जिंदगी से जुड़ी होती है, इसलिए ऑडियंस उनसे कनेक्ट कर पाती है।
1: उन्होंने जब वी मेट, रॉक स्टार, हाईवे, तमाशा और लव आजकल जैसी यादगार फिल्में दी हैं। इन फिल्मों ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की बल्कि ऑडियंस के दिलों में भी जगह बनाई है।
0: इम्तियाज़ अली को कई फिल्मफेयर अवार्ड्स और इंडस्ट्री ऑनर्स मिल चुके हैं। उनकी खास बात यह है कि वो फिल्म्स जो हैं उनकी जो फिल्म्स हैं वो कैरेक्टर्स को बहुत ही रियलिस्टिक और इमोशनल तरीके से पेश करते हैं।
1: बिल्कुल, इसी वजह से आज के यंग फिल्म मेकर्स भी उनके काम से इंस्पिरेशन लेते हैं। तो आइए अब सुनते हैं उनकी ही चर्चित मूवी का एक गीत, जो अब सुनेंगे हम मिथुन दा का एक गीत डिस्को डांसर मूवी से।

0: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक में। अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फिल्मों की दुनिया से अब चलते हैं स्पीड और एडवेंचर की दुनिया में, जहां एक रेसर ने रिकॉर्ड्स की बारिश कर दी।
4: जियाकोमो अगोस्टिनी इटली के एक लेजेंडरी मोटरसाइकिल रेसर हैं और उन्हें मोटर स्पोर्ट्स हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट राइडर्स में गिना जाता है।
3: उन्होंने अपने करियर में 15 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप्स और 122 ग्रैंड प्रिंस विंस हासिल की है। ये रिकॉर्ड्स आज भी उनकी ग्रेटनेस को दिखाता है।
4: 1960 और 70 के दशक में उनका नाम मोटरसाइकिल रेसिंग का पर्याय बन गया था। उनकी स्पीड, कंसिस्टेंसी और फियरलेस राइडिंग स्टाइल ने उन्हें एक लेजेंड का दर्जा दिलाया।
3: आज भी मोटरस्पोर्ट्स के नए प्लेयर्स उनके रिकॉर्ड्स और अचीवमेंट्स को बेंचमार्क के रूप में देखते हैं।
4: और अब आखिरी पर्सनालिटी जिन्होंने अपने शब्दों और विचारों से लोगों के दिल और दिमाग पर गहरा असर छोड़ा।
3: येन ज़ेलेज़नी अपने लिटरेरी और इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशंस के लिए जाने जाते हैं। उनकी राइटिंग्स में सोसाइटी, कल्चर और ह्यूमन इमोशंस का बहुत सुंदर वर्णन मिलता है।
4: उन्होंने अपने लेखों के जरिए लोगों को नए नज़रिए से सोचने के लिए प्रेरित किया। उनकी रचनाएं आज भी रीडर्स के बीच पसंद की जाती है और लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन का काफ़ी बड़ा सोर्स है।
3: उनका काम हमें ये सिखाता है कि शब्दों की ताकत कितनी बड़ी हो सकती है और कैसे एक लेखक समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ सकता है।
4: तो दोस्तों, आज हमने कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ के बारे में जाना जिन्होंने अलग अलग फील्ड्स में एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स हासिल की हैं।
3: इन सभी लोगों की कहानी हमें एक बात ज़रूर सिखाती है, चाहे फील्ड कोई भी हो, डेडिकेशन, हार्डवर्क और पैशन आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है।

0: दोस्तों, अब बात करते हैं स्पोर्ट्स अपडेट की। और स्पोर्ट्स अपडेट में सबसे पहले हम आपको बताते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बारे में। आज मैच ईरान वर्सेस न्यूजीलैंड हुआ, जो कि ड्रॉ हुआ। बेल्जियम वर्सेस इजिप्ट भी हुआ, जो भी ड्रॉ था। और सऊदी अरेबिया वर्सेस लेगवेरे, जो भी ड्रॉ था। और वुमेंस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप की बात करें तो न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका में जो कि आज मैच होगा 7 बजे, इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड जो कि होगा 11 बजे।
1: तो क्रिकेट प्रेमी जो भी हैं यहाँ पर सुन रहे हैं हमें, वो ये मैच देखना ना भूलें। साथ ही आज की तारीख है 16 जून और 16 जून का दिन इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का गवारा है। तो आइए जानते हैं आज के दिन की कुछ खास बातें।
0: सबसे पहले बात भारत की। साल 1606 में सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी ने धर्म और मानवता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उनकी शहादत को सिख इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है।
1: और इसी के साथ हम अगर शेयर मार्केट की बात करें तो सेंसेक्स आज 76,808.48 पर बंद हुआ 544 अंकों की बढ़त के साथ। वहीं निफ्टी 50 आज 23,989.15 पर बंद हुआ 136 अंकों की बढ़त के साथ। और वहीं एक डॉलर की कीमत 94.70 रुपीज़ देखने को मिली।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मैं था आपका रेडियो दोस्त हर्षित, और मेरे साथ थे
1: वंदना।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर का विविध भारती केंद्र एफएम रेडियो लेक सिटी। समय होने चला है 6 बजे का और अब ये समय है समाचार सुनने का। तो आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, जहाँ से हम सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन की यात्रा पर फ्रांस के एवियां शहर पहुंच गए हैं। एवियां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी को अधिक सतत और समृद्ध बनाने के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की लगातार ये 7वीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे। इस बीच शिखर सम्मेलन में आज अमरीका के सहयोगी देशों ने 4 साल से अधिक समय से चल रहे यूक्रेन युद्ध को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में फिर से प्राथमिकता दिलाने के लिए काम किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने कहा कि वे श्री ट्रंप को यूक्रेन का समर्थन जारी रखने और शांति समझौते तक पहुंचने में मदद के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए मनाने का प्रयास करेंगे। अमरीका द्वारा यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता में कटौती के बाद फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े देश हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की भी सुबह की कार्य बैठक में G7 नेताओं के साथ शामिल हुए, लेकिन वार्ता जल्दी समाप्त हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में

0: संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान यस बैंक के ऋणों के कथित धोखाधड़ीपूर्ण आवंटन के संबंध में मुंबई, खंडाला और नई दिल्ली में 17 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। निदेशालय ने सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, सुरक्षा रियल्टी लिमिटेड, ख्याति रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, उनके निदेशकों और कर्मचारियों के साथ साथ यस बैंक के पूर्व कर्मचारी के परिसर की तलाशी ली। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है जिसे ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि दार्जिलिंग में गोरखा समुदाय के दीर्घकाल से लंबित मुद्दों का समाधान भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर किया जाएगा। दार्जिलिंग में कुर्सियोंग में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन में कथित भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी और दोषियों के विरूद्व कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमरीका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमरीका में ग्रुप आई के मुकाबले में आज फ्रांस और सेनेगल आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। एक अन्य मुकाबले में नॉर्वे का सामना इराक से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार तड़के 3:30 बजे से खेला जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम एचआईएफ हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को हराया। भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर है। अगला मुकाबला भारत का उरुग्वे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी उदयपुर का विविध भारती केंद्र है। एफएम रेडियो लेक सिटी, मैं हूं आपके साथ में डिम्पी। और अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के आज के इस अंक को हम केंद्रित कर रहे हैं एक विशेष हिंदी सिनेमा जगत की शख्सियत पर। कुछ सितारे आसमान में चमकते हैं और कुछ सितारे धरती से उठकर आसमान तक पहुंचते हैं। एक ऐसा कलाकार जिसने अपनी कहानी केवल सफलता की कहानी नहीं बनाई बल्कि संघर्ष की तपस्या कही जाती है उनकी कहानी। वह कभी महानगर की चमक दमक का हिस्सा नहीं था। उसके पास कोई फिल्म की विरासत नहीं थी। उसके पास था तो बस एक सपना, एक जुनून और एक विश्वास कि मेहनत की रोशनी किसी भी अंधेरे को मिटा सकती थी। आज इस विशेष प्रस्तुति में हम चलेंगे उस सफर पर जहां एक लड़का किस प्रकार से गौरांग चक्रवर्ती से पूरे भारत का प्यारा मिथुंदा बन गया।
2: दिखने वाली कलाकार अक्सर हमको

जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती के बारे में, जिनका आज जन्मदिवस है। कोलकाता की गलियों में पला बढ़ा एक युवा, जिसके जीवन में संघर्ष केवल आर्थिक नहीं था, बल्कि भावनात्मक और वैचारिक

संघर्ष भी रहा। और जब उन्होंने फिल्म सिनेमा में कदम रखा तो शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि यही युवा आने वाले वर्षों में भारत के सबसे बड़े जनप्रिय सितारों में से एक बनेगा।

फिल्म की थी जो कि शुरुआती फिल्म उनकी कहलाई, जिसका नाम था मृगया, और उसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये शुरुआत भी बता देती है कि एक कलाकार सिर्फ केवल एक नृत्य करने वाला सितारा नहीं होगा, बल्कि एक संवेदनशील अभिनेता भी है।

कुछ कलाकार लोकप्रियता पाने के बाद गंभीर अभिनेता बनते हैं, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने अपने पहले ही कदम पर अभिनय की ऊंचाइयां छू ली थी। उन्होंने एक

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: शायद मिथुन चक्रवर्ती की सबसे बड़ी पहचान ये नहीं कि वे सुपरस्टार बने, बल्कि ये सुपरस्टार बनने के बाद भी आम आदमी की पहचान अपने भीतर उन्होंने जीवित रखी। उनका संघर्ष, उनकी सादगी और नए कलाकारों के प्रति सहयोग और जनता से जुड़ाव, यही एक कलाकार को अमर बना देता है।

नई पीढ़ी के लिए मिथुन दा केवल फिल्म सितारे नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक बनकर लौटे। टेलीविजन के लोकप्रिय नृत्य कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति ने उन्हें एक नया नाम दिया, यानी डांस के महागुरु कहलाने लगे। उनके संवाद और उनकी मुस्कान नए कलाकारों को दिया गया, उनका उत्साह और उनका स्नेह घर घर तक उन्हें ले गया और सिनेमा का नायक अब मंच पर खड़े सपने देखने

0: पहले युवकों का गुरु बन चुका था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नृत्य प्रस्तुति के बारे में मिथुन चक्रवर्ती क्या कहते हैं? आइए सुनते हैं प्रसार भारती आर्काइव से उनकी एक ऑडियो क्लिप।
1: मैं डांस वांस नहीं सीखा, यू कैन कॉल मी ए रोड डांसर। पूजा में जब जाते हैं ना, जैसे यहाँ गणपति में जाते हैं, हमारे वहाँ दुर्गा पूजा में जाते हैं, और बजता रहता है और मैं डांस करता रहता हूँ। एक डांसर को किसी जगह भी तकलीफ नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर डांसर है तो डांसर है, रिदम ऐसी चीज है जो यू नो भरे नहीं जाते, इट इज इनबॉर्न, पैदाइशी चीज है। जब एक मॉडर्न डांसर गेट्स इनटू ए ग्लव्स ऑफ क्लासिकल डांसर, ग्रेस में फर्क नहीं आना चाहिए बट अदाओं में शायद कुछ फर्क आ जाए। हमने ताता धिंदा करके नहीं आया, हमने जो देखा वो सीखा और उसके बाद अपना स्टाइल बनाया।
0: तो आपने मिथुन दा की डांस की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनी, और आपको बताएं कि उनकी जो डांस की अदायगी थी, इस पर केवल भारत नहीं लेकिन सोवियत संघ के वे एक सांस्कृतिक सनसनी बने, और जब रूस ने भी कहा जिमी जिमी, जी हाँ 1982 में उनकी फिल्म आई थी डिस्को डांसर, और उसका गीत था जिमी जिमी, सीमाओं को पार कर गया। वहाँ विदेशों में भी इस गाने की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सुपरस्टार का खिताब मिलने लगा, और उनकी शैली, उनका नृत्य और उनका साधारण पृष्ठभूमि से उठकर सफलता पाने का जो एक प्रेरणादायी किरदार था, वे सभी को भाने लगा।

तो हम बात कर रहे हैं अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की, और उनके सबसे पहले तो नाम की बात करें तो आपको पता है कि उनका नाम गौरांग चक्रवर्ती था, और वो कैसे मिथुनदा बने ये उन्हीं की जुबान

0: नहीं अभी हम सुनेंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये भी बताएं कि उन्हें 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सबसे पहले उनकी पहली फिल्म यानी कि मृगया के चलते, फिर दूसरी फिल्म जिसमें तहादर कथा के नाम से ये फिल्म आई थी 1993 में, और 1996 में आई फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता वे चुने गए और फिल्म का नाम था स्वामी विवेकानंद। फिर आप देखिए आगे चलते हैं तो फिल्म फेयर पुरस्कारों की बात करें तो अग्निपथ जो कि 1991 में आई थी उसके लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में सम्मानित किया गया उन्हें, और सर्वश्रेष्ठ नकारात्मक भूमिका के लिए जल्लाद फिल्म से उन्हें सम्मानित किया गया। और फिर तो बात ही क्या करें कि पद्म भूषण से वे 2024 में अलंकृत हुए, जिसे तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहा जाता है, और हिंदी सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया वर्ष 2024 में। और इसके लिए मिथुन दा क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी।
1: बहुत बहुत बधाई, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है आपको, लेकिन

0: यादें, मतलब ये सफर रंगीन सफर नहीं था मेरे लिए, बहुत ही तकलीफ का सफर था, बहुत ही तकलीफ, हर मोड़ पे तकलीफ, हर चीज से लड़ाई। उसके बाद जब ये पुरस्कार मिला तो ऐसा लगा कि भगवान आप कोई शिकायत नहीं। मैं हर वक्त शिकायत तो करता ही था कि क्यों आप नाम भी दे रहे हैं, शोहरत भी दे रहे हैं और साथ साथ इतनी तकलीफ भी क्यों दे रहे हैं। हर तरह की तकलीफ होती है, सिर्फ नाम और शोहरत से तो सब कुछ नहीं होता, बहुत बहुत सारी चीज़ें भी साथ साथ होती है। पूछता था कभी कभी क्यों, व्हाई, लेकिन और नहीं, अब नहीं, अब कोई शिकायत नहीं।
1: जी
0: बोलता हूँ कि थैंक यू सो मच
1: जी
0: मेरे मोटे बाबा, थैंक यू।
1: लेकिन आप देखें तो शुरुआत करना चाहूंगी उस वक्त से जब आपको भी लगा होगा कि कुछ बनना चाहता हूं मैं। वैसे आपका नाम तो गौरांग चक्रवर्ती था ना, तो फिर आपने ये नाम फिल्मों में इस्तेमाल नहीं किया?
0: ये ऐसा नहीं कि मैं कॉलेज में, वैसे भी मैं क्वाइट ए पॉपुलर बॉय, यू नो, फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता था एंड रियली आई यूज्ड टू बी ए गुड प्लेयर। देन सब जगह ही मेरा एक हीरोइज्म था, एक सब मुझे लीडर ही समझते थे। फिर कॉलेज में सब मुझे मिठू मिठू करके बुलाते थे, सो मिठू से मिठा हुआ, मिठा से मिठुन हो गया। सो मिठुन मीन्स

आज जिनके आने पर लोगों की तालियां नहीं रुकती, एक समय ऐसा था जब मुंबई के संघर्ष के दिनों में उनके पास रहने के लिए स्थायी ठिकाना नहीं था। कठिन परिस्थितियों में उन्होंने फुटपाथ पर कई रातें बिताई, कई बार अस्वीकार किए गए और कई बार काम हाथ से निकल गया। जी हाँ, मिथुन चक्रवर्ती की जब बात कर रहे हैं तो जब उन्होंने इस फिल्मी दुनिया में कदम रखा था तो उनकी कुछ इस तरह की परिस्थितियां बन चली थी कि वे कई बार आलोचनाओं का शिकार होते थे। कई बार उन्हें कहा गया कि उनके रंग सांवला होने की वजह से वे काम नहीं कर पाएंगे और ऐसी कई सारी कठिन परिस्थितियाँ आई, लेकिन उन्होंने संघर्ष नहीं छोड़ा, हार नहीं मानी और आज हम सभी गौरांग चक्रवर्ती को मिथुन चक्रवर्ती के नाम से जानते हैं।

0: हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है।

0: तो कौन मांगता?
1: जॉनी जॉनी जॉनी का दिल तुम पे आया जॉनी, तुझको ही माना मैंने अपना हानी, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान।

0: भैया।
1: थैंक यू हनी, थैंक यू।
0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम पैंड्रा नहीं मांगता।
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली।

0: ये तो कौन मांगता?
1: जानी जानी चुले का दिल तुम पे आया जानी, तुझको ही माना मैंने अपना हानी, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान।

0: हमको मिलने नहीं मांगता, हमको लेने नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम पैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
2: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

समय ने कई बार मिथुन चक्रवर्ती को एक डांसिंग स्टार के रूप में देखा, लेकिन हर बार उनका अभिनय इस धारणा को तोड़ देता था।

सब कुछ कर सकती है, हम क्या तुमसे डरती है।

अंतर जाति बारी बारी हम तुम सबकी बैंड बज जाती। आई एम कृष्ण अयम में आई एम नारियल पानी वाला, आई एम नारियल पानी वाला, आई एम नारियल पानी वाला, नाने कृष्णन अयर यम ये तेंगिल काय डिस्को नोड़े।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब

0: फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
1: हेलो मम्मा,
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
5: गली गली आवाज ये जाए, हर घर अपनी गणना करवाए, मिलकर लिखेंगे कल का नया अध्याय। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
6: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
7: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027, बेहतर भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
8: मिथुन चक्रवर्ती की केवल कहानी ही नहीं बल्कि अभिनेता के रूप में ही नहीं बल्कि उन्होंने एक अपनी दास्तान लिखी है जो कि स्वयं बनकर खड़े हुए हैं। कोलकाता की गलियों से लेकर भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार तक की यह यात्रा संघर्ष, साहस, परिश्रम और आत्मविश्वास की अमर गाथा है। मिथुन चक्रवर्ती उस विश्वास की कहानी है जो कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी कठिन हो लेकिन संकल्प और प्रतिज्ञा हो तो अपनी राह वे स्वयं बना लेते हैं। उन्होंने हमें नृत्य का नया अंदाज दिया तो अभिनय की गहराई भी दिखाई, मनोरंजन को नई ऊंचाइयां दी और सबसे बढ़कर ये सिखाया कि एक साधारण इंसान भी अपने सपनों की उड़ान से असाधारण बन सकता है। समय बदला, पीढ़ियां बदली, सिनेमा की भाषा बदली, लेकिन मिथुन दा के प्रति लोगों का प्रेम कभी नहीं बदला। उनके जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार शायद कोई सम्मान हो सकता है, लेकिन करोड़ों लोगों के दिलों में उनके लिए जो प्रेम बसा, जो अपनापन बसा, वो उनके लिए सर्वोच्च पुरस्कार, सर्वोच्च सम्मान है। आज भी केवल एक सितारा नहीं बल्कि परिवार का एक अपना सदस्य मानते हैं कई लोग मिथुन चक्रवर्ती को।

ていこう。और एक गीत तो सिनेमा में ऐसा ही आया जिसने मिथुन चक्रवर्ती की पहचान सबके अंदर केवल इस एक नाम से बदल दी। अपनी कला, संघर्ष, यादों और प्रेरणा के रूप में सदैव जीवित रहने वाले मिथुन चक्रवर्ती ने एक गीत के टाइटल को ही अपना दूसरा नाम बना दिया। आज भी यदि कोई संगीत का कार्यक्रम होता है तो उसमें एक व्यक्ति इस गीत पर नृत्य करता हुआ अवश्य नजर आ जाता है। आइए उनकी इस अद्भुत यात्रा को प्रणाम करते हैं और सुनते हैं उनका

जब एक कलाकार 5 दशकों तक करोड़ों दिलों में जीवित रहे तो उनके लिए असंख्य पुरस्कार सम्मान केवल वे सम्मान नहीं रह जाते लेकिन वे राष्ट्र की ओर से उन्हें प्रणाम बन जाते हैं। इसीलिए सच है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को उनके अभिनेता के रूप में ही मिला, साथ ही साथ वे जिस तरह के व्यक्तित्व रहे एक पूरी शख्सियत को ये सम्मान मिला है। मिथुन चक्रवर्ती एक नाम, एक सफर, एक प्रेरणा और भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम अध्याय का एक अमिट हस्ताक्षर। आज उनके जन्म दिवस पर आकाशवाणी का पूरा परिवार और सभी श्रोता हम सभी मिलकर आइए उन्हें विश करते हैं।

एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी उदयपुर का विविध भारती केंद्र है। एफएम रेडियो लेक सिटी मैं थी अभी तक आपके साथ में डिम्पी, और अब समय हो चला है विविध भारती की राष्ट्रीय सेवा से जुड़ने का, जहां से हम सुनेंगे शेष कार्यक्रम। सबसे पहले होगा कार्यक्रम जयमाला, आइए जुड़ते हैं विविध भारती की राष्ट्रीय सेवा से।

0: इस देशभक्ति गीत को आवाज दे रहे थे शंकर महादेवन, सोनू निगम, हरिहरन और रूप कुमार। फिल्म थी लक्ष्य। जावेद अख्तर के बोल थे, संगीत तैयार किया था शंकर एहसान लॉय ने। लीजिए सुनिए सेना पर आधारित गीत, स्वर गीत और संगीत कैलाश खैर का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।
2: दम्भ

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

भारतीय सेना। अभी आपने भारतीय सेना पर आधारित गीत सुना, स्वर गीत और संगीत कैलाश खेर का था। लीजिए सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक के स्वर में दिलवाले फिल्म का गीत। समीर के लिखे इस गीत की धुन बनाई है नदीम शवन ने।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी

0: बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
0: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जयमाला कार्यक्रम में अब हम फौजी भाइयों को सुनवा रहे हैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस फिल्म का गीत, आवाजें पामेला चोपड़ा, मनप्रीत कौर और साथियों की, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार जतिन ललित।

अगली पेशकश लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में, बोल जावेद अख्तर के संगीत शिवहरी का, फिल्म का नाम सिलसिला।

जयमाला कार्यक्रम में आप सभी फौजी भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए सुनिए द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। इस फिल्म का गीत A.R. रहमान और सुखविंदर सिंह की आवाजों में, समीर के लिखे इस गीत की धुन बनाई है A.R. रहमान ने।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: अब सुनिए गुलशन बावरा का लिखा गीत, धुन बनाई है आरडी बर्मन ने, आवाजें किशोर कुमार, भूपिंदर, सपन चक्रवर्ती और आरडी बर्मन की। फिल्म का नाम है सत्ते पे सत्ता।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: आगे सैलरी? नहीं झुमके ना, पहले बचत,
2: पहले झुमके।
1: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
2: लेकिन झुमकों का क्या,
1: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
6: गली गली आवाज ये जाए, हर घर अपनी गणना करवाए, मिलकर लिखेंगे कल का नया।

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: इस गीत के साथ ही जयमाला कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। इंद्रधनुष के अंतर्गत लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम पॉप एक्सप्रेस। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं यासिर देसाई के गाए गीत से, संगीत चित्रंजन भट्ट का, बोल मनोज यादव के।

पॉप एक्सप्रेस में अब सुनिए सचेत परंपरा के संगीत निर्देशन में उन्हीं का गाया गीत बोल है कुमार के।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

आज के हवा महल कार्यक्रम में झलकी आप सुनने वाले हैं जीभ की तपस्या, लेखिका डॉक्टर कुमारी, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा।

0: आ गए तुम लोग स्कूल से। देखो तो कैसा मुंह सूख जाता है बेचारों का शाम तक।
1: माँ खूब जोर से भूख लगी है।
0: भूख तो लगी ही होगी रानी बेटी को, आज तो तेरी पसंद की चीज बना कर रखी है मैंने, बेसन के लड्डू।
1: सच माँ?
2: माँ मुझे भी खाने को दे, बहुत भूख लगी है।
3: आहा, बेसन के लड्डू कब बना लिए माँ?
0: अरे ये लोग इतने दिन से पीछे पड़े थे, मैंने सोचा बना ही डालूं। तुम लोग एक दो लड्डू खाकर पानी पियो, तब तक मैं गरम गरम पराठे उतार देती हूँ। हाय राम, ये तो आज फिर खाली पड़ा है कटोरदान।
3: क्या माँ, अरे आज फिर कोई लड्डू खा गया?
0: मैं तो तंग आ गई, ये आखिर तमाशा क्या है? परसों गाजर का हलवा बना के रखा था वो कोई खा गया, कल ढेर सारे शक्कर पारे कोई खा गया, और आज बेसन के लड्डू। विनोद तूने लड्डू खाए है?
2: अरे माँ सीधा तो स्कूल से आ रहा हूँ, मैंने तो सूरत भी नहीं देखी उन लड्डुओं की।
3: और मुझे तो मालूम भी नहीं था कि आज बेसन के लड्डू बनने वाले हैं।
1: मैंने भी नहीं देखे माँ।
0: विनोद सच सच बताना, नहीं तो ऐसी सुताई करूंगी कि अक्कल ठिकाने आ जाएगी। बोल तूने खाए है लड्डू?
2: मेरे ऊपर क्यों शक करती हो माँ, मैंने नहीं खाए तुम्हारे लड्डू।
0: तूने नहीं खाए, जैसे भूत प्रेत खा गए ना।
3: इसी ने खाए होंगे माँ, मीठे का तो ऐसा चीटा है चीटा कि खीर के बर्तन में चिपकता है, जैसे उसी में शहीद हो जाएगा।
2: देखो मीरा दीदी झूठे नाम मत लगाना, नहीं तो अभी तुम्हारी पोल खोल दूंगा।
1: अरे जा, क्या पोल खोल देगा, बड़ा आया है।
4: कौन खीर के बर्तन में डूब मरने जा रहा है?
0: ये दूसरे आए लड्डुओं के दीवाने, यही खा गया होगा। ऐसा हाथ से निकला है ये लड़का, न तो माँ बाप का ख्याल और न छोटे भाई बहनों का ख्याल, जम गए होंगे सारे लड्डू अकेले बैठकर राहू की तरह।
2: इसी ने खाए लड्डू माँ, तभी इतना खुश है।
4: लड्डू कैसे भाई, खाए तो नहीं लेकिन अगर बने हो तो जरूर खाऊंगा, और राहू की ही तरह खाऊंगा। क्यों माँ, किस चीज के लड्डू बनाए हैं? बेसन के?
0: हाँ हाँ बेसन के बना के रखे थे, और देवता खा गए उन लड्डुओं को।
4: माँ कहीं बिल्ली बिल्ली तो नहीं खा गई?
0: अरे इल्ली ना बिल्ली, यही खा गया है रमेश, अब झूठ बोलता है।
4: अरे माँ मैं क्यों झूठ बोलने लगा, मैंने खाए ही नहीं। हाँ सुबह जब बेसन भुना जा रहा था ना, तब बड़ी सोंधी सोंधी खुशबू जरूर आ रही थी।
0: पता नहीं इतने सारे बेसन के लड्डू पचा कैसे गया, खुशबू जरूर आ रही थी। ऐसी खबर लूंगी कि याद रखेगा। हाँ
1: माँ तुम तो जबरदस्ती चिल्लाने लगती हो, किसी पर भरोसा तो तुम्हें है ही नहीं। एक बाबूजी को छोड़कर मैंने लड्डू नहीं खाए हैं।
5: खाए हैं, खाए हैं, दादा नहीं खाए।

0: थे, बहन को मारता है, खा लिया पी लिया, ऊपर से धौंस जमा रहा है बेचारी पर। जरा तुझे ख्याल नहीं आया कि छोटे भाई बहनों के लिए भी छोड़ दूं? भूख है कि क्या, बिल्कुल राक्षस का पेट पाया है तूने। अरे कुछ तो माँ बाप के गुण लिए होते, अपने बाबूजी को नहीं देखता? पिछले 7-8 साल से फीकी चाय पी रहे हैं, डायबिटीज के मारे कभी मन नहीं चलाते। और एक तू है, ऐसा थोड़ी ही है कि उनको खाने पीने का शौक ही नहीं, लेकिन ये तो संयम की बात है। अरे तूने अपने पेट का ही ख्याल किया होता, बेसन के लड्डू हालत पतली कर देंगे तेरी। अब मजा करो सब, कुछ नाश्ता वास्ता नहीं है।
1: अरे भाई ये क्या तूफान लगा रखा है घर में, जरा महाभारत पढ़ने बैठा तो घर में ही महाभारत मचा दिया है? अरे आखिर क्या तूफान आ गया है
2: बाबूजी मेरे?
1: अरे बोल ना।
2: मेरे बेसन के लड्डू कोई खा गया
3: बाबूजी? ये माँ मेरे ऊपर झूठी चोरी लगा रही है।
1: अरे बाबा अगर खा भी लिए तो कौन सी मुसीबत आ गई है? आखिर बच्चों के लिए ही तो तुमने बनाए थे ना।
0: अरे तो बच्चों को खाने को मिले तब ना, सब तो कह रहे हैं। मैंने तो लड्डू देखे भी नहीं, मैंने तो सूंघे भी नहीं, मैंने तो चखे भी नहीं।
2: माँ बेसन के
1: लड्डू।
0: बेटी चल अभी पराठे खा ले, कल फिर बना दूंगी कनस्तर भर के, सबसे छिपा के रखूंगी।
3: ये माँ की बहुत बुरी आदत है झूठा झूठा नाम लगाने की।
0: चुप होता है कि नहीं, कोई भूत प्रेत थोड़े ही खा गए?
3: खा गए होंगे, क्या पता,
0: जवाब देना खूब सीख गया है। अगर कभी चोरी करके खाते पकड़ लिया ना, तो ऐसी मरम्मत करूंगी छड़ी से कि।
1: ओहो हो हो, तो क्या गलत कह रहा है वो?
0: कैसी बातें करते हैं आप ही, कह रहा है भूत प्रेत खा गए होंगे।
1: देखो देखो मैं तुम्हें कितना समझाता आया हूँ कि पुरखों के श्राद्ध वगैरह जरा अच्छी तरह से, मेरा मतलब है श्रद्धा से, उदारता से कर दिया करो।
0: अरे तो मुझे क्या मालूम कि आपके बच्चों की ही तरह आपके पुरखे भी भूख मरे हैं।
1: अब जाने भी दो ना जो हुआ सो, तुम तो खामोखा बात का बतंगड़ बना रही हो जब से।
0: पिछले 1 सप्ताह से न जाने क्या हो रहा है, कुछ भी नाश्ता बना के रखूं पलक झपकते गायब हो जाता है। क्या मालूम नहीं बिल्ली ही खा जाती हो, लेकिन ये रमेश बदमाश है, बचपन से ही आदत है मिठाई चुरा कर खाने की। मेहरी को डांट चुकी, उसके बच्चों का घर में घुसना बंद कर दिया है। खैर आज तो मेरी तरकीब काम कर ही जाएगी, रंगे हाथों चोर पकड़ा जाएगा शाम तक। मीरा मीरा।
4: क्या माँ?
0: मैं जरा सक्सेना चाची के पास जा रही हूँ, अभी आती हूँ।
4: अच्छा।
1: अरे क्यों मीरा?
4: क्या?
1: अरे आज छुट्टी का दिन क्या विविध भारती का ही दिन रहेगा है? पढ़ना लिखना नहीं है तुम लोगों को?
4: जी बाबूजी, बस पढ़ने बैठ ही रही हूँ। बाबूजी ये देखिए, रमेश कोर्स की किताब के नीचे जासूसी उपन्यास रखे हैं।
1: अरे पढ़ते क्यों नहीं हो माई के लाल, इम्तहान सर पर है। भाई सच्ची बात है, आजकल के लड़के तो बिल्कुल चौपट हो गए हैं।
3: बस सब हाथ धोकर मेरे ही पीछे पड़े हैं कल से।
1: अच्छा अच्छा चलो तुम चुपचाप बैठकर पढ़ो। मीरा विनोद मुन्नी सब अपनी अपनी टेबल पर पहुंच जाओ, चलो चलो जल्दी करो।
5: 15 हुआ है जो अहिंसा में विश्वास रखता था।
3: अबे ए अहिंसा के बच्चे धीरे धीरे पढ़।
5: अच्छा
1: मैंने भगा दिया बिल्ली को, तुम लोग पढ़ो चलो जाओ जाओ जाओ जाओ।
3: बाबूजी कौन सी वाली बिल्ली आई थी देखो, वो सफेद?
1: अरे बेटा वो बिल्ली नहीं, वो काला मोटा बड़ा भारी बिल्ला था।
3: काला बिल्ला? वो भी मोटा, तभी सारे लड्डू खा गया।
6: लेकिन काला बिल्ला तो आज तक यहाँ दिखने में आया ही नहीं, एक सफेद बिल्ली आकर चक्कर लगाती है यहाँ।
1: ये तो बिटिया, कोई सफेद बिल्ली ने आने का ही ठेका थोड़े ही ले रखा है। तुम लोग भी बेसिर पैर की बातें करते हो, ये नहीं कि जरा मन लगा कर पढ़ाई करो। हाँ चलो चलो चलो अपना अपना काम करो, चलो
3: चलो भाई चलो।
1: ये क्या है, घास फूस लगती है, पत्तियां, अरे ये तो फलियां हैं, लेकिन ये पत्तियां इस डिब्बे में कैसे आई? देखो

0: अरे रे रे आ आ लगता है मीरा की मैं आ गई।
1: अरे वाह, आज तो सब बड़ी पढ़ाई में लगे हैं। बाबूजी कहाँ है तुम्हारे? सक्सेना बाबू ने कहाँ कहा है उनसे? माँ माँ मालूम अभी एक काले बिल्ले ने कटोरदान गिरा दिया था।
2: हाँ माँ, वही आता है रोज मिठाई खाने।
1: काला बिल्ला? काला बिल्ला तो कोई नहीं आता। अच्छा हुआ आज तो उसे धोखा देने के लिए मैंने कटोरदान में कुछ रखा ही नहीं था। भगा दिया था ना उसे?
3: हाँ माँ, बाबूजी ने ही भगा दिया था।
1: अच्छा हाँ, बाबूजी कहाँ है? काम की बात कह ही दूं। अरे ये कंबल ओढ़े आप कैसे लेटे हैं? क्या हुआ, तबीयत खराब हो गई?
2: अभी तो ठीक थे बाबूजी, खूब अच्छी तरह से हम लोग को डांट रहे थे।
4: अरे माँ, बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, कंबल हटाने दीजिए बाबूजी। अरे माँ, सच में बाबूजी को तो खूब तेज बुखार है शायद, देखो तो चेहरा कैसा लाल हो गया है।
3: अरे हाँ माँ, पूरे शरीर पर दाने दाने उभर आए, कहीं बित्ती तो नहीं हो गई?
1: देखूं तो क्या हो गया, कंबल तो हटाइए। आप ही बच्चों की से जिद करते हैं कभी कभी।
0: अरे अरे बड़ा बुखार चढ़ रहा है मुझे, सर्दी, कहीं माता या मीजल्स तो नहीं है?
1: अब समझी, बच्चों सब आ जाए यहाँ। ये देखो चोर पकड़ा गया, लड्डू के कनस्तर में हाथ डाला था ना, मैंने उसमें खुजली वाली फलियां और पत्तियां डाल दी थी।
5: क्या बाबूजी, तुमने लड्डू चुराए?
0: अरे ये
2: तो बाबूजी आप ही रोज हम लोगों की मिठाई खा जाते हैं शायद। इतने बड़े होकर बाबूजी शेम शेम शेम शेम।
4: अरे विनोद लाना तो छड़ी, माँ ने कहा था ना कि चोरी करने वाले की छड़ी से खूब मरम्मत करेंगी।
1: लेकिन आपको सूझी क्या, अपनी तंदुरुस्ती का तो ख्याल रखा होता, कितनी शुगर बढ़ जाती है मीठा खाने से। अगर मन चल ही आया था तो थोड़ा सा मांग लेते ना। कल से सबको डांट पड़ रही है और ये अपने पुरखों का नाम लगाए जा रहे हैं।
0: खुजली, खुजली, विनोद, मुन्ना, बेटा, जरा इधर खुल जाते, जरा मेरे पीठ, जरा मेरे, बेटा, जरा पीठ खुल जाते।
1: नहीं नहीं, छुओगे तो तुम्हें भी खुजली हो जाएगी।
2: बाबूजी,
0: जरा जोर से खुल जाए बेटा।
2: अरे उसी काले बिल्ले को बुला लाऊं?
0: जरा जोर से खुल जाए।
2: पंजों से खूब अच्छे से जाना है।
1: बलिहारी है आपकी बुद्धि की, धन्य है हमारी पतिदेव भी।
0: बच्चों के सामने क्यों शर्मिंदा करती हो? ये तो नहीं, अरे ये तो नहीं कि मेरे संयम की तारीफ करो। डायबिटीज के मारे पिछले 8 साल जो मीठा चखा तक हो, कसम ले लो मुझसे, मेरी इस बिचारी जीभ ने कैसी तपस्या की है इतने साल, कैसी विकट साधना। अरे तुम क्या जानो श्रीमती जी, 8 साल बाद। ओह ओह बेटा, मना मना जा रहा, मेरे पेट खुजा दे बेटा। 8 साल बाद पहली बार बेचारी जीव का ब्रह्मचर्य टूटा है, समझे?

जीभ की तपस्या, झलकी आपने सुनी। लेखिका डॉक्टर कुमारी, इसका निर्देशन किया स्वतंत्र कुमार ओझा ने। आकाशवाणी इंदौर की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक जानी मानी पेंटर,

0: जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार?
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की पहली पेशकश ये जवानी है दीवानी फिल्म से टोची रहना और रेखा भारद्वाज के स्वरों में अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत की धुन बनाई है प्रीतम ने।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: गली गली आवाज ये जाए, हर घर अपनी गणना करवाए, मिलकर लिखेंगे कल का नया अध्याय। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
4: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
5: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027, बेहतर भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: अब सुनिए प्रीतम के संगीत निर्देशन में अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत, आवाज अरिजीत सिंह की फिल्म का नाम ए दिल है मुश्किल।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए अब सुनिए अभिजीत और श्रेया घोषाल को फिल्म मैं हूं ना में। जावेद अख्तर ने बोल लिखे हैं, संगीत तैयार किया है अनु मलिक ने।

ये थे अभिजीत और श्रेया घोषाल, फिल्म थी मैं होना। लीजिए सुनिए अरिजीत सिंह और शादाब और अल्तमास को फिल्म राबता में। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत की धुन बनाई है जयमेट ने।

और ये है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश, ये जवानी है दीवानी फिल्म से। गायक कलाकार हैं मोहित चौहान, संगीत प्रीतम का, बोल अमिताभ भट्टाचार्य के।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमेरिका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियां में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियां में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
1: जी प्रियंका, देखिए भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना

होना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: डेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जांच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैंड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से चयनित संबंध

संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।

0: नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश-ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसियों की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
1: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
2: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
1: नो टेररिज्म एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
0: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी चार से बातचीत में कहा कि
3: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण ना केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
0: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना कर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार JCM के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमेरिका ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लिया। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ।

नमस्कार। ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आशा भोसले और अनवर के गाए गीत से। निदा फाजली के लिखे इस गीत की धुन बनाई है खयाम ने। फिल्म का नाम है आहिस्ता आहिस्ता।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: किनारा फिल्म में लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह को सुना। गुलजार के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी आरडी बर्मन ने।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: इस समय आप सुन रहे कार्यक्रम आपके लिए, लीजिए अब सुनिए लव स्टोरी फिल्म का गीत लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: लीजिए अब सुनिए जगजीत सिंह और चित्रा सिंह को फिल्म साथ साथ में। कुलदीप

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: देश की सुरीली धड़कन,
1: यह है विविध भारती।
2: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
2: आज के फनकार।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गायक, संगीतकार और निर्माता की, जिनके बारे में सलील चौधरी ने कहा था, अगर ईश्वर किसी आवाज में गाते तो वो हेमंत कुमार की आवाज में ही गाते।

0: जी हाँ, आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है गायक, संगीतकार और निर्माता हेमंत कुमार पर।
1: देखिए वो काली काली बदलिया, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके शो

हेमंत कुमार का जन्म 16 जून 1920 को हुआ था बनारस में। ये जानकर आपको हैरत हो सकती है कि हेमंत कुमार का ताल्लुक बनारस से रहा था। उनके पिता वहां काम किया करते थे। बाद में उनका परिवार कोलकाता चला गया था, लेकिन बनारस से ताल्लुक होने का एक बहुत बड़ा फायदा हेमंत कुमार को किस गाने में मिला, याद है आपको? फिल्म मुनीम जी का ये गाना सुनिए। किस बनारसी अदा के साथ हेमंत कुमार ने इस गाने को गाया है।

हाँ, तो मैं कह रहा था कि हेमंत कुमार का जन्म तो भले बनारस में हुआ था, लेकिन उनका परिवार बाद में चला गया कोलकाता। कोलकाता में हेमंत कुमार को संगीत का शौक लगा और वहां उनकी संगीत की शिक्षा दीक्षा चलने लगी। 12वीं की परीक्षा देने के बाद हेमंत कुमार बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट जाधवपुर आ गए और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था, इसलिए वो संगीत की ओर बढ़ गए। हालांकि माता पिता ने इसका घना विरोध किया, लेकिन उन्होंने संगीत की अपनी रुचि को छोड़ा नहीं। बीच में एक दौर ऐसा आया जब उन्होंने लिखने की तरफ भी अपने कदम बढ़ाए। जानी मानी बांग्ला पत्रिका देश में उन्होंने अपनी कहानी प्रकाशित करवाई। सन 1930 के दशक के आखिर में वो संगीत की दुनिया में चले आए। सन 1935 में हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने कोलकाता के आकाशवाणी केंद्र पर अपना पहला बांग्ला गीत रिकॉर्ड करवाया। हेमंत कुमार ने उस्ताद फैयाज खां और फणीभूषण गांगुली से भी संगीत की तालीम ली थी। सन 1937 में हेमंत कुमार का पहला ग्रामोफोन रिकॉर्ड आया कोलंबिया के बैनर तले। इसके बाद हेमंत कुमार की ख्याति बढ़ती चली गई। सन 1941 हेमंत कुमार ने पहली बार फिल्मों में गाया। ये बांग्ला फिल्म थी निमाई संन्यास और इसके संगीतकार थे हरि प्रसन्न दास। हेमंत कुमार ने अपने पहले हिंदी गीत रिकॉर्ड करवाए फिल्म इरादा में सन 1944 में। इस फिल्म के संगीतकार थे पंडित अमरनाथ और गाने लिखे थे अजीज काश्मीरी ने। हेमंत कुमार रवींद्र संगीत के विशेषज्ञ माने जाते थे। सन 1944 में बांग्ला फिल्म प्रिय बंधावी के लिए उन्होंने रवींद्र संगीत रिकॉर्ड किया था पहली बार। बतौर संगीतकार हेमंत कुमार की पहली फिल्म थी अभियात्री। ये बांग्ला फिल्म सन 1947 में आई थी।

1940 के दशक के मध्य में हेमंत कुमार इप्टा में शामिल हो गए और वो जननाट्य करने लगे। यहाँ सलील चौधरी भी उनके साथ शामिल थे।

सन 1943 में बंगाल में पड़े अकाल के दौरान जन जागृति का काम किया इप्टा ने, और सन 1947 में हेमंत कुमार ने अपना गैर फिल्मी गीत रिकॉर्ड किया गनेर बंधु, जिसमें संगीत सलील चौधरी का था। हेमंत कुमार इस दौर में बांग्ला फिल्मों में संगीत दे रहे थे। इनमें से कई फिल्मों के निर्देशक हेमेन गुप्ता थे। कुछ समय बाद हेमेन गुप्ता मुंबई फिल्म जगत में पैर जमाने के लिए चले आए, और इसके बाद उन्हें मिली फिल्मिस्तान की फिल्म आनंद मठ। फिल्म आनंद मठ का निर्देशन करते समय हेमेन गुप्ता ने कोलकाता से हेमंत कुमार को भी मुंबई बुला लिया। इस तरह से मुंबई में हेमंत कुमार की पहली फिल्म बनी सन 1952 में आई आनंद मठ।

इसी फिल्म में हेमंत कुमार ने लता मंगेशकर की आवाज में रिकॉर्ड किया वंदे मातरम। आनंद मठ ने मुंबई में हेमंत कुमार के पैर जमा दिए। इसके बाद उन्होंने फिल्मिस्तान की फिल्म की शर्त

इसी दौरान बतौर प्लेबैक सिंगर हेमंत कुमार की ख्याति बढ़ती चली जा रही थी। देवानंद की फिल्म जाल में सचिन देव बर्मन ने हेमंत कुमार से ये गाना गवाया।

इसके बाद आई घर नंबर 44, फिर देवानंद के लिए हेमंत कुमार ने ये शरारती गीत गाया फिल्म 16 साल के लिए।

50 के दशक तक हेमंत कुमार एक प्रसिद्ध गायक और संगीतकार बन चुके थे। सन 1954 हेमंत कुमार के करियर की नई ऊंचाई फिल्म नागिन। फिल्म नागिन के सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए।

सन 1955 में हेमंत कुमार को मिला सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म नागिन के लिए। 1950 के दशक के आखिर में हेमंत कुमार ने अपना बैनर शुरू किया हेमंता बेला प्रोडक्शंस, और इस बैनर के तले उन्होंने बनाई फिल्म नील आकाशेर नीचे। ये फिल्म सन 1959 में आई थी और इसके निर्देशक थे मृणाल सेन। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल

हुआ था। इसके तकरीबन 10 साल बाद हेमंत कुमार ने एक नया प्रोडक्शन हाउस खोला। इस बार उन्होंने नाम रखा गीतांजलि प्रोडक्शंस। हिंदी सिनेमा के इतिहास की कुछ बेमिसाल फिल्में दी गीतांजलि ने, जैसे 20 साल बाद, कोहरा, बीवी और मकान, फरार, राहगीर और खामोशी, जिसका गुलजार का लिखा ये गीत दिल की गहराई में उतर जाता है।

हेमंत कुमार के गाने सीधे दिल की गहराइयों में उतरते हैं। उनकी आवाज में एक गंभीरता है, दूसरी तरफ उनकी आवाज में एक शोखी भी नजर आती है कुछ खास गानों में। यूं लगता है जैसे कोई दार्शनिक नदी के किनारे अपना सुर छेड़ रहा हो।

0: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।
1: प्यार से पुकार लो जहां हो तुम, प्यार से पुकार लो जहां हो तुम।
2: आज भी हेमंत कुमार को सुनने वालों की कमी नहीं है। हेमंत दा की आवाज विविध भारती ही नहीं दुनिया भर के रेडियो चैनलों पर गूंजती है और लोग उनकी आवाज को याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। हेमंत कुमार बतौर संगीतकार बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं बतौर संगीतकार उनकी कुछ निराली रचनाएं।

0: फिल्म मिस मैरी साल 1957, किशोर कुमार का ये मजाहिया गाना।
1: गाना न आया, बजाना न आया,

0: बनाना न।
1: 26 सितंबर 1989, 69 साल की उम्र में कोलकाता में हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने आखिरी सांस ली। रह गई उनकी आवाज, उनका दिया हुआ संगीत और उनकी बनाई हुई फिल्में।

0: बनाना न।
1: 26 सितंबर 1989, 69 साल की उम्र में कोलकाता में हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने आखिरी सांस ली। रह गई उनकी आवाज, उनका दिया हुआ संगीत और उनकी बनाई हुई फिल्में।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक, संगीतकार और निर्माता हेमंत कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: छाया गीत इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं विको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: विको टर्मरिक

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। जिंदगी की किताब पर चंद मोती चमकीले हैं तो चंद मोती मटमैले। किताब के कुछ पन्नों पर आंखें ठहर जाती हैं तो कुछ को नजरअंदाज कर पन्ने पलट दिए जाते हैं। बस यही फलसफा रोजमर्रा की जिंदगी का भी है। कुछ चमकीले लम्हों को हम संजो लेते हैं स्मृतियों की तिजोरी में, कुछ उदास लम्हों को अपनी जिंदगी की किताब से बाहर कर देते हैं। कुछ लम्हों को हम अपनी जिंदगी का आईना बना लेते हैं और देखा किया करते हैं खामोशी से।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। पता नहीं था जुड़ेंगे दो दिलों के तार कुछ यूं, एक साथ दिल की धड़कनें गाएंगी प्रेम का तराना। पता नहीं दिल के एहसासात उनके दिल तक पहुंच जाएंगे। पता नहीं था मोहब्बत ये छोटा सा लफ्ज लिख देगा जिंदगी की वसीयत। पता ही नहीं था वादा होगा चांद सितारों से साथ निभाने का।

बहती नदी की मानिंद हो जाती है जिंदगी जब चलती है प्यार के बयार। जिंदगी की कश्ती हौले हौले तैरती है लेकिन वक्त की सुई तेज चलने लगती है। एक लड़की जब प्यार के रथ पर सवार होती है तो पीछे मुड़कर नहीं देखती, वो सिर्फ प्यार बोलती है, प्यार उड़ती है, प्यार पहन अपने सपनों की नगरी में चल पड़ती है, विचरती रहती है।

0: खूबसूरत।
1: उनकी आवाज के पार भी एक आवाज थी। उनकी आवाज ने जिंदगी की तपती धूप को नरम छांव में तब्दील कर दी। उनके अल्फाज दिल की घाटी में चंचल नदी की तरह उतरने लगे। आसमान की तरह उनका कद आंखों में बस गया। बस उस रोज से होठों पर तिरता है मोहब्बत का नगमा।

0: छाया गीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे विको बज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक।

0: एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी उदयपुर का विविध भारती केंद्र है। एफएम रेडियो लेक सिटी रात्रि के 11 बजने को हैं और अब आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, जहां से हम सुनेंगे समाचार पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्य सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधा कुटुम्बकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति

0: तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम भी है। वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने यह बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 733 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह परियोजना संयुक्त वित्त पोषण मॉडल के माध्यम से लागू की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार कुल लागत का 60% और राज्य सरकार 40% वहन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों को जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने कहा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमरीका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लुसेन शहर के पास स्थित बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वो दोनों देशों के साथ इस संभावित समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में लगातार संपर्क में है, जिसकी घोषणा अमरीकी और ईरानी अधिकारियों ने सप्ताहांत में की थी। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi today addressed the outreach session on forging new partnerships and rebuilding international solidarity at the G7 summit in Avignon, France. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. During the meeting, the Prime Minister also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said this is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for disaster resilient infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life, and the Ek Ped Maak Inaam campaign. He further said that India's vision of international partnership is rooted in the timeless philosophy of